0: are into
1: Radio Musty.
0: Feel the Musty. Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
2: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty.
0: Feel the Musty. Feel the Musty.
3: अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। आज शनिवार 2 मई 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए ठीक 5 बज रहे हैं।

अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। 5:07 हो चुके हैं और समय हो गया है रिलैक्स का। मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया आपके साथ, और आज सैटरडे का दिन, वीकेंड का पहला दिन, थोड़ा रिलैक्स्ड, थोड़ा म्यूजिकल और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री शुरुआत। आज के इस पहले घंटे में हम सिर्फ इस बाहर गाने ही चलाएंगे एज यूजुअल, वो नगमे जो कभी पुराने नहीं होते, जो दिल को सुकून देते और सुबह को एक खूबसूरत एहसास बना देते हैं। और शुरुआत हुई है एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ, जानी जा ढूंढता फिर रहा। सो दैट वाज द ब्यूटीफुल वन फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, कैसा गाना जो हर जनरेशन को कनेक्ट करता है, चाहे आप पहले ज़माने के हो या आजकल के ज़माने। बट ये गाना सभी को पता है और सभी को पसंद भी है, तो चाय की पहले से प्ले लीजिए अभी। और हवा थोड़ी अभी ठंडी है बाहर, आप फील कर सकते हो, ठंड महसूस आप कर सकते हो। तो चलिए, हम इसीलिए रिलैक्स में लेकर आए हैं बहुत ही वार्म वार्म गाने जो आपके दिल को भी वार्म रखेंगे। सो यस, आप हमारे साथ ही कनेक्टेड रहिए। 5:08 हो चला है एंड आई विश यू अ हैप्पी सैटरडे। आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए एंड आप हम

0: ऐसा खुश रहे, वीकेंड टाइम में आप कुछ ऐसा कर सके, परिवार के साथ समय बिता सके, अपने साथ थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम, बस यही हम विश करते हैं दैट आपका दिन बहुत बहुत ही खूबसूरत जाए। चलिए, वी गॉट नेक्स्ट ट्रैक और बहुत ही खूबसूरत गाने हम लेकर आए, डेडिकेटेड टू ऑल आवर लवली लिसनर्स। आपके डेडिकेशन, आपके मैसेजेस ऑन 5499-1294.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: जी सैटरडे मॉर्निंग का एक रूल होना चाहिए, अलार्म नहीं म्यूजिक से उठना चाहिए। वीकेंड की सुबह का मतलब भी होता है थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट, थोड़ी प्लानिंग और थोड़ा मी टाइम। अगर आप ड्राइव पर है, सैटरडे मॉर्निंग ड्राइव पर चले गए हैं या कैंप पर चले गए हैं तो आपको हम वो को आयश कहते हैं। एंड शायद कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, नाश्ते की तैयारी में लगे हुए हैं, आपको भी मुँह को आज वैसे खाना बनाते समय अगर गाने का साथ मिल जाए तो वाह बात ही अलग बन जाती है। तो हम आपसे कहेंगे कि रेडियो को आप थोड़ा सा लाउड कर दीजिए, क्योंकि सदाबहर गाने का मज़ा तब ही है जब दिल भी साथ गा उठे। एंड यस, जो लोग हमारे साथ अभी अभी कनेक्टेड है, दैट्स मी, आपके रिया आपके साथ। एंड आप सुन रहे हैं चिलैक्स, जहां पर हम लेकर आते हैं बहुत ही खूबसूरत सदाबहार गाने आपके नाम, द फर्स्ट आवर ऑफ चिलैक्स, जहां पर हम पूरी कोशिश करते हैं आपको चिलैक्स फील करवाने का। सो यस, आई होप ट्रैक्स आपको पसंद आ रही है। सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे की सुबह अच्छे तरीके से शुरुआत इसकी हो चुकी है और हम बजाते रहेंगे बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्स। सो यस, विशिंग यू अ हैप्पी सैटरडे, शनिवार आपका बहुत ही अच्छा जाए और आप अपनों के पास, अपनों के साथ रहे, अपनों से के इर्द गिर्द आप रहे एंड बस थोड़ा सा समय उनके साथ, अपने साथ बिता पाए। एंड अगर गुड म्यूजिक आपके साथ रहे तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: पांच बजकर 40 मिनट और हमारे साथ हमारे लवली लिसनर्स जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग। इतना सारा प्यार आप हमेशा पर इतना प्यार न्योछावर करते हैं, तो हमारी बारी भी आती है और लेकर आ गए हैं हमारी बारी। सो यस, विल गेट टू योर मैसेजेस अभी। एंड हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो पहले हम व्हाट्सएप की ओर देखते हैं। हमारे साथ शीला है लिस्पेरांस से ट्रेबुशे से, और थैंक यू कहती है फॉर शम्मी जी का गाना और आपका फेवरेट है। ओके, दैट्स वंडरफुल, और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आप वो गाने पसंद आए। सो यस, आपके नाम वो गाना डेडिकेटेड था। एंड यस, यहाँ पर हमारे साथ कौन है जुड़े हुए, आप है सरोज जी। सरोज जी, हाउ आर यू, सब ठीक ठाक? एंड गाना आप डेडिकेट करती है फॉर राजन, मोनिका, पूनम एंड सभी परिवार वालों के नाम। नेक्स्ट ट्रैक शमी कपूर जी का गाना हमने चला दिया, लेकिन हम ज़रूर अगर हो सके तो एक और चलाएंगे। और आप हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रहते ही है, सो यस, विल प्ले अ ब्यूटीफुल ट्रैक आपके नाम। और यहाँ पर महेंद्र जी पालमा से है, कैसे हैं आप महेंद्र जी? नमस्ते आपको, आई होप यू आर गुड। और पुराने गाने का जो सिलेक्शन है आपको बहुत ही पसंद आ रहा है। चलिए आपके नाम डेडिकेट करते हैं नेक्स्ट ट्रैक। बहुत ही अच्छे लगते हैं आपको पुराने गाने, क्योंकि पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ी हो जाती है। सो दैट्स ट्रू। और जब भी हम पुराने गाने चलाते हैं, जो डाउन द मेमोरी लेन सभी को ले ही चलते हैं। पदवाग जी हमारे साथ कनेक्टेड है, और अनुषा के नाम नेक्स्ट ट्रैक आप डेडिकेट करना चाहते हैं। और राइट, अनुषा के लिए नेक्स्ट ट्रैक जाता है। पोंपू से धनेश रेड जी हमारे साथ है, कनेक्टेड है, और आपकी प्यारी पत्नी सुनीता के नाम। एंड साथ ही देव, रेखा, संजीव, निशा और लाफी दोस्त परिवार के नाम नेक्स्ट ट्रैक जाता है। नेक्स्ट गाना ऑल्सो फॉर धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति और आगा परिवार जो मौदाल बेसी है, और वहाँ पर जितने भी लोग साथ है दे रहे हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको। नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम। जयशन जी, हेलो जी, कैसे हैं आप? अभी अस्पताल काम करते हैं और शायद पहुँच भी चुके हैं। सो यस, नेक्स्ट ट्रैक आप डेडिकेट करना चाहते अपने दोस्तों के नाम। तेम्बा, जीवन, उमिरन, अंगुतिया, आकाश, अरवन, रामदेवो, मेविन और सभी को विश करते हैं टू हैव अ वंडरफुल डे। वंडरफुल डे हम आपको भी विश करते हैं। टैरेंस वेटा, रवीश, प्रीशा, लोवेशा एंड अपाडू परिवार है रोशनों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज्योति जी भी है रद्दबिनागर से। नेक्स्ट गाना आप आशनी, रेखा, सुरेखा और माधव परिवार के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं। अमर, मनीष, राजा, बनी, जिसक परिवार और खूबलाल परिवार के नाम, जो रिविया जोपा से है, इनके नाम भी नेक्स्ट गाना जाता है। और यहाँ पर हुदा, हिबा और त्वला जो क्यों पे रहते हैं, रोज़, ननलुल परिवार, इन सभी के नाम नेक्स्ट गाना। एंड एक और मैसेज, यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट एक और हम देख लेते हैं। चांद, आनंद और ग्रैंड किड्स, चंगादू परिवार के नाम, आनी पर आनी के नाम ये नेक्स्ट गाना, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम द मूवी गोलमाल।
0: चिलैक्स विद रेडियो मस्ती,
2: योर नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: अच्छा जी, घड़ी आप मिलाते चलिए 5:47 और अभी हम आपको बताएंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसे कटेगा। इट्स योर राशि टाइम।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। नए काम शुरू करने से का अच्छा समय है और घर पर खुशी का माहौल बना रहेगा। गुस्से पर आप थोड़ा कंट्रोल रखिए, अपनी एनर्जी को सही दिशा दीजिए। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत है। परिवार के साथ सुकून भरे पल आपको मिलेंगे। पुरानी चिंता दूर हो सकती है और दिल हल्का महसूस होगा। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: बातचीत और संपर्क से फायदा होगा। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों से मिलना या बात करना मन को खुश करेगा। नए विचार आज सफलता ला सकते हैं और ज्यादा सोचने से आप बच के रहिए। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: आज भावनाएं थोड़ी गहरी रहेंगी। घर का माहौल शांत और सुखद रहेगा। अपनों के साथ समय बिताना अच्छा लगेगा और दिल की आवाज़ पर आप

0: भरोसा करे, खुद का भी ख्याल रखे। लकी नंबर है आज आपका 2।
1: लियो सिंह राशि,
0: आज आपका आत्मविश्वास सबको प्रभावित करेगा। काम में तारीफ मिलने के योग है। लीडरशिप क्वालिटीज उभर कर सामने आएंगी। थोड़ा आराम भी जरूर कीजिए और मुस्कान आपकी पहचान बनेगी। लकी नंबर है आज आपका 1।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज योजना बनाकर काम करना सफल रहेगा। अधूरे काम पूरे होने लगेंगे। सेहत पर ध्यान देना जरूरी है और किसी अपने से दिल की बात होगी। संयम और मेहनत रंग लाएगी। लकी नंबर है आज आपका 4।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: आज संतुलन बनाकर चलना होगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। कल्पना शक्ति और रचनात्मक सोच स्ट्रॉन्ग रहेगी। छोटी खुशियां बड़ा सुकून देंगी। वीकेंड का पूरा मजा आप लीजिए। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज इरादे मजबूत रहेंगे। नए मौके सामने आ सकते हैं। भावनाओं को समझकर फैसला लीजिए और काम धीरे चलेगा पर सफल रहेगा। अपने इंट्यूशन पर आप भरोसा रखें। लकी नंबर है आज आपका 8।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: आज का दिन खुशी और सकारात्मकता से भरा है। छोटी यात्रा या आउटिंग का योग भी है। दोस्तों के साथ समय अच्छा गुजरेगा। नई सोच प्रेरणा आपको देगी। दिन हल्का और खुश रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: मेहनत का फल मिलने वाला है। काम में स्थिरता और प्रगति दिखेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होंगी और आज अनुशासन यानी डिसिप्लिन आपकी ताकत बनेगी। शाम तक संतोष मिलेगा, कुछ सैटिस्फैक्शन आपको जरूर मिल सकता है। लकी नंबर है आज आपका 12।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: नए विचार और नए रास्ते खुलेंगे। सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। आज किसी महत्वपूर्ण बात हो सकती है और अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर लेकर आइए। दिन उम्मीद से भरा रहेगा और लकी नंबर है आज आपका 6।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज मन शांत और कल्पना शक्ति स्ट्रॉन्ग रहेगी। संगीत या कला से जुड़ा रहना आपको अच्छा लगेगा और किसी को सहारा देने का मौका भी मिलेगा। अंदर से सुकून महसूस होगा और ध्यान या प्रार्थना लाभदायक रहेगी। लकी नंबर है आज आपका 12। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे और हमारे साथ अगर आप कनेक्टेड है तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बिकॉज वी ब्रिंग द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स ऑन आरएम रेडियो मस्ती। दिस इज योर रिलैक्सर शो रिया के साथ है। तो चलिए, रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ शनिवार।
2: योर डेली हॉरोस्कोप आरएम रेडियो मस्ती। आरएम रेडियो मस्ती, feel the musty.
0: वैसे हमारे एक स्पेशल लिसनर मीरा हमारे साथ कनेक्टेड है और आपने इस गाने की रिक्वेस्ट की है, सो दिस इज फॉर यू।

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात. घड़ी मिलाते चलिए, सुबह की ठीक 6 बज रही है. समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम याचना के साथ है सुनते हैं. नमस्कार आपको याचना.
6: नमस्कार रिया, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. मॉरिशस में कार्य परिस्थितियों और औद्योगिक संबंधों को और बेहतर बनाना, इसी उद्देश्य से नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल हाल ही में आयोजित श्रम और नौकरी पर आधारित असाइजेस के दौरान प्रस्तुत किए कई प्रस्तावों की समीक्षा करेगा ताकि कानून में सुधार लाया जा सके. कल शाम जनता को संबोधित अपने संदेश में श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने बताया कि कई सुधार प्रस्तावित हैं. इनमें वर्कर्स राइट्स एक्ट में कर्मचारियों की परिभाषा की समीक्षा, वर्क फ्रॉम होम के कानूनी ढांचों का निर्धारण और वर्क फेयर प्रोग्राम के संचालन से जुड़े पहलू शामिल हैं. मूसलाधार बारिश की चेतावनी के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रणाली पर अंतर मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट पर भी उन्होंने बात की. 40 घंटों के कार्य सप्ताह को लागू करने का प्रस्ताव लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ लोगों का मानना है कि यह पेशेवर और पारिवारिक जीवन के बीच बेहतर संतुलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. वहीं अन्य लोग वेतन, ओवरटाइम और इस उपाय के लागू होने की शर्तों को लेकर अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं. ये एक ऐसा प्रस्ताव बना हुआ है जो जनता के बीच विभिन्न प्रतिक्रियाएँ पैदा कर रहा है. बात करते हैं विमानन क्षेत्र की. मध्य पूर्व में तनाव के बीच जेट A1 ईंधन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी एयर मॉरिशस के संचालन लागत पर लगातार दबाव डाल रही है. इसके परिणाम स्वरूप हवाई टिकटों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है. इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने एक वॉर रूम स्थापित किया है, एक विशेष समिति जिसका उद्देश्य इस बढ़ोतरी के प्रभावों को कम करने के लिए सभी संभावित उपायों का अध्ययन करना है. विदेश की खबरों में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के वरिष्ठ नेता ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कल अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि यदि ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा. अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल. स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं. मॉरिशस में ऊंची लहर की चेतावनी हटा दी गई है. इस बीच दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह और दोपहर बाद पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी. रात को भी बादल घिरे रहेंगे, खासकर ऊंचाइयों पर कुछ हल्की बारिश हो सकती है. हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है. प्रवाहरेखा के परे समंदर चंचल रहेगा. 3 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दूर समंदर तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 19 से 21, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सुबह सूर्योदय

0: 6:26 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:47 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Masti।
0: इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Chillax, chillax, chillax with Radio Masti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। छह बज चुके हैं अभी, और 6:10 हो चुके हैं। दैट मीन्स हम सेकंड आवर में एंट्री ले चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत मैं करती हूँ आपके रिया आपके साथ इन द सेकंड आवर ऑफ योर चिलैक्स शो। एक घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत गानों का साथ हम मिला सदा बहर गानी। और अभी हम थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, थोड़ा छोटा सा ही परिवर्तन लेकर आएंगे। एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल सॉफ्ट गाने आपके नाम। म्यूजिक को हम थोड़ा नहीं बट बहुत ही स्पेशल रखेंगे, थोड़ा सुकून भरा। और अगर आप लोगों का साथ मिले तो बात ही अलग हो ही जाएगी। वैसे अभी भी हम बाहर झांक कर आए हैं और रात की जो खामोशी है ये अभी पूरी तरह गई नहीं है, लेकिन जैसे हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है वैसे ही रोशनी भी बस आने ही वाली है। ये वो पल होती है जब दुनिया धीरे धीरे जागती है और दिल को सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इस सुबह को आप महसूस कीजिए एक और बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ जो हम नेक्स्ट चलाएंगे आपके नाम। एंड आई विश कि आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए इन खूबसूरत गानों के साथ। आप अगर घर पर हो, नाश्ते की तैयारी में लगे हुए हो या टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि कई लोग काम पर जाते हैं सैटरडे संडेज भी, सो आपको हम अम्मू को हाश कहते हैं। स्पेशल खाना वीकेंड को स्पेशल बहुत ही जचता है। सो यस, अगर आप घर पर होने वाले हैं तो हम शो की कुछ ना कुछ तैयारी तो हो रही है कि आज ये बनाएंगे वो बनाएंगे, गर्मा गर्म चाय या वो भी इलायची के साथ अदरक के साथ, मज़ा ही आ जाएगा। और ऐसे मौसम में जहाँ पर ठंड महसूस हो रही है और शायद कई जगहों पर हल्की सी बारिश भी हो रही है, तो आपसे हम कहेंगे कि अगर बाहर जा रहे हैं तो आप छाता लेकर जाइए एंड टेक योर नेसेसरी प्रिकॉशंस। एंड हमारे साथ यूँ ही आप बस कनेक्टेड रहिए। 6:12 भी हो चला है एंड द नेक्स्ट ट्रैक फ्रॉम द मूवी फरीब जाता है हमारे सभी लिसनर्स के नाम।

0: Chillax with Radio Masti.
1: 6:23, थोड़ी देर में आसमान का रंग बदलने लगेगा, अंधेरा धीरे धीरे हल्का होगा और पहली रोशनी जमीन को छू लेगी। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। आज का दिन शायद आपके लिए कोई नई खुशी लेकर आए, कोई अच्छी खबर या सिर्फ एक पीसफुल सा दिन। जी हाँ, ये जरूरी नहीं कि एक अच्छी खबर ही होनी चाहिए। आपका दिन अगर अच्छा कटे तो यही अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम जीवन की भागा दौड़ी में पीस नहीं ढूंढ पाते हैं, जबकि ये पीस, ये जो शांत है, ये जो सुकून वातावरण है, ये हमारे इर्द गिर्द ही है। बस इसे ढूंढना चाहिए और ये छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलती है, ना कि बड़ी बड़ी चीज़ों से। आप ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे जो गाने हैं आपको ज़रूर सुकून देंगे और ब्यूटीफुल ट्रैक्स इस सैटरडे को।

वो और भी खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे ये नेक्स्ट गाना, दैट्स अ ब्यूटिफुल वन जो हम चलाएंगे और हमारे सभी लिसनर्स के नाम ये डेडिकेट करेंगे। वैसे आई होप कि आपने कुछ प्लान किया आज के लिए, सैटरडे का दिन है, वीकेंड टाइम है, और अगर कुछ प्लान नहीं किया है तो यू हैव द होल डे टू प्लान। कभी कभी जो हम प्लान नहीं करते हैं एक झटके में आ जाता है, तो वही सबसे गुड साबित होता है, एंड दैट्स सो वंडरफुल। अगर आप अगर अपनों के साथ टाइम बिताते हो, अपने साथ, खुद के साथ या हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस रेडियो के साथ कनेक्ट हो जाओ, एंड आपका दिन, आपका मूड ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो ही जाएगा। सो यस, लेट्स हियर द नेक्स्ट ट्रैक, दैट्स कमिंग फ्रॉम द मूवी दिल का रिश्ता।

0: MBC, Astia dans Oulamé. Nous présentons une nouvelle application MBC Play. Une nouvelle façon pour vivre vos programmes préférés directement au mobile, tablette, ordinateur ou même télévision. Get une chaîne en direct, écoute une radio préférée, découvre films, séries et si tu parles au journal télévisé, n'importe quoi tu étais. Download MBC Play dans App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play, avec vous partout.
1: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के 6:30 बजे हैं। सुबह के इस बुलेटिन में सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां पेश हैं। मॉरिशस में कार्य परिस्थितियों और औद्योगिक संबंधों को और बेहतर बनाना, इसी उद्देश्य से नेशनल ट्राइपार्टिट काउंसिल हाल में आयोजित श्रम और नौकरी पर आधारित असाइसेस के दौरान प्रस्तुत प्रस्तावों की समीक्षा करेगा, कहा श्रम मंत्री ने। 40 घंटों के कार्य सप्ताह को लागू करने का प्रस्ताव लोगों के बीच चर्चा का विषय। कुछ लोगों का मानना है कि यह पेशेवर और पारिवारिक जीवन की बेहतर संतुलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम। इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं इस बुलेटिन में। विमानन क्षेत्र में मध्य पूर्व में तनाव के बीच जेट A1 ईंधन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी। एयर मॉरिशस के संचालन लागत पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इससे निपटने के लिए विमानन कंपनी ने एक वॉर रूम स्थापित किया। विदेश की खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के वरिष्ठ नेता ने अमेरिका को दी धमकी। उसने कहा कि यदि हमला हुआ तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। तब पेश समाचार विस्तार से। मॉरिशस में कार्य परिस्थितियों और औद्योगिक संबंधों को और बेहतर बनाना, इसी उद्देश्य से नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल हाल में आयोजित श्रम पर आधारित असाइजेस के दौरान प्रस्तुत कई प्रस्तावों की समीक्षा करेगा ताकि कानून में सुधार हो। कल शाम जनता को संबोधित अपने संदेश में श्रम मंत्री रिजा उद्दीन ने बताया कि कई सुधार प्रस्तावित हैं। इनमें वर्कर्स राइट्स एक्ट, वर्क फ्रॉम होम, वर्कफेयर प्रोग्राम आदि शामिल हैं। कल रात एमबीसी वन पर उनका यह संदेश प्रसारित हुआ। इसका एक अंश पेश है।
2: Dans les jours qui viennent, le National Tripartite Council pour considérer plusieurs propositions pour amender la loi. Parmi les sujets qu'ils ont pu discuter, pour une semaine 40 heures, et un secteur qui n'est pas applicable, pour une révision définition travailleur dans le Workers' Rights Act, pour couvrir aussi un travailleur qui gagne plus que 50 000 roupies par mois. Nous pouvons aussi revoir le cadre légal de Work from Home et FlexiTime, améliorer Portable Retirement Gratuity Fund, assurer-nous qu'il y a un comité disciplinaire vraiment indépendant, et aussi améliorer le mécanisme pour résoudre un problème industriel. Mais déjà, moi, on a le plaisir d'annoncer que le comité interministériel, qui moi-même me présidé, le protocole applicable en cas d'avis de pluie torrentielle, fin complète ce rapport. Et probablement, la semaine prochaine, nous pouvons demander un cabinet d'un sur la cour pour qu'il dorénavant, quand il y a un avis de pluie torrentielle, il n'y a aucune discrimination entre travailleurs secteur privé et fonctionnaires.
1: 40 घंटों के कार्य सप्ताह को लागू करने का प्रस्ताव लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पेशेवर और पारिवारिक जीवन के बीच बेहतर संतुलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। वहीं अन्य लोग वेतन, ओवरटाइम और इस उपाय के लागू होने की शर्तों को लेकर अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं। ये एक ऐसा प्रस्ताव बना हुआ है जो जनता के बीच विभिन्न प्रतिक्रियाएं पैदा कर रहा है। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आप सुन पाएंगे।
3: Une bonne mesure, mais concernant le secteur qui nous fait travail, il n'est pas applicable. Prenons plus de temps pour nous, la famille, pour nous-mêmes, nous chercher un live, nous personnel live. Parce que là, nous, les temps finissent sans travail, la maison dormit, ça aime tout.
4: Mais ça, nous n'avons pas décidé parce que nous travaillons déjà dans une fast food. Parfois, quand nous payons notre travail,

0: Bisaitien nous paye assisé, mais seulement nous la paye pas coupée. Pas quand il a travail, nous pour besoin travail. Nous, ça nous dépend nous. Nous besoin faire li.
1: Dans le domaine forage. Enfin, pour être ici, faire mes affaires à la case. Malgré qu'on occupe les enfants un peu plus bien, tu vois. Malgré l'affection à un papa, à cause, enfin, il peut travailler pour nous, mais il n'est pas là. Casse pas fait, tu vois. Mais je dis, je suis pas content de travailler avant tout. Si vous pas content, quoi, pas aller.
2: Enfin, je suis dans le domaine de l'école, à la crèche. Mais pour moi, je pense qu'il faut. Parce que repos et travailler, c'est des best friends. Je pense que vous devez mettre ça. Avoir des repos plus travailler. 8 heures temps par jour, c'est très bien. Comme ça, il va avoir plein de temps pour voir ses enfants, son épouse.
3: Nous 40 heures même. J'espère bien les employés vont essayer d'avoir 40 heures pareil comme tout le monde. Parce que ce sera mieux pour tout le monde aussi. Hein. Parce que le repos, c'est important.
4: जहाँ एक ओर कल श्रम दिवस मनाया गया, वहीं रोजगार बाजार और उसके विकास का सवाल और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मॉरिशस में विदेशी श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी मांग में भी तेजी से वृद्धि देखी जा रही है, ऐसा वकील नीलकंत दलूने ने कहा। शुक्रवार 1 मई की सुबह के इंटरव्यू में एएमएल पर वे हमारे सहयोग के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। उनके अनुसार वर्षों से अपर्याप्त योजना के कारण अब ठोस फैसलों की आवश्यकता है। बात अब विमानन क्षेत्र की। मध्य पूर्व में तनाव के बीच जेट A1 ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी एयर मॉरिशस के संचालन लागत पर लगातार दबाव डाल रही है। इसके परिणाम स्वरूप हवाई टिकटों की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने एक वॉर रूम स्थापित किया है, एक विशेष समिति जिसका उद्देश्य इस बढ़ोतरी के प्रभाव को कम करने के लिए संभावित उपायों का अध्ययन करना है। एयर मॉरिशस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष धीरन कुमार देवी की ने पुष्टि की कि यह समिति हर दिन बैठक करती है ताकि ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जा सके। उनको सुनते हैं विवरण गीता सुनारायण का।
5: एयर मॉरिशस ने एक कमेटी कायम की है जिसे वॉर रूम कहा गया है और जो हर रोज बैठक लगाती है और जेट फ्यूल के दामों पर गौर किया जाता है। एयर मॉरिशस के विमानों और उसकी लागत के प्रभावों पर भी हर रोज जो घटता है ये आश्वस्त किया जाता है कि चाहे उड़ान हो या एयर मॉरिशस के कार्यों की अन्य पहलू, उन्हें एडजस्ट करना चाहिए ताकि कार्य की लागत पर खराब प्रभावों को कम किया जा सके जो गल्फ युद्ध और ईंधन के दामों के कारण पड़ रहा है। हर रोज मॉनिटरिंग की जाती है।
4: यह एक संवेदनशील मुद्दा है जिसका वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। मॉरिशस में कनाबिस यानी गांजा सुधार एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। 14वीं बैठक गुरुवार को पोर्टली में आयोजित की गई जो नेशनल ड्रग मास्टर प्लान के लॉन्च के उपलक्ष्य में हुई। इसमें विशेषज्ञों ने भाग लिया ऐसे समय में जब अधिकारी कानून में संभावित बदलाव के प्रस्ताव का आकलन कर रहे हैं। सौताना पोसिनो की रिपोर्ट पर विवरण गीता सुनारायण का।
5: दशकों तक अपराधिकरण और रुकावटों के बाद अब अधिकारियों ने आखिरकार एक व्यापक राष्ट्रीय परामर्श के लिए रास्ता खोल दिया है जिसका उद्देश्य देश के दृष्टिकोण को गहराई से पुनर्विचार करना है। इन परामर्शों में कई पक्षों को योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि विशेषज्ञता और वास्तविक अनुभव दोनों को जोड़ा जा सके। तकनीकी समिति में नताली रोज इस बात पर जोर देती है कि वैज्ञानिक आंकड़ों और जमीनी हकीकत दोनों को शामिल करना जरूरी है और विषयगत चर्चाओं की घोषणा करती है। कट की निदेशिका जामी कौचिक इंजेक्शन के जरिए नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों और पॉलीकंसेप्शन यानी बहु नशा की स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के साथ संगठन की भूमिका को याद दिलाती हैं, जो अक्सर प्रणाली के किनारे हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में एक और साझेदार फोरेंसिक साइंस लेबोरेटोरी है जिसका प्रतिनिधित्व आदिल तूफानी कर रहे हैं और जो नाडेक के साथ मजबूत सहयोग के तहत काम कर रही है। इन परामर्शों के बाद अंतिम फैसला सरकार द्वारा लिया जाएगा और अंतिम रिपोर्ट जून 2026 के अंत तक आने की उम्मीद है।
4: 33.4 मिलियन रुपए, ये वो कुल राशि हैं जो फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अपनी पहली नीलामी के दौरान एकत्र की। यह आयोजन

0: चार दिनों तक चला और इससे प्राप्त धनराशि का एक हिस्सा राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा। लवीना सूफी की रिपोर्ट है, विवरण गीता सुनारान का।
1: ये नीलामी 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित की गई। कुल 48 वाहनों को खरीदार मिले, जिनमें 7 नावें, 7 मोटरसाइकिल्स, 2 बॉबकैट मशीनें और 2 ट्रक शामिल थे। ये प्रक्रिया FCC अधिनियम के 29 मार्च 2024 को लागू होने के बाद संभव हो पाई। अब आयोग को अपराध से जुड़े जब्त किए गए या उपयोग किए गए सामान को बेचने का अधिकार है। सभी कार्रवाइयां, जिनमें खरीदारों को संपत्ति सौंपना भी शामिल है, एक स्वतंत्र नीलामीकर्ता की निगरानी में पूरी की गई। इस पहली सफलता के बाद FCC अब अगली नीलामी आयोजित करने की योजना बना रहा है, जिसमें जब्त की गई अचल संपत्तियां शामिल होंगी।
0: अस्पतालों को धीरे धीरे एक वास्तविक वन स्टॉप शॉप में बदलना, जहां मरीज एक ही छत के नीचे सभी सेवाओं का लाभ उठा सके, यह तीसरी डायबिटीज एंड वास्कुलर हेल्थ सेंटर का उद्देश्य है, जिसका आधिकारिक उद्घाटन बुधवार 29 अप्रैल को सर निरोज जगन्नाथ अस्पताल फ्लैक में किया गया। ये एक पूर्ण इकाई है जिसका लक्ष्य मधुमेह के उपचार को मजबूत करना है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ अनिल बेचू को सुनते हैं।
2: पिछले साल बजट में ऐलान किया गया था कि सभी अस्पतालों में एक डायबिटीज सेंटर होना चाहिए। देश में यही सबसे बड़ी बीमारी है, हजारों लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, करीब 2 लाख लोग। फिर जब कोई अस्पताल आता है, तब ये एक वन स्टॉप शॉप होना चाहिए। प्रवेश करते ही आँखों की जाँच करनी चाहिए, पैरों में उपकरण लगा कर जाँच करवानी चाहिए कि खून अच्छी तरह बह रहा है या नहीं। काउंसलिंग भी होनी चाहिए, एक ही जगह पर सब कुछ करवा लेना चाहिए, इसलिए ये केंद्र बनाया गया है। एक जीतू अस्पताल में है, दूसरा SSR मेडिक्लिनिक में और तीसरा यहाँ। सभी 5 अस्पतालों में बजट से पहले ऐसा कर लिया जाएगा, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है और ये ठीक से चल रहा है।
0: विदेश की खबरों में, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के वरिष्ठ नेता ने अमेरिका पर तीखा हमला किया। उन्होंने कल अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि यदि ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल हुआ तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष समाप्त हो गया है, क्योंकि वर्तमान में एक युद्ध विराम लागू है। साथ ही उन्होंने दिया कि उन्हें युद्ध से संबंधित विधायी मंजूरी के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कानून के अनुसार यदि कोई अमरीकी राष्ट्रपति सैन्य कार्रवाई के बारे में कांग्रेस को सूचित करता है तो उसे 60 दिनों के भीतर कांग्रेस की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा उससे सैन्य कार्रवाई रोकनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस नेताओं को भेजे गए एक पत्र में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस वॉर पावर्स एक्ट का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि पिछले महीने ईरान के साथ सहमत युद्ध विराम ने इस कानूनी समय सीमा को रोक दिया है। जानते हैं मौसम का हाल। मॉरिशस में ऊंची लहर की चेतावनी हटा दी गई है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दिन के दौरान देश भर में बादल घिरे रहेंगे, खासकर पूर्वी दक्षिणी इलाकों सेंट्रल प्लाटो पर रह रहकर बारिश होगी। रात को ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी पश्चिमी समंदर में 3 मीटर 50 सेंटीमीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 19 से 21 और अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 से 25 और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:26 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:47 पर होगा।

0: शोक समाचार सुनिए। हाईलैंड्स रोड फिनिक्स में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की मिसिज बीबी रुकियान भाई सुभाची पैदाशी नाम हुसैन बख्श और जो रुकियान के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके मकान हाईलैंड्स रोड फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। कॉम्बुम्बाई फॉरेस्ट साइड में 59 साल की 59 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती श्यामा देवी दागा पैदाशी नाम रामहित और जो अनीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी। आज दिन के 1:30 बजे उनके मकान कॉम्बुम्बाई फॉरेस्ट साइड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा लाभास्खे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30 PM। कॉम्बन वैन कौचे मिलितिया में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के जनाब आज़ाद अकीम गुजर गए हैं। उनका जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके बेटे अकीम वसीफ मोहम्मद के मकान ब्लॉक 16 कॉम्बन वैन कौचे मिलितिया से उठाकर दफनाने के लिए आलमा का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती सुखराम जो मामा सुनील के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी। आज दिन के 2:30 बजे लाशा पेलोदों तिली एंड सन्स गोथ्वायाल बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिछित्रिविया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। नंबर 5 स्वामी दयानंद स्ट्रीट बुबासे में 50 साल के 50 ईयर्स ओल्ड के श्री निर्मल दुखी जो विक्रम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी। आज दिन के 2 बजे उनके मकान नंबर 5 स्वामी दयानंद स्ट्रीट बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिवैल की श्मशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। Avenue Paillanqueux, Montaigne-Blanche-Mais, 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री हरिदत्त ताकुदीन जो सूरज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी। आज दिन के 12 बजे उनके भाई दानन ताकुदीन के मकान आवेन्यू पायोंकू मोसेलमा सांस उसी मोताई ब्लांश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नून। शिवाला रोड लाघ्रेमों सैंपिया में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री संजीवा नरसिम्हा अपादू जो संजीवा विष्णु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी। आज शाम 4 बजे उनकी पत्नी इमा अपादू के मकान शिवाला रोड लाघ्रेमों सैंपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV. RM2, Radio Masti.

0: Chillax with Radio Musty.
1: छः बजकर 55 मिनट एंड इट्स योर रिलैक्स शो रिया के साथ। वैसे अभी हमारे पास बस 5 ही मिनट शेष है, लेकिन सोचा कि क्यों ना जाने से पहले आपके नाम ढेर सारा प्यार छोड़ कर जाऊँ और अच्छे अच्छे गाने एज़ वेल। सो यस, विल गेट टू योर मैसेजेस, क्योंकि

0: यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके मैसेजेस पेंडिंग रह जाते हैं अगर हम वापस नहीं आते, बट गुड कि हमारे पास 5 मिनट है, तो वो चलिए देख लेते हैं। जहाँ जी हमारे साथ है, जुड़े हुए हैं, फ्लैग से हैं आप और सैटरडे मॉर्निंग एंजॉय कर रही है रेडियो मस्ती के साथ। एक रिक्वेस्ट, आप गाना रिक्वेस्ट करिए फ्रॉम द मूवी जो प्यार किसी से होता है, लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम ही नहीं है, बट कल सुबह हम ज़रूर आपके नाम ये गाना डेडिकेट करेंगे। वैसे नेक्स्ट ट्रैक हम कर सकते हैं डेडिकेट आपके नाम, आपकी बेटी रीमा, जीनीता, शीष्टा, अंशिनी, सिल्विया, यूवी, कृषि एंड सीसरन परिवार के नाम जो है फ्लैग से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विलबैग से सुनीता हमारे साथ कनेक्टेड है। हेलो, गुड मॉर्निंग सुनीता, और एक का प्यारा सा गाना आप अपने पति श्याम और एंजल येशना के नाम डेडिकेट करना चाहती है। सो यस, हम ज़रूर चलाएंगे नेक्स्ट ट्रैक, इट्स अ ब्यूटिफुल वन जो हम चलाने वाले हैं हमारे सभी लिसनर्स के नाम। विशिंग यू अ हैप्पी सैटरडे, आशा करती हूँ कि आपका दिन अच्छा जाए, बहुत ही अच्छा जाए, और आप के चेहरे पर एक स्माइल बनी रहे द होल डे। एंड अगर कुछ प्लान्स आपने बनाए होंगे दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ, या बस आप घर पर रहने वाले हो और काम काज में लगे रहने वाले हो, तो आपको हम बो को हाज कहते हैं। वीकेंड होते ही है जहाँ पर आप रिलैक्स कर सके, लेकिन क्या होता है कि हम इसे यूज़ करते हैं टू डू सम हाउस चोर्स, बट इट्स फाइन क्योंकि पूरे हफ्ते टाइम उतना नहीं मिलता है, जितना हो सके हम कर लेते हैं, लेकिन वीकेंड झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता है, साफ सफाई। सो आपको हम बुखार से कहते एक बार फिर, और आपके नाम हम बहुत ही खूबसूरत गाने चलाते रहेंगे। नाउ जो लोग नाश्ता ले रहे हैं, आपको बना भीजिए शुभ आहार, नाश्ता लीजिए, पानी टाइम टू टाइम पीजिए, सर्दी हो या गर्मी पानी पीना ही चाहिए। सो यस, वी हैव गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स एज वेल, और ये एक लास्ट गाना जाने से पहले हमारे सभी लिसनर्स के नाम, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: सुबह के 7 बजे हैं।
2: टाइमलेस तड़का।
4: मेरा दिल यार का दीवाना।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Shameless तड़का
1: RM2
2: Radio Mastery।
3: कैसे करूँ मैं ओ यारा प्यार कैसे होता है। लो मैं फिर से आ गई आपके टाइमलेस मेलोडीज के साथ 9 बजे तक। इट्स निर्मनी। इस आवर में होने वाला है स्पोर्ट्स न्यूज, एक गेम और बहुत सारे टाइमलेस गाने। तो यहीं पर जुड़े रहिए एंड कीप स्माइलिंग ऑन दिस ब्यूटीफुल सैटरडे विद योर RM2 रेडियो मस्ती।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स। रेडियो

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
4: Sports news, latest updates.
2: Sports news.
1: Radio Musti in the mix.
0: चलिए अभी सुनते हैं latest sports updates आपसे विकास जी. Good morning.
5: Good morning Nilmani and a very good morning to all sports fans. फुटबॉल का बुखार फीवर फिर चढ़ गया है, फिर से शब्दों की लड़ाई और फिर तेरी कहानी याद आई. इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन 2025-2026 का ये सप्ताहांत और ये फिक्स्चर्स याद रखे जाएंगे. एक और रिलेगेशन जोन से बचने की ताबड़तोड़ कोशिश है टोटेनहम हॉटस्पर की, तो दूसरी ओर चैंपियन बनने की ललक एकदम झलक रही है आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी में. किंतु सबसे खूंखार धुआंधार और असरदार मुकाबला रविवार की शाम 6:30 बजे ओल्ड ट्रैफोर्ड में होगा, जब मिलेंगे दो पुराने दुश्मन, दो ओल्ड राइवल्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी का जीता जागता नमूना है, एग्जाम्पल है. इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, संडे की शाम 6:30 बजे 6:30 PM जुग जुग जियो पर जागते रहो. इंग्लिश प्रीमियर लीग का 35वां सप्ताह 35th week कल रात को ही आरंभ हुआ विद येट अनदर विन फॉर लीड्स यूनाइटेड. लीड्स ने अपने एलन रोड में बर्नली को 3-1 से जलाया. सो कमाल का ये स्कोर रहा. पिछले 6 मैचों में लीड्स के लिए 3 ड्रॉ 3 विंस. फंटास्टिक रन डैनियल फाक के लिए, जो उसकी टीम अब 14वें पोजीशन पर है विद 43 पॉइंट्स, और वो अब टोटेनहम हॉटस्पर से 9 पॉइंट्स से क्लियर है. 14वें स्थान पर टोटेनहम हॉटस्पर से 9 अंक दूर, सेफ है कह सकते हैं, ऑल बट सेफ. किंतु मैथमेटिकली स्टिल एवरीथिंग इज पॉसिबल, इसलिए सावधान. लीड्स यूनाइटेड 3 बर्नली 1. डोमिनिक काल्वेट लेविन का 3रा गोल, ओकाफो का 1 गोल, और 3-1 से लीड्स की जीत हुई. आज के फिक्स्चर्स इस प्रकार हैं. 6:00 बजे ब्रेंटफोर्ड वर्सेस वेस्ट हैम यूनाइटेड. द हैमर्स जो अभी टोटेनहम हॉटस्पर से केवल 2 अंक आगे हैं, इसलिए उन्हें जीतना ही होगा. ब्रेंटफोर्ड वेस्ट हैम यूनाइटेड 6:00 बजे. उसी समय सेंट जेम्सेस पार्क में न्यूकासल यूनाइटेड का मुकाबला ब्राइटन एंड होव से. वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स खेलेगी सन्डरलैंड के विरुद्ध. और आज रात 8:30 बजे 8:30 PM आर्सेनल वर्सेस फुलहम. द गनर्स को यदि टाइटल जीतना है तो उन्हें ये मैच और बाकी सभी मैच जीतने ही पड़ेंगे, अन्यथा मैनचेस्टर सिटी उन्हें निगल जाएगी. सुपर संडे के लिए द ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ ऑल टाइम, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, 6:30 बजे. दोनों के बीच केवल 3 अंकों का अंतर है, इसलिए राइवलरी एक तरफ, ये सम्मान और अपमान का भी प्रश्न है. लिवरपूल के एनफील्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत हुई थी. इस बार ओल्ड ट्रैफोर्ड में क्या होगा? मैटियस कुनिया ट्रेनिंग पे लौट आया है. वो ब्रूनो फर्नांडेज और बेन्यामिन सेस्को के साथ पार्टनर करने को तैयार है, जबकि लिवरपूल की ओर से मोहम्मद सलाह और एलिसन बेके अभी तक आउट हैं. एलिसन ट्रेनिंग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाया है, इसलिए फ्रेडी वुडमैन के साथ फ्लोरियन वर्ड्स और लोन स्ट्राइकर अलेक्जेंडर ईसाक से काफ़ी उम्मीदें हैं. यूगो एकिटी के अभी तक चोटिल अवस्था में है, इसलिए लगे रहो मेरे लाल. द रेड डेविल्स वर्सेस द रेड्स संडे की शाम 6:30 बजे 6:30 PM सेव द टाइम एंड द डेट. किंतु संडे का पहला मैच 5 बजे खेला जाएगा, कल 5 बजे. इट्स बोर्नमुथ वर्सेस क्रिस्टल पैलेस. और रविवार का क्लोजिंग मैच भी काफ़ी हद तक धमाकेदार साबित होने वाला है. कल रात 10 बजे एस्टन विला वर्सेस टोटेनहम हॉटस्पर. द विलेन्स फिर से अपना चौथा स्थान पकड़ने की कोशिश करेंगे, और रोबर्टो डी ज़ेरबी के स्पर्स रिलेगेशन जोन से निकलने का प्रयास, भरसक प्रयास करेंगे. मैच से पहले उन्होंने निगेटिविटी को फाड़ते हुए, चिढ़ते हुए अपने खिलाड़ियों से कहा कि हमें रोना नहीं.

नहीं धोना चाहिए। इसलिए कौन किसको धोता है सुनते रहिए। प्रीमियर लीग का 35वां सप्ताह सोमवार को समाप्त होगा दो मैचों के साथ। मंडे शाम 6 बजे चेल्सी वर्सेस नॉटिंगम फॉरेस्ट और रात 11 बजे एवर्टन का मुकाबला गुडिसन पार्क में नहीं बल्कि नए मैदान में मैनचेस्टर सिटी से। हालांकि सिटी ने बार बार एवर्टन को गुडिसन पार्क में हराया है। एवर्टन के नए स्टेडियम हिल डिकिंसन में वे क्या गोल खिलाएंगे देखते रहिए। आर्सेनल फिलहाल लीग टेबल के टॉप पोजीशन पे है विद 73 पॉइंट्स 73 अंक, लेकिन एक मैच ज्यादा खेला है मैनचेस्टर सिटी से जिसके पास है 70 अंक। मैनचेस्टर यूनाइटेड तीसरे पोजीशन पर 61, लिवरपूल 58, एस्टन विला के पास भी 58 अंक। ब्राइटन छठे स्थान पर है 50 अंक लिए। 16वें स्थान पर है नॉटिंगहम फॉरेस्ट विद 39, वेस्ट हैम यूनाइटेड 36, टोटनहम हॉटस्पर के पास 34 points, Burnley और Wolverhampton Wanderers पहले से ही relegate हो चुके हैं। स्पेन के लालिका में कल मलोका ने एवे जाकर जिरोना को 1-0 से हराया। इटली के सेरिया में पिज़ा 1 लेचे 2, तो इंडियन सुपर लीग में जमशेदपुर ने गोवा को 2-0 से हराया। इस जीत के साथ जमशेदपुर 21 अंक लिए पहले स्थान पर आ गया है, मोहन बगान से 1 अंक आगे, किंतु मोहन बगान ने 2 मैच कम खेले हैं। आज के महत्वपूर्ण मुकाबलों में लालिगा में ओसासुना वर्सेस बार्सिलोना, बुंडेसलीगा में बैन म्यूनिख खेलेगी अलायंस अरेना में हाइडेनहाइम के विरुद्ध, और फ्रांस के लीग ए में पेरिस सेंट-जर्मेन वर्सेस लोरियों आदि आकर्षण के केंद्र है। किंतु मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल इस मैच के सामने सब कुछ फीका और बेस्वाद लगने लगा है। इसलिए कल संडे की शाम 6:30 ओल्ड ट्राफोर्ड में समय और स्थान ओल्ड ट्राफोर्ड शाम 6:30 संडे का दिन। टेनिस में फिर से यानिक सिनर ने अपना क्लास दिखाया। फ्रांस के आर्ची अफिस को 6-2 और 6-4 से हराकर वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर लगातार 5वें मैड्रिड ओपन फाइनल में पहुंचा है, जहां पर उसका मुकाबला अलेक्जेंडर जेरेव से होगा। ये फाइनल कल खेला जाएगा। लड़कियों में 19 वर्षीय रूसी टीनेजर मीरा एंड्रीवा अपने प्रथम मैड्रिड फाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में उसने एले बैचिस को 6-4 और 7-6 से परास्त किया। अब फाइनल आज ही खेला जाएगा बिटवीन मीरा एंड्रीवा एंड मार्टा कोस्चुक। बात करें अब फॉर्मूला 1 की, लगभग एक महीने की फोर्स्ड छुट्टी के बाद आखिरकार फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप इज बैक। इस सप्ताहांत मायामी ग्रां प्री रेस लगेगी, जिसके फर्स्ट प्रैक्टिस में कल फेरारी के शार्ल लेक्लेयर की जीत हुई। आज सुबह का क्वालिफाइंग लैंडो नोरिस से जीत गया। अब आज रात पोल पोजीशन के लिए क्वालिफाइंग और स्प्रिंट रेस लगने वाली है। उल्लेखनीय है कि जनरल रैंकिंग में फिलहाल मर्सिडीज का किमी एंटोनेली पहले स्थान पर है। वो अपने ही टीममेट जॉर्ज रसेल से 9 अंक आगे है। एंड फाइनली क्रिकेट में, टाटा इंडियन प्रीमियर लीग में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से परास्त किया। रॉयन पराग के 90 रन राजस्थान को बचा नहीं पाए और उन्हें टॉप पोजीशन से वंचित किया, जबकि वैभव सूर्यवंशी केवल 4 रन बनाकर आउट हुआ। आज इसी आईपीएल में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स लुहालेंगे मुंबई इंडियंस से। एंड फाइनली लोकल स्पोर्ट्स में, मॉरिशस के हमारे युवा कराटे खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित WUFK कराटे चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक और 1 चांदी का पदक हासिल किया है। हार्दिक बधाई। 13 साल की कैटेगरी में यशराव लक्सिमो गोल्ड मेडल जीत पाया, तो 18 से 20 साल वाले वर्ग में शेन वीरारागु ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया, तो उसके भाई शोन वीरारागु को मिला चांदी का पदक। आज इंडिविजुअल कैटेगरी के मुकाबले जारी रखे जाएंगे, तो कल संडे से टीम कंपटीशन शुरू की जाएगी। क्षेत्रीय स्तर पर रिविया जुआपा में कल सुबह 9 बजे एक इंटर विलेज पेतोंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। रिविया जुआपा जिला परिषद द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता वहीं के गांधी स्क्वायर पेतोंग कोर्ट में लगेगी। और मॉरिशस के एक्स इंटरनेशनल खिलाड़ी गोल्डन स्टार्स अपना अगला मैच अगले 10 मई को खेलेंगे विलेडोम क्यूपिप में लेक्सप्रेस अखबार के खिलाफ। इस बीच अपनी 32वीं सालगिरह के मौके पर कल मुकेश

0: अमेरिका को उनके फुटबॉल में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। तो ये थी खेलकूद संबंधी चंद जानकारियां। सुबह के 7:40 हुए हैं, आज्ञा दीजिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: स्पोर्ट्स न्यूज के लिए धन्यवाद विकास जी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको द फ्लो एक्सपर्ट।
3: RM2 Radio Musti

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Timeless तड़का
1: RM2 Radio Musti
2: 7:49 और मॉर्निंग में आपके लिए लेकर आए हैं एक गेम जहां पर आप जीत सकते हो ₹1,000 का वाउचर बाय जेथा तुलसीदास। ये गेम एक हिस्सा है ऑफ द अवेयरनेस कैंपेन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पब्लिक सर्विसेज इन कोलैबोरेशन विद द एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस इन द CEB। तो सवाल बड़ा ही सिंपल है यार, कौन सी ड्राइविंग हैबिट मदद करती है टू सेव एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल? ए सडन एक्सेलरेशन, बी स्मूथ एंड स्टेडी ड्राइव, सी ड्राइविंग एट अ वेरी हाई स्पीड और डी हार्ड ब्रेकिंग। मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, विच तो क्वेश्चन ये है कि सवाल ये है कि कौन सी ड्राइविंग हैबिट मदद करती है टू सेव एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल? ए सडन एक्सेलरेशन, बी स्मूथ ड्राइविंग एंड स्टेडी ड्राइविंग, सी ड्राइविंग एट अ वेरी हाई स्पीड और डी विच इज़ हार्ड ब्रेकिंग। तो 5499-1294 पर आपको भेजना है अपना जवाब अपने नाम और पते के साथ। सो लेट्स गो।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: Voici Goodlands, c'est fini plus grand avec 4 l'étage et qu'il n'a même tout là-bas. En plus, tu as 30 mois, zéro l'intérêt, l'eau, ben même. Pas si ça. Ça, ça me dit des mille là. Il n'a même good deals qui peut attendre. Un climatisé TCL, 18 990 roupies avec 44% discount. Tu as même gagné

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musty.
4: Feel the Musty.
5: सुबह के 8 बजे हैं। मिलाल फजर के 8 बजल बा। सुना संक्षिप्त समाचार सुना जा सबको के नमस्ते आरी बुलेटिन में स्वागत। मॉरिशस में कार्य परिस्थिति आरी औद्योगिक संबंध के आर बेहतर बनाए के ये उद्देश्य से नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल हाल में आयोजित श्रम आधारित असाइजेस के दौरान प्रस्तुत करल गए प्रस्ताव की समीक्षा करी जिमें कानून में सुधार आनल जा सकी। काल सांझ के जनता के संबोधित अपन संदेश में श्रम मंत्री रिजाउ तिम बतैलन कि कई गो सुधार प्रस्तावित करल गल है। इमे वर्कर्स राइट्स एक्ट में काम करवा लोग के परिभाषा के समीक्षा, वर्क फ्रॉम होम के कानूनी ढांचा के निर्धारण आरी वर्क फेयर प्रोग्राम के संचालन से जुड़ल पहलू शामिल बाटे। मध्य पूर्व में तनाव के बीच जेट A1 ईंधन के कीमत में बढ़ोतरी आवत बाटे। एयर मॉरिशस के संचालन लागत परी एकरा से दबाव होत बाटे। एकर परिणाम यह कि हवाई टिकट के कीमत परी एकर असर पड़े सकी। इस स्थिति से निपटे खातिर राष्ट्रीय विमानन कंपनी एगो वॉर रूम स्थापित कर ले बाटे, एगो समिति जेकर उद्देश्य ई बढ़ोतरी के प्रभाव के कमती करे के हो। 33.4 मिलियन रुपया ई कुल राशि है फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन जे अपन पहला नीलामी के दौरान एकत्र कर ले बाटे। ई आयोजन 4 दिन लेक चली आरी एकर से प्राप्त धनराशि के गो हिस्सा के प्रयोग राष्ट्रीय विकास परियोजना खातिर करल जाए। ई नीलामी 27 से 30 अप्रैल के बीच आयोजित करल गल। कुल मिला के 48 वाहन बेचल गल, जिनमें 7 गो नौका, 7 मोटरसाइकिल, 2 बबकट मशीन आरी 2 गो ट्रक शामिल बाटे। अस्पताल के गते गते एगो वास्तविक वन स्टॉप शॉप में बदले के जहाँ परी मरीज लोग के एक एक जगह परी सब सुविधा मिली। इति सरकार डायबिटीज एंड वास्कुलर सेंटर के उद्देश्य है जेकर उद्घाटन बुध के स अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल फ्लाक में करल गल। एगो पूर्ण इकाई है जेकर लक्ष्य मधुमेह के उपचार के मजबूत करे के है। विदेश के खबर में भारत के हैदराबाद में तेज रफ्तार से चले होला गाड़ी नियंत्रण खो के एगो ट्रक से टकरा गल। ई हादसा में 4 जना के मौत भेल बाटे, 1 जना के गंभीर रूप से घाव लगल बाटे, ओकर हालत नाजुक बाटे। ई दुर्घटना के सही कारण के पता लगाए खातिर एगो जांच शुरू कर गल ह। ई रहल संक्षिप्त समाचार। तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद। हमनी के आज्ञा दिए नमस्ते।
0: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: 8:06 हो चला है, चलिए अभी जानते हैं मौसम का हाल।
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। मॉरिशस में ऊंची लहर की चेतावनी हटा दी गई है। इस बीच दक्षिण पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह और दोपहर बाद पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश होगी। रात को भी बादल घिरे रहेंगे, खासकर ऊंचाइयों पर कुछ हल्की बारिश हो सकती है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकता है। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 19 से 21, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 23 से 25, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:26 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:47 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Du 24 avril au 7 mai, profitez de bons prix tous les jours chez Winners. Retrouvez en magasin une sélection de produits essentiels à des prix vraiment avantageux. Des offres sur vos indispensables du quotidien pour encore plus d'économies à chaque passage en caisse. Le shampoing Herbal Ugva 500 ml à 99,95 € et la boîte de Fish Fingers Sea Harvest 400 g à 139,95 €. C'est le moment idéal pour faire le plein de bonnes affaires. Le bon prix tous les jours seulement chez Winners.
5: On est tous Winners.
1: Timeless Tadka.
2: RM2 Radio Musti.

0: Shameless तड़का
1: RM2 Radio Mastery
2: गोल्डन हिट से जो दिल को करे रिवाइंड, यही है आपका टाइमलेस तड़का। वेलकम बैक, फिर से मूड को करते हैं रिफ्रेश्ड। तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए यार, क्योंकि नॉस्टैल्जिया का तड़का अब लगने वाला है। 8:15 हो चला है और आज सैटरडे हमारा बस शुरू हो रहा है, तो अपनी मुस्कान को चेहरे पर ही रहने दीजिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए विद योर RM2 रेडियो मस्ती।
1: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती।
3: Radio Musty.
4: Hits, music only.
3: Feels a musty.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: सैचरडे का दिन याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ भागने के लिए नहीं होता, जीने के लिए भी होती है। थोड़ा रुकना, थोड़ा मुस्कुराना भी जरूरी है। अपने लिए वक्त निकालो, दिल को हल्का बनाओ, क्योंकि खुश रहना भी एक जरूरी काम है।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: RM2.
6: Radio Musti.

0: Timeless
1: 떨까 RM2 Radio Musti
2: And yes, Timeless Hits का सिलसिला जारी है और आपके मैसेजेस भी जोरों शोरों से एंट्री मार रहे हैं. आप है दिव्या जी बेलिया सेश से. आज आपकी मम्मी सुनीता का जन्मदिन है और आप उन्हें विश करना चाहते हैं जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छा स्वास्थ्य भी. एंड आप डेडिकेट करना चाहते हैं अबव दिस सॉन्ग पूरी सीतोहल फैमिली, बबुआ फैमिली की तरफ से. एंड नेक्स्ट मैसेज वी हैव आरती जी जुबगर से. आज है आपके भाभी का जन्मदिन, अब उन्हें विश कर रही हैं हैप्पी बर्थडे और नाम है उनका संगीता. हैप्पी बर्थडे संगीता जी. एंड वी हैव अनदर बर्थडे, आप है पापा जयराम किरोधर. एंड विशेज भेजे गए हैं रक्षा सुमन विमल राजेश की तरफ से और आपको बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू. और पूरे पोस्ट द फ्लैग फैमिली की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे. तो हो जाए आपके लिए हैप्पी बर्थडे वाला गाना. एंड चलो दोस्तों जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम द RM2 टीम.
0: टाइमलेस तड़का
1: RM2
3: रेडियो मस्ती.
0: टाइमलेस तड़का.

0: Timeless Tadka.
1: RM2
2: Radio Masti.
0: Timeless Tadka.
3: इसी गाने के साथ आई एम हो चला है फॉर मनीष्मा जिसे हेलो वो आ रही है बॉली ब्रंच के शो में, तो यही पर मेक श्योर यू स्टे कनेक्टेड एंड ऐसे ही कीप स्माइलिंग विद आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musty.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
2: RM2.
0: Radio Musty.
2: Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty.
2: Feel the Musty.
3: टाइम चेक सुबह के 9 बजे है. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना के साथ.
4: सुधार लाया जा सके. कल शाम जनता को संबोधित अपने संदेश में श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने बताया कि कई सुधार प्रस्तावित किए गए हैं. इनमें वर्कर्स राइट्स एक्ट में कर्मचारियों की परिभाषा की समीक्षा करना, वर्क फ्रॉम होम के कानूनी ढांचे का निर्धारण करना और वर्कफेयर प्रोग्राम के संचालन से जुड़े पहलू शामिल होंगे. मूसलाधार बारिश की चेतावनी के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रणाली पर अंतर मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट पर भी उन्होंने बात की. विमानन क्षेत्र में पूर्व मध्य पूर्व में तनाव के बीच जेट A1 ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी एयर मॉरिशस के संचालन लागत पर लगातार दबाव डाल रही है. इसके परिणाम स्वरूप हवाई टिकटों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है. इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने एक वॉर रूम स्थापित किया है, एक विशेष समिति जिसका उद्देश्य इस बढ़ोतरी के प्रभावों को कम करने के लिए सभी संभावित उपायों का अध्ययन करना है. लक्ष्य है बाजार की स्थिति के अनुसार रणनीतियों को तेजी से समायोजित करना. 33.4 मिलियन रुपए, ये वो कुल राशि है जो फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अपनी पहली नीलामी के दौरान एकत्र की. यह आयोजन 4 दिनों तक चला और इससे प्राप्त धनराशि का एक हिस्सा राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा. ये नीलामी 27 से 30 अप्रैल के बीच आयोजित की गई. कुल मिलाकर 58 वाहन बेचे गए, जिनमें 7 नौकाएं, 7 मोटरसाइकिल, 2 बॉबकट मशीनें और 2 ट्रक्स शामिल हैं. ये प्रक्रिया FCC एक्ट के 29 मार्च 2024 से लागू होने के बाद संभव हो सकी है. अब आयोग को अपराध से जुड़े ये जब्त किए गए सामानों को बेचने का अधिकार प्राप्त है. अस्पतालों को धीरे धीरे एक वास्तविक वन स्टॉप शॉप में बदलना, जहां मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाओं से लाभ उठाने का मौका मिले, यही तीसरे डायबिटीज एंड वास्कुलर हेल्थ सेंटर का उद्देश्य है, जिसका आधिकारिक उद्घाटन बुधवार 29 अप्रैल को किया गया. सर अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल फ्लैक में ये उद्घाटन समारोह लगा. ये एक पूर्ण इकाई है जिसका लक्ष्य मधुमेह के उपचार को मजबूत करना है, एक विशेष दृष्टिकोण के माध्यम से एक ही संस्थान के भीतर. विदेश की खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के वरिष्ठ नेता ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कल अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि यदि ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा. और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष समाप्त हो गया है, क्योंकि वर्तमान में एक युद्ध विराम लागू है. साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें युद्ध से संबंधित विधायी मंजूरी के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है. और चलते चलते हम आपको बता दें कि इस फ्लैश न्यूज़ के बाद आज की चर्चा श्रम दिवस पर आधारित रहेगा. फ्लैश न्यूज़ के बाद किरण जानकी के मेहमान होंगे अप्रवासी घाट ट्रस्ट वन के अध्यक्ष सुखेन रामदास और तहल रामदीन. आप इसे इस फ्लैश के बाद देख पाएंगे. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. आपके ध्यान के लिए धन्यवाद. हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
5: Body Branch,
0: RM2,
5: Radio Masti.

0: Body Brunch RM2 Radio Masti.
1: चलिए सुबह सुबह में थोड़े से मस्ती कर लेते हैं, थोड़े से जान ले आते हैं आपकी सुबह को और भी मस्त बना देते हैं, रंगीन बना देते हैं। Have some party in this morning show.

and party on. वैसे आज तो party होंगी. So all those people celebrating their birthday today, you're the most welcome to send your messages in 549 and 1294 पर. यहाँ पर उमेश सिंह सौदागर का जन्मदिन है. ढेर सारी शुभकामनाएं coming from your brothers, of course, दिवेश सौदागर, प्रवेश सौदागर, not to forget your little भाइयो अखिलेश also, and not to forget your beloved wife अंजोरी पासौदागर की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं from the Gaya family and सौदागर family. आपको wish करते हैं wonderful happy birthday. वैसे आपके लिए जिंगल चला लेते हैं.

0: बर्थडे. अभी के लिए हम चला रहे थे अगला गाने. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग लकी नो टाइम फॉर लव मूवी से चोरी चोरी. हियर वी गो.
1: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.

0: चोरी चोरी कब कभी अपनी जिंदगी में चले आते हैं और वैसे ज्यादा सचा जाते हैं उनके आने से. वैसे दिस वन के साथ रिपीटिंग द वेडिंग एनिवर्सरी ऑल्सो यहाँ पर प्ले ब्यूटिफुल सॉन्ग फॉर मी करिश्मा शोएबा और फ्रॉम पोर्ट लुइस जस्ट विशिंग माई हस्बैंड अ हैप्पी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी. टेल हिम दैट आई लव हिम सो सो मच. क्या है कि अगर वो बगल में ही खुद ही बोल दो, ऊपर से हमने तो काम ही कर लिया. हेलो जी अश्विन जी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, योर वाइफ लव्स यू अ लॉट.
1: RM2 Radio Musti in the mix. Radio Musti in the mix.
0: वैसे यहाँ पर एक शुभ दिन है. हाय मनीष मानिक सॉन्ग गुजरात आशिल एंड दिव्या फॉर देयर वेडिंग टुडे. विश देम लक, हैप्पी हैप्पीनेस, हैप्पी लाइफ अहेड. गॉड ब्लेस फ्रॉम निर्मला टू पुनीत फैमिली ऑफ पाई. थैंक यू सो मच. वैसे यहाँ पर हम आपको ढेर सारे आशीर्वाद देना चाहते हैं फ्रॉम द होल टीम ऑफ RM2 रेडियो मस्ती, कि आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट ना हो और हमेशा हमेशा जो प्यार और इज्जत है, रिस्पेक्ट है, बनी रहे आपके जीवन में. बस सफलता ही सफलता और खुशियाँ ही खुशियाँ हो. विश यू ऑल द बेस्ट एंड अ वंडरफुल स्टार्ट ऑफ योर लाइफ टुगेदर.

0: बस ये तो हम चाहते हैं आपको रिलैक्स टाइम बिताओ अपने घर में या फिर कहीं पर भी आप साथ निभा रहे हो. आई जस्ट वांटेड टू बी फीलिंग हैप्पी एंड रिलैक्स एंड कूल. ओके, यहाँ पर हैप्पी बर्थडे साथ ही साथ विश करना चाहते तो नीता वुजाई ऑफ कॉन द मास्क पाफे विश इज कमिंग फ्रॉम फ्रेंड्स स्वीती है रीता सरिता बॉस पवन ऑल द वे बेस्ट विशेज टू स्वीट फ्रेंड नीता वुजाई. हैप्पी हैप्पी बर्थडे.
1: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: वैसे इस गाने को हम चलाएंगे राइट आफ्टर अनदर क्वेश्चन फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन. यहाँ पर आपको खेलने का मौका दिया जा रहा है. आई एम गोना प्ले लड़की बड़ी अनजानी है राइट आफ्टर द क्वेश्चन. आप सुनो हमारी क्वेश्चन को और मोबाइल को हाथ में ले लो. 5499129 पर सभी जवाब का इंतजार रहेगा आपका.
1: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती.
0: अच्छा जी, तो हम तैयार हैं. दिस गेम इज पावर्ड बाय द थिंक रिक्रूटमेंट. अगर आप हमें सही जवाब देते हैं विद द क्वेश्चन फॉलोज, यू विन अ गिफ्ट वाउचर ऑफ डायमंड लेजर सेंटर ऑफ 500 रुपीज लोकेटेड एट ग्लाइल एवेन्यू कैट्रोबॉन ऑफ टू बाय थिंक रिक्रूटमेंट. तो सवाल ये रहा आप सभी के लिए, व्हाट इज द मेन स्पेशलाइजेशन ऑफ थिंक रिक्रूटमेंट. व्हाट इज द मेन स्पेशलाइजेशन ऑफ थिंक रिक्रूटमेंट? इज इट हॉस्पिटैलिटी है यस और नो? हाँ या ना में जवाब दे रहा है. ओके, व्हाट इज द मेन स्पेशलाइजेशन ऑफ थिंक रिक्रूटमेंट? हॉस्पिटैलिटी, यस और नो? ऑन 5499129 पर ऑसम पार्टिसिपेशन वेटिंग फॉर यू हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती विद फुल नेम एंड एड्रेस के साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा. सही जवाब का इंतजार रहेगा. व्हाट इज द मेन स्पेशलाइजेशन ऑफ थिंक रिक्रूटमेंट? हॉस्पिटैलिटी, हाँ या ना में जवाब.

0: बातें नहीं आपको।
1: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती,
2: RM2 रेडियो मस्ती। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन आने वाला है। फर्स्ट क्वार्टर फाइनल इस थर्ड ऑफ मे संडे MBC 3 पर 6:30 PM। चार जोन, 45 कॉलेजेस, 12 टीम्स इन द क्वार्टर फाइनल्स। फाइनली कौन बनेगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जानने के लिए फॉलो कीजिए। देखिए पहला क्वार्टर फाइनल MBC 3 6:30 PM 3rd of May।
3: Join the RM2 team this Saturday, 2nd of May, for the grand opening of Harshini Fashion's new shop near Domaine Ritz, next to roundabout Saint-Julien-Deutmont bypass. RM2 will be on the spot from noon to 3 p.m. Loads of surprises and gifts waiting for you. Don't miss out.
4: MBC Astia de Oulami. Nous présentons une nouvelle application MBC Play. Une nouvelle façon pour vivre vos programmes préférés directement au mobile, tablette, ordinateur ou même télévision. Get une chaîne en direct, écoute une radio préférée, découvrir films, séries et si tu parles à ton journal télévisé, n'importe quoi tu étais. Download MBC Play sur App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play, avec ou partout.
2: RM2 Radio Mustache.

0: Bali Branch RM2 Radio Masti.
1: वैसे थोड़ी देर पहले हमने पूछा था सवाल कि व्हाट इज द मेन स्पेशलाइजेशन ऑफ थिंक रिक्रूटमेंट हॉस्पिटैलिटी, हाँ या ना में जवाब देना था. एंड द राइट आंसर इज ऑफ कोर्स यस. हमारे साथ है हमारे लग विनर, उनका नाम है सरोजा देवी जोगारा. कंग्रेचुलेशंस, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस. राइट आंसर भेज कर आप बने हैं द विनर ऑफ अ गिव वाउचर ऑफ डायमंड लेजर सेंटर 500 rupees लोकेटेड एट ग्लेयर एवेन्यू कैटरबॉर्न ऑफ अ टू बाय थिंक रिक्रूटमेंट. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, हैव अ वंडरफुल डे. द गेम वाज पावर्ड बाय थिंक रिक्रूटमेंट.
0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती.

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती RM2 रेडियो मस्ती।
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
5: North, South,
2: 103.5.
5: East, West,
2: 96.4.
5: Center,
2: 99.4.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
5: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
0: Time check, सुबह के 10 बजे है। आई सुनने अभी के लिए संक्षिप्त समाचार याचना के साथ नमस्कार आपको।
6: नमस्कार मनीष मां, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में कार्य परिस्थितियों और औद्योगिक संबंधों को और बेहतर बनाना, इसी उद्देश्य से नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल हाल ही में आयोजित श्रम और नौकरी पर आधारित असाइजेस के दौरान प्रस्तुत कई प्रस्तावों की समीक्षा करेगा ताकि कानून में सुधार लाया जा सके। कल शाम जनता को संबोधित अपने संदेश में श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने बताया कि कई सुधार प्रस्तावित हैं। इनमें वर्कर्स राइट्स एक्ट में कर्मचारियों की परिभाषा की समीक्षा, वर्क फ्रॉम होम के कानूनी ढांचे का निर्धारण और वर्कफेयर प्रोग्राम के संचालन से जुड़े पहलू शामिल किए जाएंगे। मूसलाधार बारिश की चेतावनी के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रणाली पर अंतर मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट पर भी उन्होंने बात की। बात करते हैं विमानन क्षेत्र की। मध्य पूर्व में तनाव के बीच जेट A1 ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी एयर मॉरिशस के संचालन लागत पर लगातार दबाव डाल रही है। इसके परिणाम स्वरूप हवाई टिकटों की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी ने एक वॉर रूम स्थापित किया है, एक विशेष समिति जिसका उद्देश्य इस बढ़ोतरी के प्रभावों को कम करने के लिए सभी संभावित उपायों का अध्ययन करना है। लक्ष्य है बाजार की स्थिति के अनुसार रणनीतियों को तेजी से समायोजित करना। 33.4 मिलियन रुपए, ये वो कुल राशि है जो फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने अपनी पहली नीलामी के दौरान एकत्र की। यह आयोजन 4 दिनों तक चला और इससे प्राप्त धनराशि का एक हिस्सा राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा। ये नीलामी 27 से 30 अप्रैल के बीच आयोजित की गई। कुल मिलाकर 48 वाहन बेचे गए जिनमें 7 नौकाएं, 7 मोटरसाइकिल, 2 बॉबकट मशीनें और 2 ट्रक शामिल हैं। ये प्रक्रिया FCC एक्ट के 29 मार्च 2024 से लागू होने के बाद संभव हो सकी है। अब आयोग को अपराध से जुड़े या जब्त किए गए सामान को बेचने का अधिकार प्राप्त है। पूरी प्रक्रिया जिसमें खरीदारियों को संपत्ति सौंपना भी शामिल है, एक स्वतंत्र नीलामीकर्ता की निगरानी में संपन्न हुई। इस पहली सफलता के बाद FCC अब अगली नीलामी की योजना बना रही है जिसमें इस बार जब्त की गई अचल संपत्तियां शामिल होंगी। विदेश की खबरों में भारत के हैदराबाद में तेज रफ्तार से चल रही गाड़ी नियंत्रण खोकर एक ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसकी हालत नाजुक बताई जाती है। इस दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। सरनाम रोड सुहिनाम में 90 साल के 90 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेम दत्त धुआ जो प्रेम के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके बेटे रोशन धुआ के मकान सरनाम रोड सुहिनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। मिशन क्रॉस रोड बोनाकर में मिशन क्रॉस रोड बोनाकर में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राधिका नुबिन, श्रीमती नादिका नुबिन जो राधिक के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके मकान मिशन क्रॉस रोड बोनाकर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: Bollywood Brunch RM2 Radio Masti.

0: 10:10 हुए हैं, आप जुड़े हैं आनंद टू रेडियो मस्ती के साथ। वेलकम द सेकंड आवर ऑफ योर बॉली ब्रांच
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: Hey famille, pas besoin de faire au shopping moyaz, pas besoin de place.
4: Côté Alcoury Fashion, nous inazis tout pour toute la famille.
3: Design lehenga, lecha, jodhpuri, crop top, sherwani, costume complet, blazer et bien plus encore à bas prix imbattable.
4: Alcoury Fashion, route royale, vis-à-vis Jodet Pamplemousse, téléphone 57 99 37 82.
3: Alcoury Fashion, c'est tradition, élégance et qualité.
1: RM2
2: Radio Musty.

0: परफेक्ट वे टू एंजॉय योर सैटरडे मॉर्निंग यहाँ पर एक कप चाय हर वैसे लीजी लीजी मॉर्निंग हो जाए हमारे साथ ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती यहाँ पर गा गेट यू सम रियली नाइस सॉन्ग जस्ट एकॉम्पनी यू विद योर कप ऑफ कॉफी एंड चाय
1: बॉडी ब्रंच आरएम2 रेडियो मस्ती
0: One of my favorites, भूत बंगला मूवी से तू ही दिसता है अरिजीत सिंह की आवाज में निकिता गांधी साथ में निभाते हैं इस गाने को

जी आप आ रहे हैं आपके मैसेजेस। नमस्ते जी, मैं हूँ किस्मा उत्तर विचित्र व्यासे और मेरे चाचा का बर्थडे है 75 इयर्स टुडे। एक सुंदर सा गाना उसके नाम कर दीजिएगा, जयराज जो बॉम्बू के रहने वाले हैं। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे गोज़ आउट टू यू जयराज जी। और पूरे 75 इयर्स हुए हैं आज, तो बन्नों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द आरजेस ट्यूनिंग टू आर एम टू रेडियो मस्ती। दिस वन गुजरात गाइज होस्ट एंड दोस्त। घर नहीं जाना गुमराह मूवी से, आप एंजॉय कर लो।

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Body Brunch, RM2, Radio Masti.
2: 10 बजने को है. अगर आप यू आर प्लानिंग ऑन टू डूइंग सम शॉपिंग और यू आउट विद फ्रेंड्स विद फैमिलीज और सिंपल अपने पार्टनर के साथ यू नो अच्छा दिखना चाहते हो, यू कैन पेयर इट अप. यू नो कुछ लोग होते हैं जो हम देखते हैं हमेशा पेयरिंग में नजर आते हैं, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ वेयरिंग जीन्स एंड ब्लू शर्ट और वाइट शर्ट एनीथिंग, लेकिन पेयर इट अप. एक अलग सा स्टाइल आप अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप यू आर अलोन गोइंग फॉर शॉपिंग. एनीवेज यू कैन totally opt for another style. So high-waisted jeans paired with a tucked-in t-shirt या फिर stylish crop top, क्या कहते हो? अगर आपको ठंड लग रही है कोई बात नहीं, एक ब्लेजर या फिर कोई मनोहारक कर लो for an effortless chic vibe. और जेंट्स के लिए keep it cool with denim jeans and a crisp white t-shirt or casual shirt. आप देख लो, sneakers wear करो and you keep it casual smart. What do you say? आप सहमत हो हमारी बात से? अगर आप है तो वेरी गुड, यू ट्राई योर लुक एंड सेंड अस अ पिक्चर, व्हाई नॉट बिफोर यू लिविंग फॉर होम. हम तो हमको भी जानना है कि आपने सुना है हमारे भी फैशन टिप्स को. अगर यू वांट टू ट्राई दिस लुक, टुडे इज द बेस्ट डे. आज तो सैटरडे भी है, खुद रिलैक्स हो जाइए, कैजुअल स्मार्ट वेयर को ऑप्ट कीजिए.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
1: RN2 Radio Masti.

0: Holly Branch, RM2, Radio Masti.
1: वैसे यहाँ पर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सैटरडे ब्लेसिंग्स फ्रॉम बेल्जियम. प्रकाशवती की तरफ से ये मैसेज आया है. लवली बहना, हाय कुमार देवीचंद, एंजॉयिंग योर प्रोग्राम. प्लेइंग माय गिटार एज यूजुअल. नेक्स्ट सॉन्ग इज आउट माय डैड शाम. लव यू सो मच पापा. गॉड ब्लेस यू एवरी डे. हेलो जी, हाउ आर यू? ललिता जीतन ड्राइविंग एंड लिसन टू योर लवली सॉन्ग सिलेक्शन. शॉपिंग के लिए जा रही हूँ मैं फ्लैग की तरफ से. सरोज कुमारी, रतन, वीना, गीता, ज्ञानती, दो भाई है संजय विजय, ललिता एंड जीतन परिवार वाला मंच. चलो तो ऑल दोस्त जो कि ऑप्ट कर रहे हैं एक लंबी सी ड्राइव के लिए. ग्लूमी ग्लूमी वेदर है, कोई बात नहीं, अमेजिंग गर्मी भी तो नहीं है. चलो ड्राइव सेफ. वी आर हियर टू कीप योर कंपनी विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शंस. 10:33 हुए हैं.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: टाइम चेक दिन के 11 बजे हैं। आइए सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार आपके साथ आज से। नमस्कार आपको।
4: नमस्कार मनीष मां से भी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। अस्पतालों को धीरे धीरे एक वास्तविक वन स्टॉप शॉप में बदलना, जहां मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं मिले, यही तीसरे डायबिटीज एंड वास्कुलर हेल्थ सेंटर का उद्देश्य है, जिसका आधिकारिक उद्घाटन बुधवार 29 अप्रैल को सर अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल फ्लाक में किया गया। ये एक पूर्ण इकाई है जिसका लक्ष्य मधुमेह के उपचार को मजबूत करना है, एक विशेष दृष्टिकोण के माध्यम से एक ही संस्थान के भीतर। यह एक संवेदनशील मुद्दा है जिसका वर्षों से इंतजार किया जा रहा है। मॉरिशस में कैनाबिस यानी गांजा सुधार एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। 14वीं बैठक गुरुवार को पोर्टली में आयोजित की गई, जो नेशनल ड्रग मास्टर प्लान के लॉन्च के उपलक्ष्य में हुई। इसमें विशेषज्ञों ने भाग लिया, ऐसे समय में जब अधिकारी कानून में संभावित बदलाव के प्रभावों का आकलन कर रहे हैं। एक इम्पैक्ट असेसमेंट प्रक्रिया फिलहाल जारी है और ये काम नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के तहत हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उद्देश्य एक समावेशी प्रक्रिया स्थापित करना है, जो ज़मीनी हकीकत और उन लोगों की आवाज़ को ध्यान में रखना है, जो चिकित्सा कारणों से गांजे के प्रयोग के मुद्दे पर किए गए फैसले से सीधे सीधे प्रभावित होंगे। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन द्वारा 27 से 30 अप्रैल के बीच यानी 4 दिनों तक एक नीलामी का आयोजन किया गया था। कुल मिलाकर 48 वाहन बेचे गए, जिनमें 7 नौकाएं, 7 मोटरसाइकिल, 2 बॉबकट मशीनें और 2 ट्रक शामिल थे। ये एक बहुत ही सफल प्रक्रिया रही। FCC एक्ट के 29 मार्च 2024 से लागू होने के बाद संभव हो सकी। अब पूरी प्रक्रिया, जिसमें खरीदारियों को संपत्ति सौंपना भी शामिल है, एक स्वतंत्र नीलामीकर्ता की निगरानी में संपन्न हुई। इस पहली सफलता के बाद फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन अब अगली नीलामी की योजना बना रही है और इस नीलामी से 33.4 मिलियन रुपए की रकम जमा की गई, जिसका एक हिस्सा राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं की फाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा। विदेश की खबरों में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के वरिष्ठ नेता ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कल अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा कि यदि ईरान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि वर्तमान में एक युद्ध विराम लागू है। और कांग्रेस नेताओं को भेजे गए एक पत्र में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि वे वॉर पावर्स एक्ट का पालन करने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि पिछले महीने ईरान के साथ सहमत युद्ध विराम ने इस कानूनी समय सीमा को रोक दिया है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। बिनाइन सीतेबालिसन रुस्पेल में, बिनाइन सीतेबालिसन रुस्पेल में 60 साल की 60 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवंती दसुगत पैदाशी नाम सुचित और जो फिफिक के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके मकान B9 सीतेबालिसन रुस्पेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए माही जाने की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। लोचिस रोड शे मैघोनी में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रेम सिसहाय श्री प्रेम सी सहाय जो दानपेशया के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 2:30 बजे उनके मकान लोचिस रोड शुमेघुनिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यादगाले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 2:30 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
5: Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: केके फॉर यू टेकन फ्रॉम द मूवी हार्डलेस. वेलकम, स्वागत है आप सभी का ने लास्ट आवर ऑफ योर बॉली ब्रंच विद मी मनीषमा. 11:14 हुए हैं. आप जुड़े हैं विद द बेस्ट रेडियो स्टेशन ऑफ कोर्स. वी टॉकिंग अबाउट आरएनटी रेडियो मस्ती. यहां पर आई गेट सम रियली नाइस ट्रैक आपके लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए. जुड़ जाइए हमारे साथ वीडियो नंबर 5491294 पर. भेजिए अपने मैसेजेस, डेडिकेशंस, हमें आपका इंतजार है.
1: RM2 Radio Musti in the mix. Radio

0: taken up from the movie Sanamre for you, and this one goes out to Sangaro France, jo ki hamesha saath nibhate rehte hain. And hi, next song goes out to my friends Shweta hai, Dee Saloni, Chachi Surekha, and Bhai Vishal working right now at Serge Liadutmo. Wishing them bon courage, miss you all from half an hour. So hello, hey, thank you for this beautiful song selection. थैंक यू लवली लेडी. वैसे आपने नाम नहीं बताया. अच्छा, रोशनी ऑफ कैटरबोर्न ने ये प्यार से मैसेज भेजा है. अभी के लिए आगे थे द रेक्स वंस, ब्यूटीफुल सॉन्ग, प्यारी लगे. लेकिन उससे पहले चला रहे थे एक छोटा सा ब्रेक. देन विल बी बैक विद प्यारी लगे फ्रॉम द मूवी बॉर्डर 2.
1: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती.
2: RM2
3: रेडियो मस्ती.
4: Chez Loulou, Ola, les UHT en briques de 1 litre, 59,95 €. Treat, ice cream, 1.8 litre à 199,50 €. Max Fly, Cola, 250 ml, 29,95 €.
5: Lolo Hypermarché, low, low

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Tchou, qui peut manger aujourd'hui? Mais pousse vite seulement là. Marie longue ça moi là.
3: Max Savers Mills les gars, bon goût, petit prix.
4: Le plan parfait. Venez découvrir les Max Savers Mills car il y en a pour tous les goûts à partir de 190 roupies. La qualité à prix mini.
5: It's Max Savers time. Mon content, mon pousse content.
6: McDonald's.
7: Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: RM2
1: Radio Musti.
8: चलिए कुछ ही समय बाद जाने का समय भी हो चलेगा. यू टेक केयर गाइस. अभी के लिए 11:50 हो रहे हैं. अब जुड़े हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ मैसेजेस डेडिकेशन दिस वन के साथ कविराज जो कि हमारे साथ है.

Holly Branch, RM2, Radio Masti. La la la la la la la la la la la la la la la la. चलिए इस गाने के साथ आपको जाने का समय हो चला है. आपके लिए लेकर आ रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग सिलेक्शन आरजे हंस ने. ओके ये ठीक है गाइज, आई एम गोना सी यू ऑन मंडे 4 से लेकर 7 बजे के बीच शाम के वक्त है. ये ठीक है, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल वीकेंड अहेड, एंजॉय योर शॉपिंग, एंजॉय योर डे विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बाय बाय.

0: के लिए संक्षिप्त समाचार एक बार फिर से याचना के साथ नमस्कार
1: नमस्कार मनीष मां सभी सुनने वालों को नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। बजट 2026-2027 की तैयारी के तहत आज सुबह वित्त मंत्रालय में जूनियर मंत्री धनेश्वर दामही ने बिजनेस मॉरिशस, मैक्सा एसोसिएशन दे मैन्युफैक्चरिंग और कृषि तथा व्यापार सदन के प्रतिनिधियों के साथ भेंट की। आज दोपहर बाद बैंक और नॉन बैंकिंग क्षेत्र के प्रतिनिधि की बारी होगी। बजट पूर्व सलाह मशवरे सत्र बजट की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जहां प्रस्तावों पर और सुझावों पर गौर किया जाता है। एक कम्युनिके के जरिए सूचित किया गया है कि हज के लिए 15 साल से कम उम्र वाले बच्चों को अब से वीज़ा नहीं दिया जाएगा, यानी 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे अब हज अदा नहीं कर पाएंगे। इस्लामिक कल्चरल सेंटर की को भी इसकी सूचना दी गई, खासकर इन बच्चों का वीज़ा रद्द कर दिया गया है जो नए निर्देशों के अनुकूल हैं। सऊदी अधिकारियों द्वारा एक कम्युनिके के जरिए इस पर जानकारियां दी गईं।

0: मॉरिशस में कार्य परिस्थितियों और औद्योगिक संबंधों को और बेहतर बनाना, इसी उद्देश्य से नेशनल ट्राइपार्टाइट काउंसिल हाल में आयोजित श्रम असाइसिस के दौरान प्रस्तुत कई प्रस्तावों की समीक्षा करेगा, और ताकि इसमें सुधार लाया जा सके इनमें वर्कर्स राइट्स एक्ट में कर्मचारियों की परिभाषा की समीक्षा, वर्क फ्रॉम होम के कानूनी ढांचे का निर्धारण और वर्क फेयर प्रोग्राम के संचालन से जुड़े पहलू शामिल हैं। मूसलाधार बारिश की चेतावनी के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रणाली पर अंतर मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट पर भी उन्होंने बात की। विदेश की खबरों में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जारी है और इस बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बताया कि यूएस और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष समाप्त हो गया है क्योंकि वर्तमान में एक युद्ध विराम लागू है। साथ ही उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें युद्ध से संबंधित विधायी मंजूरी के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। कानून के अनुसार यदि कोई अमरीकी राष्ट्रपति सैन्य कार्रवाई के बारे में कांग्रेस को सूचित करता है तो उसे 60 दिनों के भीतर कांग्रेस की मंजूरी प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उसे सैन्य कार्रवाई रोकनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस नेताओं को भेजे गए पत्र में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस वॉर पावर्स एक्ट का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। अंग्रे मार्शियल ओकुलेमे 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री विद्यानंद सिचन जो विद्यानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे विकास सिचन के मकान अंग्रे मार्शियल ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 8:10 AM। बुआशेरी रोड मुकामी 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री रामदीन बच्चू जो कृष्ण के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2:15 बजे उनके मकान बुआशेरी रोड मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई ब्लॉन्च की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:15 PM। रुथ रॉयल मेजिन कॉन्डेमास्क में 91 साल के 91 ईयर्स ओल्ड के श्री लखीपर साद तिरभुन जो चाचा सामाला के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनकी पत्नी सावित्री तिरभुन के मकान रुथ रॉयल मेजिन कॉन्डेमास्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:03 PM। मिशन क्रॉस रोड बोनाकय में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राधिका नुबिन जो राधिक के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी से पहर 3 बजे उनके मकान मिशन क्रॉस रोड बोनाकय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:03 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv. Love Lounge. RM2. Radio Musty. Love Lounge.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: Love Lounge. Pyar, Ishq, Mohabbat. Love Lounge.
4: 12:08 हो चला है. इट्स अ प्लेजर टू वेलकम यू ऑन रेडियो मस्ती. स्पेशल थैंक यू टू मनीष माँ जो यहाँ पर थी सुबह से फॉर आज का बॉली ब्रंच. और मैं हूँ हंसनी, आई विल बी इन द स्टूडियो क्योंकि आज घूमने का टाइम आ गया है. हम रिया से मिलने वाले हैं. शी इज लाइव इस समय एट सेंट जूलिया डुटमॉ एट हर्षिनी फैशन, जहाँ पर लग रहा है आज एक बहुत बड़ा इवेंट. सो कुछ ज़्यादा डिटेल्स के लिए वहाँ पर हैपनिंग्स क्या है, प्रमोशंस उनके बारे में सब कुछ वो हमें बताने वाली है. शी विल बी देयर अप टिल 3 PM. राइट रिया, अ बिग हेलो एंड वार्म वेलकम टू यू. विश यू अ वेरी गुड आफ्टरनून.
5: Hello Hansini and big hello to all our lovely listeners and good afternoon सभी को. मैं हूँ आपके साथ आपकी रिया. एंड यस हंसिनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम स्टूडियो के बाहर हैं. लेट मी टेल यू वेयर एग्जैक्टली वी आर एट हर्षिनी फैशन, जो कि पाया जाता है एट सेंट जूलियन डुटमॉ. एंड लेट मी टेल यू एग्जैक्टली कहाँ पाया जाता है. सो ये बाईपास में है एंड राउंड अबाउट के बिल्कुल सामने है, नज़दीक है. एंड इसके बगल में एक काली माता मंदिर है जहाँ पर आप बगल में देख पाएंगे हर्षिनी फैशन. सो यस, RM2 रेडियो मस्ती टीम यहाँ पर एट हर्षिनी फैशन. एंड हंसिनी, आपको हम बता दें दैट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है दैट वी आर एट शॉप. ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि हम किसी शॉप में आए हुए हैं, बट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है. जी हाँ, लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर जो रैक्स है फुल है, भरे हुए हैं एलिगेंस से, कलर्स से एंड ब्यूटीफुल आउटफिट्स के साथ. वेल, जो लोग हर्षिनी फैशन से इस नाम से परिचित है जानते होंगे कि लालमाटी में भी ये पाया जाता है, ये शॉप पाया जाता है. एंड लास्ट सैटरडे, लास्ट वीक ही इन्होंने अपनी सेकंड आउटलेट, सेकंड ब्रांच खोली है यहाँ पर एट सेंट जूलियन डुटमॉ. सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू हर्षिनी फैशन. और यहाँ पर आप आएंगे तो देखते रह जाएंगे, इट्स ब्यूटिफुल यहाँ पर, बहुत ही बड़ी है द सेकंड आउटलेट. एंड ऑनेस्टली यहाँ पर आएंगे हम शो के आप कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदेंगे. तो लेट मी टेल यू फर्स्टली दैट यहाँ पर आपको मिलेगा क्या. हर्षिनी फैशन ये डिज़ाइन करता है, डिज़ाइनर साड़ीज में स्पेशलाइज करता है. स्टनिंग लहंगाज आपको मिलेंगे एंड चूड़ीदार्स बहुत ही एलिगेंट है, क्लासिक कुर्ताज, रॉयल शेरवानीज, लेडीज़ हो या जेंट्स, ट्रेडिशनल हो या इंडो वेस्टर्न, आपको मिलेगा यहाँ पर सब कुछ. सो ऐसा अगर किसी की शादी है आप जल्द ही अटेंड करने वाले हैं और अभी तक आपने सोचा नहीं है कि क्या पहनेंगे, सो यस आप ज़रूर आ सकते हैं यहाँ पर एट सेंट जूलियन डुटमॉ और आपको मिलेगा एक से एक बेहतरीन पीस. एंड यस, विल टॉक अबाउट प्राइसेस. यहाँ पर प्रमोशन जारी है, बिग बिग प्रोमोज लॉन्च हाल ही में किया है. सो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप खाली हाथ नहीं जाएंगे. वी हैव बिग प्रमोशन, बिग डिस्काउंट एंड वैरायटी ऑफ चॉइसेस टू मेक. सो आप अगर आसपास हो, अगल बगल हो, आप अगल बगल नहीं भी हो, इट्स टोटली फाइन क्योंकि आप ज़रूर आ सकते हैं. आप शायद सोच रहे हैं कि आएंगे तो कैसे पार्क करेंगे, तो आई टेल यू दैट यहाँ पर पार्किंग स्पेस बहुत बड़ी है. आप आइए, बस से भी आ सकते हैं, गाड़ी से आ सकते हैं. वी हैव अ लार्ज पार्किंग लॉट यहाँ पर. एंड ऑल्सो यहाँ पर हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो ऐसे मुँह मीठा ना करे क्या होगा. तो यहाँ पर आपको जलेबीज मिल रही है एंड बहुत ही यम्मी

0: टेस्टी जलेबीज है, हमने तो खा लिया है एंड आपकी बारी है, तो आइए मुंह मीठा कीजिए एंड शॉपिंग भर भर के कीजिए। आरएम2 रेडियो मस्ती टीम एट हर्षिनी फैशन सेंजुरिया जुतमो।
1: आरएम2 रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feel the Musti. Radio Musti.

0: Radio Musty.
1: In the mix. Well, ये तो आप सभी जानते हैं कि मॉरिशस में अभी ऑफिशियली वेडिंग सीजन मोड

0: पहनना है. और सबसे बड़ा क्वेश्चन हम आजकल यही पूछते हैं कि क्या पहने, एंड दैट्स अ बिग क्वेश्चन, क्या पहना जाए. सो यस, हर्षिनी फैशन ने उसका आंसर सिंपल बना दिया है. रेडी टू वेयर आउटफिट्स अवेलेबल यहाँ पर. वी आर एट हर्षिनी फैशन सेंटर नियर दुतमा, जहाँ पर हाल ही में इनका जो सेकंड आउटलेट है ये लॉन्च हुआ है, एंड इट वाज द ग्रैंड ओपनिंग लास्ट सैटरडे. यहाँ पर प्रमोशंस जारी है. लास्ट सैटरडे ओपनिंग हुआ था, बट स्टिल बिग डिस्काउंट, बिग प्रमोशन स्टिल ऑन एट हर्षिनी फैशन. सो यस, हम कह रहे थे दैट अगर आजकल शादी का सीज़न चल रहा है तो आई एम श्योर कि आपको कपड़े तो चाहिए, और अगर कपड़े चाहिए तो लेट मी टेल यू दैट आप यहाँ पर एट हर्षिनी फैशन ज़रूर आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर है बहुत सारे ऑप्शंस. रेडी टू वेयर आउटफिट्स अवेलेबल है. आई नो थोड़े ऐसे पीपल, ऐसे लोग होते हैं जो लास्ट मिनट सोचते हैं कि क्या पहनेंगे. सो नो लास्ट मिनट टेंशन, नो टेलरिंग स्ट्रेस. ब्राइड स्क्वाड के लिए लहंगाज हैं, मॉम्स के लिए ग्रेसफुल साड़ीज, और दूल्हे राजा के लिए यहाँ पर एक से एक बढ़िया शेरवानी है. और रिसेप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंडो वेस्टर्न आउटफिट भी आपको मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छे दाम में. यहाँ एक कंप्लीट फैशन पैनोपी अवेलेबल है, मतलब एंट्री से एग्जिट तक फुल लुक रेडी है. एंड हम यहाँ पर बता रहे हैं दैट इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर कलेक्शन है. हम अपने फेसबुक पेज पर ज़रूर पोस्ट करेंगे, एक दो पिक्चर्स आप देख सकते हैं, और देखेंगे तो भागते भागते आ जाएंगे यहाँ पर आज हर्षिनी फैशन सेंट जूनियर दुतमा. लेट मी टेल यू दैट आरएम2 रेडियो मस्ती टीम यहाँ पर है, एंड इनका एक और आउटलेट भी है आज लाल माटी, लेकिन आज यहाँ पर द सेकंड आउटलेट, यहाँ पर बिग प्रोमोस डिस्काउंट अवेलेबल है, एंड गिफ्ट्स, बहुत सारे गिफ्ट्स है. आपको हम ज़रूर बताएंगे व्हाट्स द गिफ्ट. वी हैव गॉट यहाँ पर साड़ीज आपको मिलेंगे, चूड़ीदार मिलेंगे, एंड ऑल्सो कुर्तीज, क्रॉप टॉप सेट, सब कुछ आपको मिलेगा. एंड गिफ्ट्स के तौर पर यही सब आपको मिलने वाला है. सो यस, आप आइए, अपनों के साथ आइए, अपने मंगेतर के साथ आइए, बीवी के साथ आइए, एंड लेडीज आप अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर आ सकते हैं एट हर्षिनी फैशन. आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदेंगे. शादी वाला सीज़न चल रहा है, ऐसे कैसे आप खाली हाथ जाएंगे. हाथ तो आपका भरा रहेगा, एंड ऑल्सो मुंह मीठा भी यहाँ पर कराया जा रहा है. यमी यमी जलेबीज यहाँ पर आपको मिलेंगे, एंड ऑल्सो शॉपिंग के साथ साथ वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ म्यूजिक आपके नाम. सो यस, विल बी गेट बैक टू यू विद मोर अपडेट्स, मोर आउटफिट जिस पर हम बात करेंगे. एंड ऑल्सो यहाँ पर गिफ्ट्स के बारे में तो हमने बात कर लिया, तो यहाँ पर अगर आप गिफ्ट्स चाहते हैं तो ज़रूर आइए अपनों के साथ. अभी के लिए म्यूजिक टाइम.
1: RM2 Radio Musti.
2: Hit music only.
3: Radio Musti feels a musti.

0: FM2
1: Radio Musti.
2: Allons chez Loulou.
3: Chez Loulou, Sea Oves. Fish Fingers 300 grammes à 52,95 €. Basmati Rouge de grade 11-21 de 5 kg, 357 €. Flora Margarine de 1 kg, 209,50 €.
4: Lolo Hypermarché, Low Low Prices. Morcellement Saint-André et le Valentina Mall, Phoenix.
5: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
0: RM2
1: Radio Musti.
6: राइट, अगर आप भी इस ब्यूटीफुल सैटरडे को स्माइल करना चाहते हैं सो डू कम हियर एट हर्षिनी फैशन, जो कि पाया जाता है एट सेंचुरिया जुतमा. एंड लेट मी टेल यू दैट वी आर एट देयर सेकंड आउटलेट. यहाँ पर शॉपिंग ही शॉपिंग चल रही है. आई एम श्योर कि आपको भी शॉपिंग करनी है, शादी रिलेटेड, किसी पूजा में जाना है या किसी सगाई में जाना है आपको, तो ज़रूर आप यहाँ पर आ सकते हैं एंड आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो सिलेक्शन मैं देख रही हूँ इससे आंखें बड़ी बड़ी रह जा रही है. सो यस, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं एंड शॉपिंग एज आई टोल्ड यू दैट भर भर के हो रहे, चाहे वो लहंगाज हो, साड़ीज हो, ज्वेलरी हो, जूते हो, बहुत ही अच्छे दाम में आपको मिल रहा है. एंड दैट्स ओनली बिकॉज इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है अपना सेकेंड आउटलेट यहाँ पर एट सेंट जूलियन दुतमा. तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत लेडी से. हेलो,
7: हाय,
6: एंड व्हाट्स योर नेम?
7: पल्लवी.
6: पल्लवी, बहुत ही प्यारा नाम है आपका. सो टेल मी, आप यहाँ पर करने क्या आई है आज स्पेसिफिकली? व्हाट यू डूइंग टुडे?
7: आई केम टू बाय साड़ी फॉर माय चाची.
6: साड़ी चाची जी के लिए? दैट्स सो वंडरफुल. और आपको साड़ी मिल गई?
7: यस, फ्री साड़ीज वी गॉट.
6: फ्री साड़ी? सो आप ही सोचे, यहाँ पर पल्लवी एक साड़ी खरीदने आई थी बट लेकर जा रही है तीन तीन साड़ियाँ. बहुत ही अच्छी बात है, आपकी शॉपिंग हो गई. एंड चल, ये यहाँ के प्राइसेस आपको कैसे लगे?
7: इट्स रियली गुड प्राइस, द क्वालिटी इज आल्सो गुड.
6: ओके, सो यहाँ पर नॉट ओनली प्राइसेस बट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है. एंड पल्लवी, हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे. आपको पता है दैट हर्षिनी फैशन के कितने आउटलेट है?
7: टू आउटलेट्स है.
6: एग्जैक्टली, सही जवाब. दो आउटलेट्स है हर्षिनी फैशन के और इसी के साथ आपको मिल रहा है एक गिफ्ट. सो मिस्टर हर्ष विल गेट यू योर गिफ्ट एंड थैंक यू सो मच पल्लवी. कीप स्माइलिंग, आपकी स्माइल बहुत ही खूबसूरत है एंड आई विश यू हैप्पी शॉपिंग. थैंक यू. एंड टू ऑल आवर लवली लिसनर्स, आप भी आ सकते हैं एट हर्षिनी फैशन एंड यू कैन शॉप. तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर पल्लवी को मिल क्या रहा है. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लू साड़ी, स्काई ब्लू साड़ी एंड आपको ये मिल रहा है. चलिए हर्ष जी आपको देंगे साड़ी. कंग्रेचुलेशंस टू यू पल्लवी एंड कीप एंजॉयिंग योर शॉपिंग एज वेल. थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग हमारे साथ. सो यस, यहाँ पर आप आएंगे आज तो खाली हाथ नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ गिफ्ट्स आपके नाम. जैसे पल्लवी को मिल रहा है एक साड़ी, शायद आपको भी मिल जाए साड़ी, कुर्ता या आपको लहंगा भी मिल जाए, पता नहीं क्या कुछ मिल सकता है. वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स यहाँ पर. तो आइए अपनों के साथ, फैमिली के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी आप आ सकते हैं एंड उसे कहिए कि आज कुछ ना कुछ आपको लेकर दिया जाए. सो यस, कम हियर एट हर्षिनी फैशन एट सेंट जूलियन दुतमा. आरएम2 रेडियो मस्ती टीम यहाँ पर विद गुड म्यूजिक.
1: आरएम2 Radio Musti in the mix. Radio Musti.

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: कि क्या होता है कि डजंट फिट आवर बजट, बहुत ही महंगा पड़ जाता है. लेकिन लेट मी टेल यू कि आपका ये जो ख्वाब है इट्स पॉसिबल. जी हाँ, ज़रूर पॉसिबल हो सकता है. एट हर्षिनी फैशन यहाँ पर आपको मिलेगा रेप्लिकाज ऑफ सव्यसाची, आपको मिलेगा रेप्लिकाज ऑफ मनीष मल्होत्रा एंड और भी बहुत सारे रेप्लिकाज आपको मिलेंगे, वो भी कलर्स में, क्वालिटी में. क्वालिटी में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं है, यहाँ पर आपको मिलेगा गुड क्वालिटी एंड वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में. सो लेट मी टेल यू दैट अगर आपका भी सपना है कि आप एक सव्यसाची लहंगा पहनकर शादी करो, तो यहाँ पर आपका ये स्वप्न जरूर पूरा हो सकता है. सो आइए यहाँ पर एंड शॉप एट हर्षिनी फैशन सेंट्रलियन दुतमौ. यहाँ पर शादी शॉपिंग चल रही है, आम शो की बहुत सारे अन्य शॉपिंग भी चल रही है. यहाँ पर देख रहे हैं कि चारों जगह बस लोग ही लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं एंड दे आर चूजिंग कि क्या पहना जाए. अगर शादी में जा रहे हैं तो ज़रूर कुछ एक्सक्लूसिव तो बनता है. और एक्सक्लूसिव कपड़ों के बारे में बात करें तो हर्षिनी फैशन से बेहतर और कहाँ जा सकते हैं. यहाँ पर आपको अगर कलर्स प्रेफरेंस है तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेस्टल कलर्स. आपको ब्राइट चाहिए तो ब्राइट कलर्स मिलेगा. एंड आजकल काफ़ी ट्रेंडी है रस्ट कलर. जी हाँ, रस्ट कलर काफ़ी ट्रेंडी है, लोगों को पसंद आ रहा है रस्ट कलर. सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक बहुत ही टू पीस है यहाँ पर क्रॉप टॉप और इसका जो प्लाजो है इसे कहते हैं, और इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा आता है. एंड इस ब्लाउज में बहुत ही अच्छा काम किया गया है, इट हैज़ स्टोन्स एंड ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है. सो आम शो कि आप भी आएंगे तो देख पाएंगे. यहाँ पर हम सिर्फ बयां कर रहे हैं, बट अगर आप खुद आएंगे एंड यू कैन सी हम किस क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आपको प्यार हो ही जाएगा, जैसे हमें भी प्यार हो गया है यहाँ पर इन डिज़ाइनर आउटफिट्स से. बहुत ही खूबसूरत कलर्स है, क्वालिटीज़ है. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द रस्ट कलर, तो यहाँ पर एक लहंगा भी हमें दिखा, रस्ट कलर का लहंगा एंड इट्स स्टनिंग, स्टनिंग. सो ऑल माई ब्राइड्स टू बी, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिग डे में आप चमको, तो यहाँ पर आप आ सकती है. अपने फैमिली के साथ आइए, अपने मंगेतर के साथ आइए एंड यू कैन शॉप. यहाँ पर आज आपको मिल रहा है बिग डिस्काउंट, बिग प्रमोशन जारी है एट हर्षिनी फैशन. एंड नॉट ओनली यहाँ पर कपड़े आपको मिलेंगे, बट लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर ज्वेलरीज भी बहुत कमाल के हैं. आपको बैंगल्स मिल जाएंगे, सेट मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत हार नेकलेस हैं यहाँ पर, और वो भी मैचिंग पोटलीस के साथ. सो आप ज़रूर आइए यहाँ पर एंड विल गेट बैक टू यू विद सम मोर अपडेट्स अबाउट द ज्वेलरी.
1: RM2 Radio Musti. Feel the Musti.

0: Radio Musty.
1: In the mix.
2: In the mix.
3: All right, RM2 Radio Musty team at Harshini Fashion Centre in Dutmo. So yes, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं about outfits, traditional outfits, saris, lehengas, kurtas, sherwani, सब कुछ है यहाँ पर. And let me also tell you that आजकल काफी trend है ready-made blouses, ready-made cholis जिसे हम कहते हैं. And यहाँ पर आपको मिलेगा एक variety of ready-made cholis. जी हाँ, आजकल टाइम ही कहाँ मिलता है. साड़ी से आप ब्लाउज कट करेंगे, फिर जाएंगे टेलर के पास, फिर सिलवाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. और टॉकिंग अबाउट द प्राइस, तो आप कुछ ऐसा ही पे करेंगे जितना कि ये शॉप में आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पर आप अगर चाहे तो ज़रूर आ सकते हैं. एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर आपको एक नहीं, दो नहीं, बट वैराइटीज़ मिलेंगे जहाँ पर आप शॉप कर सकते हैं खुल के. एंड अगर आपको स्लीवलेस पसंद है तो स्लीवलेस मिल जाएंगे, अगर आपको फुल स्लीव्स पसंद है तो फुल स्लीव्स भी मिलेंगे. एंड अगर आपको कुछ और डिज़ाइंस पसंद है तो ये भी मिलेंगे. प्लेन चाहिए, डिज़ाइनर चाहिए, स्टोन वाले चाहिए, सब कुछ मिलेंगे और वो भी एट अफोर्डेबल प्राइसेस. सो यस, यहाँ पर न सिर्फ साड़ीज लहंगाज बट ऑल्सो वेरी गुड चोलीज, यहाँ पर ब्लाउजेज आपको मिलेंगे. एंड जो लोग शादी में जा रहे हैं बट आपके पास साड़ी है लेकिन चोली नहीं, तो आप ज़रूर यहाँ पर आ सकते हैं. इट्स रियली ईजी टू कम हियर एट सेंट जूलियन दुतमा. लेट मी टेल यू दैट इट्स ऑन द बाईपास और ये राउंड अबाउट के एकदम नज़दीक है और बगल में काली माता मंदिर है. सो आप यहाँ पर आइए, पार्किंग लॉट बहुत बड़ी है, आइए फैमिली के साथ एंड शॉपिंग कीजिए. शॉपिंग फेस्टिवल कह सकते हैं कि यहाँ पर चल रहा है. RM2 रेडियो मस्ती के साथ आप यहाँ पर आप आइए एंड हमारे साथ भी आप एक दो पल ज़रूर बिता सकते हैं. आप शॉपिंग कर सकते हैं, रेडियो मस्ती के साथ भी थोड़ा सा गपशप हो जाएगा. सो यस, लेट मी टेल यू दैट विल हेड टुवर्ड्स फ्लैश न्यूज इन सम टाइम एंड विल बी बैक.
1: वेलकम वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती.
0: Radio Musty.
4: Hits music only.
0: Feels a musty.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: Wish you all a very good afternoon and check your time. It's already 1 p.m. ये सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी के साथ। आपको नमस्कार करुणा जी।
4: नमस्कार हंसिनी, सभी को नमस्कार। बजट 2026-2027 सलाह मशवरे के तहत आज सुबह वित्त मंत्रालय में जूनियर मंत्री धनेश्वर दामरी ने पोर्टल में विभिन्न आर्थिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इनमें बिजनेस मॉरिशस, मैक्सा, निर्माता संघ, कृषि सदन और व्यापार सदन के सदस्य शामिल रहे। इस बैठक का उद्देश्य आगामी बजट के लिए निजी क्षेत्र की प्राथमिकताओं तथा सुझावों को समझना था। दोपहर में बैंकिंग और गैर बैंकिंग क्षेत्रों के साथ साथ वित्तीय सेवाओं से जुड़े कार्यकर्ता भी सरकार के समक्ष अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। सऊदी अधिकारियों ने हज 2026 के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के लिए वीजा रद्द करने का निर्णय लिया है। हज मामलों के लिए जिम्मेदार मंत्री शकील मोहम्मद के मुताबिक ये फैसला कल रात के दौरान लिया गया। मॉरिशस में इस फैसले से 5 किशोर संबंधित हैं। ये कदम केवल मॉरिशस तक सीमित नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी लागू किया गया है। मंत्री शकील मोहम्मद इस मुद्दे पर सऊदी अरब के हज मंत्रालय तथा संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सके और संभावित समाधान तलाशे जा सके। विश्व स्तर पर मनाई जाने वाली वर्ल्ड टूरिज्म ऑटिज्म अवेयरनेस डे के अवसर पर ब्रॉन्स एक्वार्ड मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों की प्रारंभिक पहचान को लेकर एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इस पहल का मकसद आम जनता को ऑटिज्म के शुरुआती संकेतों के प्रति अधिक सतर्क करना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू के अनुसार फ्लाक में जल्द ही एक विशेष डे केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा जो ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों और उनके परिवारों को समर्पित सेवाएं प्रदान करेगा। विदेश में अमेरिका ने जर्मनी से करीब 5,000 सैनिक हटाने का फैसला किया। ये फैसला आने वाले महीनों में नेटो के भीतर नए तनाव को जन्म दे सकता है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: नंबर 24 से मोनसिनियर लीन रुतबा से कत्र बोन में 70 साल की 70 ईयर ओल्ड श्रीमती नारायणी बिसेसर श्रीमती नारायणी बिसेसर पैदाइशी नाम बिरगुनाथ जोमामाल दू से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 3 बजे इनके मकान नंबर 24 मोनसिनियर लीन रुतबा से कत्र बोन से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी पालमा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेट 3 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: राइट, अभी हम देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा बदल गया है यहाँ पर, हर किसी बारिश हो रही है एट सेंट जूलियन दुतमा, बट लेट मी टेल यू दैट बारिश हो या कड़ी धूप, शॉपिंग जारी होनी ही चाहिए। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं एट हर्षनी फैशन दैट बहुत सारे लोग आए हुए हैं एंड इट्स अ बिट क्राउडेड, वी कैन से दैट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं शादी शॉपिंग हो रही है। एंड यहीं पर चलते चलते एक ब्यूटीफुल लेडी से हम मिलते हैं। हेलो
1: हेलो।

0: And what's your name?
1: Sneha.
0: Sneha, that's a lovely name, just as you are. And Sneha, tell me, aaj aap yahan par karne kya aayi hai? What you're here for?
1: Maybe for shopping with my guys.
0: Oh, congratulations, first of all. Many heartiest congratulations aapko. And yahan par aap wedding shopping karne ke liye aayi hai. So tell me, aapko mila jo aap dhoond rahi thi?
1: Haan, maine
0: mil gaya hai. Wedding lehenga mila hai ya saree?
1: Wedding lehenga, gigawa and chotari.
0: Oh wow, that's impressive. तो चलिए आप से हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे अभी. And we'll ask you, आपको पता है that Harshini Fashion has another branch as well, another outlet.
1: It is at Lal Mati.
0: Exactly, it's at Lal Mati and exactly opposite the police station, right?
1: Exactly.
0: आप जाती हैं वहाँ पर? ओके, तो स्नेहा वहाँ पर भी जाती है और यहाँ पर आई है अपनी वेडिंग शॉपिंग करने के लिए. सो यस, आपने सही जवाब दिया है एंड इसी पर आपको मिल रहा है एक ब्यूटीफुल साड़ी एंड दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वन, गोज आउट टू यू. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन. चलिए यहाँ पर हम अभी चल रहे हैं एंड वी कैन सी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, शॉपिंग जारी है. यहाँ पर चलते चलते हमने देखा कि एक पूरा का पूरा परिवार आया हुआ है एंड दे आर हियर एट Harshini Fashion. कब से आए हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं एंड हियर वी मीट अ ब्यूटीफुल लेडी. हेलो,
2: हाय,
0: एंड व्हाट्स योर नेम?
2: करिश्मा.
0: करिश्मा, एंड टेल मी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा करिश्मा हो गया है. यहाँ पर क्या है कि आप आई हुई है एंड आई कैन सी दैट यू गॉट योर आउटफिट ऑलरेडी एंड टेल मी अबाउट द क्वालिटी, प्राइस, आपको कैसे लगे?
2: Actually, when we came here, we were very well welcome, and then we really loved the outfits. They were like in my choice, and I was saying always like I don't know which one I would prefer, etc. And once I wear it, it was like in my choice, you know, and the quality is so great here.
0: So I can say that aapko apni dream outfit mil hi gayi hai. It's your dream outfit.
2: Yeah, it is.
0: And yes, so tell me, aap kahan se aaye ho, from where you are?
2: I'm from Riombel in the south.
0: Okay, so Riombel se hai and that means from south. Aap south से यहाँ तक आई है टू डू योर वेडिंग शॉपिंग. सो आई विश यू कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आपको मिल गया है एंड आई कैन सी इट्स द पिंक वन, राइट? दिस वन. सो ये वाला क्या है?
2: दिस वन इज फॉर द रिसेप्शन.
0: It's for the reception, so that's amazing collection. And let me tell all my lovely listeners that aapko mila hai ek gift. Aapko ek gift mila hai, ek lehenga hi mila hai as a gift. साड़ी मिली है एज अ गिफ्ट. तो यहाँ पर सिर्फ गिफ्ट से गिफ्ट चल रहे हैं एंड विल से थैंक यू टू Harshini Fashion फॉर हैविंग यू यहाँ पर. और आई कैन सी आपके लहंगाज बहुत ही खूबसूरत है. सभी फैमिली आए हुए हैं तो आप सभी को ऑल द बेस्ट कहती हूँ एंड कंटिन्यू योर शॉपिंग एट Harshini Fashion.
2: थैंक यू सो मच Harshini Fashion. थैंक यू.
0: ओके, थैंक यू. एंड चलिए अभी हम और आपको अपडेट्स देते रहेंगे बट फॉर नाउ चलिए हम थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेते हैं, द बेस्ट ऑफ म्यूजिक ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

आता है ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Radio Musty.
1: In the mix.
2: Well, ये तो हम सभी को पता है that what makes a bride more beautiful, it's her smile, of course. But अगर आपके कपड़े हर्षिनी फैशन से आए तो सोने पे सुहागा वाली बात हो ही जाएगी, because यहाँ पर we have the best selection. जी हाँ, यहाँ पर आप आएंगे आर्टिस्ट जूलिया दुदमा तो आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि इनके जो सिलेक्शन है लाजवाब तो है ही. लेकिन यहाँ पर हम कपड़े के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम ज्वेलरीज के बारे में बात करेंगे. यहाँ पर मैं आई हूँ आत ज्वेलरी सेक्शन, और ऑनेस्टली बिल्कुल ब्राइडल ड्रीम जैसा लग रहा है. ब्यूटीफुल ज्वेलरीज दैट्स अवेलेबल. सिंपल ब्राइडल अगर आपको पसंद है तो आपको मिल जाएंगी एलिगेंट डिजाइन, ग्रेसफुल फिनिशिंग. वैसे कई ब्राइड्स ऐसी होती है जिनको हैवी ज्वेलरी बिल्कुल भी पसंद नहीं, एंड अगर आपको हैवी पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर आज हर्षिनी फैशन ज़रूर आ सकते हैं. एंड यहाँ पर वी हैव अ ग्रेट वैरायटी ऑफ चॉइसेस टू मेक. आपको कुंदन पसंद है तो आपको कुंदन मिलेंगे, अमेरिकन डायमंड पसंद है तो ये भी मिलेंगे. बहुत ही सिंपल पोर की डिज़ाइन अगर आपको चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा. एंड आई कैन सी दैट यहाँ पर मिरर ज्वेलरी भी अवेलेबल है. सिल्वर हो या आइवरी आपको पसंद है, आपको कलर पसंद है, रेड, ग्रीन, रस्ट कलर, सब कुछ है यहाँ पर. और अगर आपको साउथ इंडियन डिज़ाइन चाहिए तो ये भी आपको मिल जाएगा. एंड वो भी प्राइसेस के बारे में बात करें तो इट्स सुपर अफोर्डेबल यहाँ पर. क्या है कि हाल ही में इनका जो सेकंड आउटलेट है लॉन्च हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बिग बिग प्रमोज जारी है. सो आप भी आइए एट हर्षिनी फैशन. एंड चाहे आप ज्वेलरी शॉप करो, पोटली, क्लच या ब्राइडल वेयर, एंड लेट मी टेल यू दैट मैं सिर्फ लेडीज से बात नहीं कर रही हूँ, नॉट ओनली फॉर लेडीज बट हमारे जो जेंट्स हैं आप भी आ सकते हैं. पापा को लेकर आए, भाइयों को लेकर आए, दोस्तों को लेकर आइए. एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर मेंस कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत है. यहाँ पर अगर आपको आइवरी कलर्स पसंद

0: है तो यहाँ पर ग्रेट चॉइस आपको मिलेगा. बहुत ही वैरायटीज हैं यहाँ पर एंड आजकल काफ़ी ट्रेंडी भी है ये जो लाइट स्काई ब्लू स्काई कलर है यहाँ पर अवेलेबल है. और जो आपको पसंद है जोधपुरी स्टाइल ये आजकल बहुत ही ट्रेंडी है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा. कलर्स बहुत सारे हैं, क्वालिटी परफेक्ट है एंड प्राइस सुपर डुपर अफोर्डेबल. सो यस, आप भी आ जाइए. अगर शादी है या आप ही दूल्हे राजा बनने वाले हैं तो आइए यहाँ पर आज हर्षिनी फैशन. वी आर हियर एट सेंट जूलियन दुतमा एंड यस, यहाँ पर पार्किंग फुल है. आप आइए अपनों के साथ, आइए फैमिलीज दोस्तों के साथ भी आप आ सकते हैं. इट्स नियर द राउंड अबाउट, इट्स ऑन द बाईपास, सो जरूर आप आइए. RM2 रेडियो मस्ती टीम यहाँ पर टिल 3 PM.
1: वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती.
2: रेडियो मस्ती
3: हिट म्यूजिक ओनली
2: फील्स अ मस्ती.

0: Radio Musty.
1: In the mix.
2: RM2 Radio Musty team यहाँ पर at Harshini Fashion Saint-Julien Dutmont and आप शायद हमसे गुस्सा होंगे कि ये रिया कब से only bridal चला रही है लेकिन let me tell you that यहाँ पर it's not only about bridal आप अगर किसी की शादी में जाने वाले हो तो आपको भी मिलेगा यहाँ पर semi bridal outfits भी बहुत सारे हैं यहाँ पर एक section है full lehengas और न सिर्फ red बट यहाँ पर भिन्न भिन्न कलर्स के लहंगास आपको मिल जाएंगे येलो मिलेंगे पिंक मिलेंगे लाइट पिंक ब्लश ब्लैक ब्लू बहुत ही खूबसूरत कलर्स में यहाँ पर आपको लहंगेज मिल जाएंगे एंड यस हम सेमी ब्राइडल के बारे में बात कर ही रहे तो लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर चूड़ीदार्स बहुत खूबसूरत चूड़ीदार्स है और सभी को पसंद है एक अच्छा सा आउटफिट मिल जाए जिससे आप आउटशाइन कर सके सभी को तो यहाँ पर आप अगर आएंगे तो आपको एक ऐसा पीस जरूर मिलेगा आजकल क्या होता है कि जो हमारे यूथ है इनको ज्यादा पसंद नहीं है उतने स्टोन हैवी चूड़ीदार साड़ीज पहनने का तो आप अगर कुछ सिंपल चाहते हैं येट एलिगेंट तो यहाँ पर आचर्षणी फैशन आपको मिल जाएगा आई कैन सी दैट यहाँ पर इस मैनिक्विन में बहुत ही खूबसूरत चूड़ीदार है एंड जिसमें मिरर वर्क है एंड ब्यूटिफुल थ्रेड वर्क किया गया है इसका कट भी काफ़ी

0: खूबसूरत है एंड इट हैज प्लाजो पैंट्स, सो यस इट्स अ ब्यूटीफुल कलर एज वेल, इट्स ऑफ वाइट एंड फ्रेडवर्क काफी कलरफुल है इसमें, इट ऑल्सो हैज सम स्टोन्स. वैसे यहाँ पर आई कैन ओनली टेल यू कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, बट अगर आप चाहे तो ज़रूर आप आ सकते हैं एट हर्षिनी फैशन, क्योंकि आप अगर देखोगे, खुद देखोगे तो आपको प्यार हो ही जाएगा. चाहे आपको लाइट पसंद है, हैवी पसंद है, जो भी आपको पसंद है आपको मिलेगा आज यहाँ पर एट हर्षिनी फैशन. एंड द ग्रेट थिंग यहाँ पर है आज दैट बिग प्रमोशन जारी है, प्रमोशन के साथ साथ आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है एंड we have loads of gifts as well. So, aap samay zaya na kare and aaiye yahan par Raj Harshini Fashion at Sergeant Dutma yahan par RM2 Radio Masti team ke saath good music.
1: RM2 Radio Masti feels a Masti.

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: रेडियो मस्ती
2: इन द मिक्स
3: राइट यहाँ पर बस हम देख रहे हैं कि ड्रेसेस है, बहुत ही खूबसूरत चूड़ीदार हमने आपको बता दिए हैं, बहुत ही क्लासी लुक अगर आपको चाहिए तो ज़रूर आप आ सकते हैं एट हर्षनी फैशन, जहाँ पर आपको मिलेगा सब कुछ, वो भी आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। सो यस, सो वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द जू

0: RM2.
1: Radio Musti feels a musti.
2: ये यहाँ पर वी कैन सी दैट दे हैव लिनन ट्राउजर्स, जी हाँ लिनन पैंट्स हैं यहाँ पर, और काफ़ी ट्रेंडी है, काफ़ी स्टाइलिश लुक आपको देता है। आप अगर चाहे तो इसे एक टी शर्ट के साथ, एक लूज शर्ट के साथ पेयर अप कर सकते हैं, एंड क्वालिटी इट्स वेरी गुड। यहाँ पर प्योर लिनन आपको मिलेंगे। कुर्ता शर्ट्स यहाँ पर आपको मिलेगा। सो अगर आप नहीं चाहते हैं ज़्यादा हैवी लुक, आप बस एक कैजुअल येट थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ज़रूर आ सकते हैं। एंड यू कैन सी योरसेल्फ कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बट चॉइसेस भरपूर हैं यहाँ पर। एंड यस, हम लेडीज़ पर वापस जाते हैं, एंड हमने ज्वेलरी सेट्स के बारे में बात कर ली है। वी कैन सी यहाँ पर चूड़ाज भी है। जी हाँ, चूड़ा इसकी एक मान्यता है, क्यों हम पहनते हैं इसको शादी में। एंड यहाँ पर आपको चूड़ाज बहुत ही खूबसूरत रंगों में मिलेंगे। वी कैन सी दैट यहाँ पर रेड है, ब्राइट रेड है, एंड ऑल्सो लाइट कलर्स में भी आपको मिलेंगी। एंड वी ऑल्सो गॉट सम अमेरिकन डायमंड सेट ब्रेसलेट, जिसे आप इसे पेयर कर सकते हो, एंड इट्स ब्यूटिफुल। यहाँ पर आपको 1090 रुपीज़ में मिल जाएगा, एंड यहाँ पर 1590 रुपीज़ में भी आप पूरा सेट मिल रहा है। इट्स स्टनिंग। यहाँ पर आप आइए, देखिए, वी गॉट ब्यूटिफुल सिलेक्शन। एंड यस, यहाँ पर मैं चक्कर मार रही हूँ, एंड हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है। जैसे कि हमने बात कर ली है अबाउट मेंस वेयर, एंड अभी किड्स वेयर के बारे में बात करें तो यस, यहाँ बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ है। वी हैव दिस ब्यूटिफुल कुर्ता सेट, एंड इसे इट्स एक्चुअली शेरवानी, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर ये बच्चों के लिए है, सो आपको डिफरेंट एजेस के लिए, डिफरेंट एजेस बच्चों के लिए आपको मिल जाएगा। अगर कलर्स के बारे में बात करें तो कलर्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो हम बात तो करते रहेंगे, लेकिन ये भी आपसे कहेंगे, डू कम हियर एट हर्षिणी फैशन, वी आर हियर एट सेंट जूलिया दुधमा, जहाँ पर हो रहा है बिग प्रमोशन, बिग डिस्काउंट, एंड फ्री जलेबीज भी आपको मिल रहे हैं। तो आइए यहाँ पर, एंड कुछ

0: मीठा हो जाए, शॉपिंग हो जाए, एंड ये सैटरडे आपका बन ही जाएगा। चाहे रेनी मौसम हो, सनी मौसम हो, कुछ भी हो, शॉपिंग रुकनी नहीं चाहिए। सो वेडिंग सीजन ऑन एट हर्षिनी फैशन सेंट जूलियन दुत्मा।
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musty.
5: Feel the Musty.
6: Wishing you all a very good afternoon. To check your time, it's 2 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था के साथ. आपको नमस्कार आस्था.
7: नमस्कार. 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. बजट 2026-2027 की तैयारी में आज पोटली में अहम बैठकें लगाई जा रही हैं. जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामरी सुबह बिजनेस मर्चेंट्स, उन्होंने मेक्सा और एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स एवं कृषि व व्यापार सदन के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की, जहाँ बजट से जुड़े मुद्दों और सुझावों पर सीधी बातचीत हुई. साथ ही दोपहर बाद बैंकिंग, गैर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधि अपने प्रस्ताव सरकार के सामने रख रहे हैं, ताकि आने वाले बजट में इन सुझावों को शामिल किया जा सके. हज 2026 को लेकर सऊदी अरब का बड़ा फैसला, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वीजा रद्द. ये जानकारी रात में सामने आई. हज के जिम्मेदार मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार मॉरिशस में 5 किशोर इस फैसले से प्रभावित. मंत्री शकील मोहम्मद सऊदी अरब के हज मंत्रालय, डेप्यूटी मिनिस्टर और मॉरिशस में सऊदी राजदूत के संपर्क में, ताकि आधिकारिक स्पष्टीकरण मिले और समाधान तलाशा जा सके. अंतिम समय में लिए गए इस फैसले से प्रभावित परिवारों और आयोजकों में चिंता बनी हुई है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए रवाना होने की तैयारियां अब अंतिम चरण में है. ये फैसला सिर्फ मॉरिशस तक सीमित नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी लागू है. ऑटिज्म को लेकर जागरूकता बढ़ाने की पहल. ब्रांसेको मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ऑटिज्म के लक्षणों की जल्दी पहचान पर जोर देना है. स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने फ्लक में एक विशेष डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा भी की है. मध्य पूर्व संकट के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी. ईरान की ओर से बातचीत का प्रस्ताव सामने आया है, लेकिन इसकी पुष्टि अब तक नहीं. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत हुई है, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने साफ किया कि या तो सख्त सैन्य कार्रवाई या फिर एक मजबूत समझौता, दोनों विकल्प मेज पर हैं. इस बीच हॉर्मुज समुद्री मार्ग लगभग बंद है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचार.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
7: मिशन क्रॉसरोड बोनाकोई में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड की राधिका नूबिन की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थ आज सुबह 3 बजे उन्हीं के मकान बोनाकोई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. मोसेयोलिन खुदबासा कट्रोबोन में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड की नारायणी बिसेसर की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम बिरगुनत, लोग उन्हें मालडू के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उन्हीं के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. रॉयल रोड मेजिन कॉन्डोमास्क में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की लकी प्रसाद च्यबों की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी आज दिन के बल्कि सुपहर के 3 बजे उनकी पत्नी सावित्री च्यबों के मकान कॉन्डोमास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. बुआशेरी रोड मुकामी 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड के रामदीन बच्चू की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें क्रेशन के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कुछ ही देर में सवा दो बजे उठाई जाएगी और उनका अंतिम संस्कार मोताय ब्लॉश की शमशान भूमि में किया जाएगा. क्रिमेशन एट 2:15 PM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
0: RM2 Radio Masti.
5: Radio Musti.
8: Hey famille, pas besoin de faire au shopping moyaz, pas besoin de displace.
9: Côté Alcoury Fashion, nous n'asis tout pour toute la famille.
8: Designer lehenga, lechap, jodhpuri, crop top, sherwani, costume complet, blazer et bien plus encore à bas prix imbattable.
9: Alcoury Fashion, route royale, vis-à-vis Jodet Pamplemousse, téléphone 57 99 37 82.
8: Alcoury Fashion, c'est tradition, élégance et qualité.
10: Chez Loulou, béga beurre salé 250 grammes, 124,50 €. Et recevez un béga cream cheese 250 grammes en cadeau. Un cœur lait en poudre entier d'un kilo, 247,95 €. Blue Magic liquide lessive 3 litres, 206,50 €.
11: Loulou Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentina Mall Phoenix.
12: Tout le monde s'y presse pour aller chez Loulou.
5: RM2 Radio Musti. Welcome, welcome to RM2 Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: Hit music only.
3: Feels a musti.

0: Radio Musty.
1: In the mix.
2: राइट, ऑल दोस जो अभी हमें सुन रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, इट्स योर फाइनल कॉल यहाँ पर आने के लिए. आप ज़रूर आ सकते हैं एट हर्षिनी फैशन एट सेंचुरिया दुतमा. एंड हाल ही में इनका जो सेकंड आउटलेट है लॉन्च हुआ है, एंड इसी संदर्भ में यहाँ पर हो रहा है मैसिव डिस्काउंट प्रमोशंस जारी है. सो यस, आर एम टू रेडियो मस्ती टीम यहाँ पर हमारे तकनीकी सहायक के साथ, और यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है. यहाँ शॉपिंग भरपूर हो रहा है, एंड यहाँ पर जो एटमोसफियर है देखने काबिल है. जी हाँ, यहाँ पर स्माइलिंग फेसेस है, दूल्हे अपने आउटफिट ट्राई कर रहे हैं, पोज मार रहे हैं. यहाँ पर जो हमारी दुल्हनिया है बहुत ही शर्म के साथ, बहुत ही ग्रेसफुल, जी हाँ ग्रेसफुल ब्राइड्स दिखने को आपको मिलेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर आउटफिट्स ट्राई कर रहे हैं एंड शर्मा रही है. बहुत सारी ब्राइड्स हैं जो यहाँ पर शर्मा रही है. सो इट्स जस्ट एक जैसे कि एक आवागू आपको मिल जाता है हाउ योर वेडिंग डे गन बी. एंड यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वेडिंग डे वो सबसे स्पेशल रहे और आउटफिट्स सबसे खूबसूरत रहे, तो आप आ सकते हैं एट हर्षिनी फैशन, जो कि पाया जाता है एट सेंचुरिया दुतमा. इज द सेकंड आउटफिट. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट इनका एक और आउटलेट है, ये पाया जाता है एट लालमाटी ऑपोजिट पुलिस स्टेशन, और वहाँ पर भी द शॉप इज़ ऑपरेशनल. आप वहाँ पर भी जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, बट डिस्काउंट प्रमोशंस ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर लागू हुआ है बिकॉज इट्स द ग्रांड ओपनिंग. लास्ट सैटरडे ग्रांड ओपनिंग हुआ है एंड अभी तक प्रमोशंस जारी है. चाहे वो कुर्ताज हो या आपको साड़ीज चाहिए, रंग बिरंगे साड़ीज चाहिए, आपको कुछ सिंपल चाहिए सिंपल ओकेजन्स के लिए, ये भी आपको मिल जाएगा. एंड यहाँ हम साड़ी से हटकर अगर बोले तो, अगर आपको साड़ीज चाहिए टू वेयर फॉर ऑफिस, जी हाँ एक दो टीचर्स है आई थी एंड ऑफिस के लिए स्कूल के लिए साड़ीज़ ढूंढ रही थी, और उनको मिले बहुत ही खूबसूरत साड़ीज़, और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में. एंड वी कैन सी यहाँ पर कुछ लहंगे हैं, और बहुत ही खूबसूरत लहंगे. इसका जो इनिशियल प्राइस था ये था एट 12,900 रुपीज़, और घटकर आज हो गया है 4,900 रुपीज़. दैट्स मैसिव जो यहाँ पर हो रहा है. आई एम श्योर कि आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे. सो डू कम हियर एंड अपनों के साथ आइए. यू कैन टेक योर फ्रेंड्स जिनकी शादी हो रही है, या आप ही की शादी हो रही है, आप अपने दोस्त को लेकर आ सकते हैं. शायद वो ब्राइड्समेड बनने वाले हैं, शायद वो भी भरपूर चमकना चाहते हैं. सो फॉर श्योर आप उनको लेकर आइए, एंड एक ही शॉप में आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट सब कुछ, चाहे ज्वेलरी हो, क्लच हो, पोटली, एक सिंपल सा आपको चाहिए आउटफिट, सिंपल चूड़ीदार मिलेंगे, क्रॉप टॉप, लहंगा.

0: हैवी लहंगाज, कलर्स बहुत सारे हैं. सो जिस प्रकार के आउटफिट भी आपको चाहिए, ट्रेडिशनल आउटफिट यहाँ पर आपको मिल जाएगा. सो डू कम हियर एट हर्षिनी फैशन सेंट जूलियन दतमा.
1: RM2 Radio Musti.
2: Hit music only.
3: Radio Musti feels a musti.

0: Radio Musty.
1: In the mix.
2: In the mix.
3: और राइट यहाँ पर शॉपिंग जारी है एट हर्षिनी फैशन जो कि पाया जाता है एट सेंट जूलियन दुतमा एंड लेट मी टेल यू वंस अगेन दैट इट्स नियर द राउंड अबाउट बगल में आपको काली माता मंदिर मिल जाएगा एंड इसके नज़दीक ही आपको मिलेगा हर्षिनी फैशन द सेकंड आउटलेट यहाँ पर फर्स्ट आउटलेट इज एट लालमाटी एंड हमने बता दिया है दैट द फर्स्ट वन टू इज ऑपरेशनल बट अगर आपको डिस्काउंट चाहिए आपको प्रमोशनल प्राइसेस चाहिए तो आपको आना पड़ेगा एट सेंट जूलियन दुतमा हर्षिनी फैशन का सेकंड आउटलेट सो यस वी वर टॉकिंग अबाउट यहाँ के जो कपड़े हैं आउटफिट्स हैं डिजाइनर वेयर है आपको मिल रहे हैं बहुत ही अच्छे दामों में एंड यस जो हमारे जेंट्स हैं आपको ये हम बता दें दैट अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं वेडिंग शॉपिंग कर रहे हैं सो अगर आपको शेरवानी पसंद आ गया यहाँ पर तो इसके साथ आप मैचिंग पगड़ी भी खरीद सकते हैं एंड मैचिंग जूते भी आपको मिलेगा तो सोचिए आप ही आपको समय गंवाना नहीं पड़ेगा आप बस एक ही जगह आ सकते हैं एट हर्षिनी फैशन और आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही छत के नीचे सो दैट्स वंडरफुल इन इटसेल्फ आप आइए यहाँ पर एंड यू कैन शॉप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पगड़ी भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आपको मरून कलर पसंद है तो मरून मिल जाएगा रेड है ग्रीन है आइवरी है बहुत ब्यूटीफुल कलर्स हैं यहाँ पर और जो जूते हम इसके बारे में बात कर रहे हैं इट्स नॉट ओनली आपको ट्रेडिशनल वाले मिलेंगे बट यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कलर्स में है एंड काफ़ी एलिगेंट एंड क्लास

सी लुक आपको देगा। आइवरी कलर्स में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मरून कलर में भी है, ब्राउन में भी है, एंड रॉयल ब्लू में भी आपको मिलेगा, पिंक में भी। द पिंक वन इज एक्चुअली अ वेरी प्रिटी वन, सो अगर आप चाहे तो यहाँ पर आ सकते हैं एंड यू कैन ट्राई फॉर योर सेल्फ। आप देखेंगे कि ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है बट इट्स ऑल्सो स्पीक्स कम्फर्ट। जी हाँ, कम्फर्टेबल है, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे है, सिंपल क्लासी एलिगेंट लुक अगर आपको चाहिए तो आपको आना पड़ेगा एट हर्षनी फैशन जो कि है एट सेंट जूलियन दुतमा। और RM2 रेडियो मस्ती टीम यहाँ पर है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दूल्हे राजा पगड़ी ट्राई कर रहे हैं। इट्स ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ही आइए और रिश्तेदार वालों को भी लेकर आइए, फैमिली मेम्बर्स को, मम्मी पापा सभी को लेकर आइए। यहाँ जगह बहुत बड़ी है, पार्किंग लॉट है एंड ऑल्सो आई एम श्योर कि आप ये मौका मिस नहीं करना चाहेंगे। आई नो कि मौसम थोड़ा थोड़ा ख़राब है बट बारिश रुक गई है एंड इट्स ओनली क्लाउडी यहाँ पर। सो यस, आप आइए एंड अगर आप नहीं आते हैं तो आप मिस कर जाएंगे ये मौका, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारे लवली लिसनर्स मिस करें। दिस अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, सो मिला है तो जकड़ लो, पकड़ लो। और यहाँ पर आज अफोर्डेबल प्राइसेस आपको मिल रहा है ऑलमोस्ट सब कुछ अबाउट वेडिंग सीजन। सो RM2 रेडियो मस्ती टीम यहाँ पर एट हर्षनी फैशन सेंट जूलियन दुतमा। RM2 Radio Musty feels a musty.

0: Angel Musty.
1: In the mix.
2: सिंपल सा डे और सिंपल सी कॉफी और सिंपल तरीके से हम आपसे कहेंगे कि आ ही जाइए एट हर्षिनी फैशन एट सेंट जूलियन दुदमा, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है मैसिव प्रमोशन. जी हाँ, बिग बिग डिस्काउंट आपको मिलेगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बहुत सारे लोग हैं. इट्स एक्चुअली क्राउडेड यहाँ पर, बट लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर इनकी जो स्टाफ है बहुत ही हेल्पफुल है. जितने भी लोग आ रहे हैं, आई नो कि थक गए हैं, बट स्टिल आपकी मदद भरपूर कर रहे हैं. तो आप अगर चाहते हैं टू हैव सम गुड असिस्टेंस तो ज़रूर आप आ सकते हैं. दे विल असिस्ट यू इन कलर्स, प्रेफरेंस, जो कुछ भी आपको चाहिए सब आपको दिखाएंगे. एंड यस, यहाँ पर हमने बताया आपको बहुत सारे लोग हैं, तो चलिए इस भीड़ में एक खूबसूरत लेडी से हम फिर से बात करते हैं. हेलो,
3: हाय,
2: आपका नाम?
3: उर्वशी.
2: All right, Urvashi is all smiling. So tell me, how's the shopping going?
3: Great. So many things to look at.
2: Okay. And आपको कुछ मिला? अब for your preference, about your preference, कुछ मिला color?
3: अभी नहीं.
2: अभी तक नहीं. But देखो कितनी सारी आज हैं आपको. You like यहाँ पर the atmosphere, sarees, कपड़े आपको पसंद आ रहे हैं?
3: ओह ये ऑन बागा ड्रॉप आप एक उन्हें की बुक.
2: सो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं.
3: हाँ.
2: ओके, तो उर्वशी, आई विल आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. आपको पता है दैट इट्स द सेकंड आउटलेट यहाँ पर एट हर्षिनी फैशन. आपको पता है ये किस डेट को खुला?
3: लास्ट वीक 25th सैटरडे.
2: Exactly, that's the 25th of April, the grand opening. And आपने सही जवाब दिया है, तो इसी के साथ आपको मिल रहा है a beautiful saree offered to you by Harshini Fashion. It's for you. आप जाइए शादी में, आपको एक साड़ी मिल गई है, तो एक आप खुद ले लीजिए अपनी प्रेफरेंस का. सो यस, कंग्रेचुलेशंस आपको. एंड यस, अगर आप भी चाहते हैं गिफ्ट्स, आपको मिलेगा एट हर्षिनी फैशन सेंट जूलियन दुदमा. यहाँ पर आइए, देखिए, आप फैब्रिक फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. एंड आपको जो भी पसंद हो लेकर जाइए. यहाँ पर ऐसा हर बार नहीं होता है, बट आज ड्यू टू इट्स ग्रैंड ओपनिंग आपको मिल रहा है बिग डिस्काउंट, प्रमोशंस, काफ़ी कुछ है. लहंगा, साड़ीज, कुर्ताज, क्रॉप टॉप्स, बहुत बहुत कुछ है यहाँ पर. स्कर्ट्स, मैक्सी स्कर्ट्स, और जिन लोगों को पसंद है लाइट वेयर यहाँ पर आपको मिल जाएगा. एंड कलर्स, ये तो हम कब से बोल रहे हैं, कलर्स आपको पेस्टल चाहिए, ब्राइट चाहिए, लाइट कलर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आइए एट हर्षिनी फैशन. एंड इसके साथ साथ आपको मिलेगा फ्री में जलेबी. सो यस, विल कैच यू अप इन सम मिनट्स. म्यूजिक टाइम.
0: Radio Musty.
4: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musty.

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Radio Musty.
1: In the mix. आज यू नो कि हम पांचवें महीने में एंट्री ले चुके हैं. इट्स द मंथ ऑफ मे. और जब हम मई महीने के बारे में बात करते हैं तो एक ही बात दिमाग में छा जाती है, एंड दैट्स मदर्स डे. जी हाँ, हम मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे मई महीने में. और आई एम श्योर कि आपको मम्मी को या सासू माँ को कुछ गिफ्ट करना है, तो अगर आप चाहें तो ज़रूर यहाँ पर आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगी. एंड यहाँ पर लेट मी टेल यू दैट अगर आप ट्विनिंग करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है एट हर्षिनी फैशन. जी हाँ, आपको मिलेंगे एक साड़ी के दो पीसेस आपको मिल जाएंगे, एंड दैट टू सुपर अफोर्डेबल प्राइसेस में. सो आप भी पहनिए, मम्मी को भी पहनाइए, सासू माँ को भी पहनाइए, एंड यू विल क्रिएट अ गुड लुक. पूरा परिवार बहुत ही अच्छे से सजेंगे धजेंगे. एंड लेट मी टेल यू दैट एट हर्षिनी फैशन, जो कि पाया जाता है एट सेंचुरी दुतमा, आपको मिल रहा है सुपर अफोर्डेबल प्राइसेस. आज यहाँ पर लहंगा है, साड़ीज है, कुर्तीज़ है, नॉट ओनली चूड़ीदार लहंगाज बट ऑल्सो बहुत ही स्टाइलिश कुर्तीज़ आपको मिलेंगी. जैसे कि आजकल जब हम गीत

0: बच्चों के लिए मिलेगा, बड़ों के लिए मिलेगा, और यहाँ पर भिन्न भिन्न चॉइसेस है, भरपूर बहुत सारे चॉइसेस है। एंड यहाँ पर हम कुर्ता के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इट्स अ ब्यूटीफुल पर्पल कलर कुर्ता यहाँ पर मैनिक्विन में लगा हुआ है, एंड इट हैज़ पीकॉक, बहुत ही रंग बिरंगे कलर्स का है, इट्स सुपर क्यूट। यहाँ पर आप अगर दूल्हे राजा है तो आई एम श्योर कि आप अगर ये पहनोगे तो ज़रूर चमकोगे। सो डू कम हियर एट हर्षिनी फैशन एट सेंट जूलियन डुटमॉ, इट्स द सेकंड आउटलेट एंड ग्रैंड ओपनिंग हो चुका है, बट प्रमोशन अभी तक जारी है। सो द RM2 रेडियो मसी टीम यहाँ पर।
1: You're listening to RM2 Radio Masti.

0: राइट आर एम टू रेडियो मस्ती टीम यहाँ पर एट हर्षिनी फैशन एंड यस लेट मी टेल यू दैट वी आर एट द सेकंड आउटलेट एंड यहाँ पर जैसे कि हमने कहा इट्स मैसिव डिस्काउंट चल रहा है और देख रहे हैं कि जाने का समय भी हो चला है बट जाने से पहले बहुत कुछ है करने को यहाँ पर. चलिए एक फटाफट एक गेम खेल लेती है. हेलो
1: हेलो
0: ओके आपका नाम क्या है?
1: सतीश.
0: सतीश जी आप यहाँ आते रहते हैं?
1: नहीं पहली बार.
0: पहली बार. सो टेल मी आपको प्राइसेस कैसे लगे और क्वालिटी?
1: क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है.
0: एंड आपको पता है कि आज एक छोटा सा क्वेश्चन अबाउट हर्षिनी फैशन ही. आपको पता है कि आज शॉप कितने बजे बंद होगा?
1: 5:30.
0: पहले तो आप 5 बोलने वाले थे लेकिन 5:30 बोल दिया इसलिए आप जीत गए. तो चलिए आपको मिल रहा है ये ब्यूटीफुल कुर्ता एंड थैंक यू आने के लिए एंड शॉपिंग करने के लिए. एंजॉय योर शॉपिंग एंड चलिए यहाँ पर हम चलते चलते एक ब्यूटीफुल लेडी से मिलती है एंड चलिए लेडी का नाम
2: शालिनी.
0: शालिनी चलिए आप हमें बताइए कि आप यहाँ पर पहली बार आई है?
2: नो पर प्रीमियर फॉर.
0: ओके सो आप आती रहती है. सो टेल मी अबाउट द क्वालिटी प्राइसेस एंड यहाँ पर व्हाट स्पेशल अबाउट द सेकंड आउटलेट?
2: À chaque fois que je viens à Maurice, tout le temps, ils nous apprennent un linge traditionnel pour aller. Mais mon premier choix, c'est tout le temps Hershey Fashion. Et maintenant, aujourd'hui, nous venons là, à deuxième outlet. Et il y a extra beaucoup de variétés, nouvelles collections, super, super jolies et à bon prix, bien abordable, bien. Où venons là, ou pas qu'à sortir là, la mévine.
0: एग्जैक्टली जैसे कि शालिनी ने कहा दैट आप अगर यहाँ पर आओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे. एंड टॉकिंग अबाउट देयर क्वालिटी सो यहाँ पर आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है क्योंकि दे हैव द बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. एंड कम्फर्ट के बारे में बात करें तो इट्स सुपर कम्फर्टेबल. यहाँ पर आपको मिलेंगे फुटवेयर जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल है. यहाँ पर जेंट्स के लिए लेडीज़ के लिए लहंगा सब कुछ है. तो चलिए अभी हम आपसे लेंगे. थैंक यू सो मच टू एवरीवन जो हमें सुनकर यहाँ आए एंड थैंक यू टू हर्षिनी फैशन यहाँ पर हमें पाने के लिए. एंड यस यहाँ पर जो प्रोमोज हैं डिस्काउंट्स हैं यहाँ जारी रहेगा टिल 5:30 लेकिन आप कल भी आ सकते हैं. कल तक रहेगा ये सुपर अमेजिंग डिस्काउंट प्रमोशंस एंड लेट मी टेल यू दैट द शॉप क्लोजेज एट 5:30 टुडे. सो यस हम विदा लेते हैं. बाय बाय. थैंक यू एंड have a wonderful shopping at Harshini Fashion Saint-Julien Dutma. Bye bye and thank you Hansini too at studio jinhone full on saath diya and hamare jo technical sahayak hai Dominic. Thank you so much. Milte hai jaldi. Bye bye.

0: on to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: Wish you all a very good afternoon. Check your time. It's the first thing at 3 o'clock. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था के साथ. आपको नमस्कार आस्था.
6: नमस्कार. 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. बजट 2026-2027 की तैयारी में आज पोटली में अहम बैठकें लगाई गई. जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरी सुबह बिजनेस मर्चेंट्स मेक्सा एसोसिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और कृषि व व्यापार सदन के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की, जहां बजट से जुड़े मुद्दों और सुझावों पर सीधी बातचीत हुई. साथ ही दोपहर बाद बैंकिंग, गैर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के प्रतिनिधि अपने प्रस्ताव सरकार के सामने उन्होंने रखा, ताकि आने वाले बजट में इन सुझावों को शामिल किया जा सके. हज 2026 को लेकर सऊदी अरब का बड़ा फैसला सामने आया है. 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वीजा रद्द. ये जानकारी रात में सामने आई. हज के जिम्मेदार शकील मोहम्मद के अनुसार मॉरिशस में 5 किशोर इस फैसले से प्रभावित हैं. मंत्री शकील मोहम्मद सऊदी अरब के हज मंत्रालय डिप्टी मिनिस्टर और मॉरिशस में सऊदी राजदूत के संपर्क में हैं, ताकि आधिकारिक स्पष्टीकरण मिले और समाधान तलाशा जा सके. अंतिम समय में लिए गए इस फैसले से प्रभावित परिवारों और आयोजकों में चिंता बनी हुई है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए रवाना होने की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं. ये फैसला सिर्फ मॉरिशस तक सीमित नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी लागू है. ऑटिज्म को लेकर जागरूकता बढ़ाने की पहल. बॉन्सेक्वा मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में इस हफ्ते विशेष कार्यक्रम विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ऑटिज्म के लक्षणों की जल्दी पहचान

0: Plug and play.
1: RM2 Radio Musti.
2: वेलकम अगेन ऑन रेडियो मस्ती. यहाँ पर आज मस्ती ही मस्ती है सुबह से, एंड वी हैड सो मच ऑफ फन लिसनिंग टू रिया. रेडियो शॉपिंग बहुत ही खूब के साथ हुआ है और कई लोग बढ़ रही हैं इस समय एट सेंट जूलियन डुट मॉ फॉर देयर शॉपिंग्स. और जैसे उन्होंने कहा है कि शादी का जो सीज़न है वो जोरों शोरों से शुरू तो हो ही गया है, और कई जो हमारे परिवार है जो यहाँ पर शादी होने वाली है वो धूमधाम से बस लग गए हैं अपने शॉपिंग्स करने के लिए. सो दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ अ चांस नॉट टू बी मिस्ड. तो यहाँ पर ये जो म्यूज़िकल संगम है उनको बस जारी हम रखेंगे, और वैसे टाइम टाइम पर हम बढ़ रही हैं वो ट्विस्ट शॉन डिमर्स जहाँ पे लग रहा है रेसेस.

0: और लेट्स से इन 15 मिनट्स यहाँ पे होने वाला है द नेक्स्ट रेस, दैट विल बी रेस 6. यहाँ पे हंसनी की मुलाकात आप लोगों से इन आज का प्लग एंड प्ले. आप सभी का वेलकम है जहाँ पर भी साथ जारी हो गया है. इट्स टी टाइम और कई लोग अपने चाय को एंजॉय तो कर ही रहे हैं. सो एंजॉय दिस ब्यूटिफुल म्यूजिकल टाइम जो हम आपके साथ बताने वाले हैं. कुछ कहना में भी आप चाहेंगे सेलिब्रेटिंग द सेकंड डे ऑफ मे. कल से मे महीना शुरू हो गया है, दैट्स अ मार्वेलस मे. और हमने ऑसम अप्रैल को गुड बाय तो कह लिया है और अभी एक नया महीना शुरू, कुछ न्यू चैलेंजेस, कुछ न्यू कमिटमेंट्स के साथ शुरू हो गए हैं. मे बी सम मोर गुड लक आने वाले हैं, कुछ गुड सरप्राइजेस, सम गुड न्यूज़, यू नेवर नो. हम बस अच्छे चीज़ों के बारे में फोकस करेंगे, राइट. और अगर आपने सोच लिया है कि वजन को घटाना है, मे बी अभी आपको मोटिवेशन आया है, कोई बात नहीं, इट्स नेवर द एंड. यहाँ पे शुरुआत के साथ आप लगे रहो, वी आर हियर टू बूस्ट अप योर एनर्जी लेवल एंड योर मूड एज वेल. कभी ऐसा होता है कि कुछ होता है ऐसे कि मूड ख़राब हो जाता है एंड वी से क्या किच ऐसा दिन आया है, हमारे लिए ही नहीं बना है आज का दिन. इट्स लाइक नो, क्योंकि आ गया है ना रेडियो मस्ती आप लोगों का साथ निभाने के लिए एंड दिस इज आवर आज का प्लग एंड प्ले.
1: Plug and play.
2: RM2.
3: Radio Musty.
1: Plug and play. Chicka chicka chicka.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Plug and play.
1: RM2
2: Radio Musty.
0: Plug and play.
3: That's correct. This is our plug and play. यहाँ पे bringing you the best of songs to entertain you. Saturday वाला ये दिन जो आया है, and to enjoy this musical mood, why not एक remake song हो जाए, जहाँ पर दिल की कुछ बातें होने वाली हैं, अलग तरीके से music पेश हम करने वाले हैं. Really hope you will enjoy. This is our plug and play up till 4 p.m. यहाँ पे हंसनी का साथ बिल्कुल आप लोगों के लिए तय है up till 4 p.m. Stay well connected. And I wish you all a great afternoon. जो काम कर रहे हैं आप सभी को कुराश. आपको तो पता है जब भी रेडियो मस्ती यहाँ पर आता है, we bring you only the best and we make sure कि जहाँ पर भी साथ जारी होता है आप बस म्यूजिकल हो जाते हो. Enjoy, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो इस समय, आपको केयरफुल तो रहना है. आगे बढ़ेंगे, शायद यू हैव टू ओवरकम एन ऑब्स्टेकल, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर स्पीड लिमिट. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, वी शुड अप्लाई द ब्रेक. तेज रफ्तार से चलेंगे, ठोकर हम कर सकते हैं ना. सो बी वेरी कॉशियस, लेकिन वी हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड. ये तो है म्यूजिकल शो अप टिल 4 पी एम. स्टे वेल

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: एंड बिकेले ये लेटेस्ट साथ इस रोमांटिक टच ऑन रेडियो मस्ती. और ये जो गाना है हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो अभी अपने प्यार को याद कर रही हैं. ऐसा है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो 24 आवर्स उनकी ख्याल तो बस रहती है ना. लेकिन आज एक ऐसा मौका टू डेडिकेट अ सॉन्ग उनके लिए एंड टू मेक हर या फिर टू मेक हिम फील अ बिट मोर स्पेशल. ये तो है प्लग एंड प्ले शो जो चलेगा टिल 4 PM. यहाँ पर हंसनी का साथ है आज और हमारे बाद आएगी हमारी दिव्या लेकर आज का बॉलीवुड टकटकाटक. राइट, सो कनेक्टिंग यू विद द बेस्ट ऑफ फ्लेवर्स, कनेक्टिंग यू विद द बेस्ट ऑफ रोमांटिक गाने यहाँ पर बहुत गहरा हुआ आप लोगों के लिए. जस्ट स्टे वेल कनेक्टेड ऑन रेडियो मस्ती एंड एंजॉय दिस लविंग वन जो आपके लिए ही हम चला रहे हैं.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: All right, my lovely people, time for me to wave goodbye. Thank you very much. यहाँ पर आपका साथ जो रहा और गाने जो हम लेकर आए, really hope you appreciated. और अभी आ गई है हमारी प्यारी से दिव्या. Hello, Divi.
4: Hello, Hansu. How are you?
3: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हो?
4: बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन मौसम बाहर थोड़ा सा बेमान है.
3: यहाँ पर मौसम रिलेटेड आप लेकर आएंगी ना ऐसे रोमांटिक सॉन्ग्स, ये तो हमें पता है. ओके, सो दिव्या इज ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट शो. दैट विल बी आज का बॉलीवुड टकटकाटक, राइट. यहाँ पर इशारा है दिव्या, इससे पहले हम बढ़ेंगे शो द मॉस्पोर्ट रेस, जहाँ पर ठीक 4 बजे इज शेड्यूल्ड द नेक्स्ट रेस. दैट विल बी रेस 7. स्टे वेल कनेक्टेड ऑन रेडियो मस्ती.

0: 4:03 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से। नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। बजट 2026-2027 की तैयारी के तहत वित्त मंत्रालय के जूनियर मिनिस्टर थानेश्वर दामरी ने आज शनिवार सुबह बिजनेस मर्चेंट्स, मेक्सा और कृषि एवं उद्योग सदन के प्रतिनिधियों से पोर्टवी में मुलाकात की। बाद में बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर और वित्तीय सेक्टर के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव सरकार को पेश किया। सऊदी अधिकारियों ने फैसला लिया है कि हज 2026 के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वीज़ा रद्द किए जाएंगे। मर्शस में हज के जिम्मेदार मंत्री शाकिल मोहम्मद के अनुसार ये फैसला रात के समय लिया गया। वे सऊदी अरब के हज मंत्रालय, वहां के डिप्टी मिनिस्टर और मर्शस में सऊदी अरब के राजदूत के साथ संपर्क में है ताकि आधिकारिक जानकारी मिल सके और सभी संभावित समाधान देखे जा सके। ये अचानक हुआ बदलाव प्रभावित परिवारों और आयोजकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए रवाना होने की प्रक्रिया आने वाले दिनों में तय थी। देश के बदलाव को मजबूती देने के लिए शिक्षा को आधार बनाने की दिशा में नेशनल हायर एजुकेशन स्ट्रेटेजी 2025-2035 गुरुवार को बलाक्लावा के इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में लॉन्च की गई। ये 5 मुख्य स्तंभों, शिक्षा की किस्म, शोध और नवाचार, जीवन भर सीखने के अवसर, वैज्ञानिक सहयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डिजिटल बदलाव पर आधारित है। विदेश में माली में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अप्रैल के अंत से सुरक्षा स्थिति गंभीर हो गई है। जिहादी समूहों और विद्रोहियों के समन्वित हमलों ने राजधानी बमाको समेत कई अहम शहरों को निशाना बनाया है। रक्षा मंत्री की मौत हो चुकी है और उत्तर के कुछ इलाके सशस्त्र समूहों के कब्जे में चले गए हैं। हालात के चलते लोगों को का पलायन बढ़ रहा है और बमाको के आसपास जरूरी सामान की कमी भी देखी जा रही है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Music, Dr. Gutter.
3: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: ओएमजी रेडियो मस्ती
2: म्यूजिक तो यहाँ पर नो डाउट टकटकाटक ही आपको मिलने वाले हैं और एक से बढ़कर एक गाने की सिलेक्शन बहुत ही प्यार से चूज करके लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। शाम के 4:11 हो चुके हैं, इवनिंग टाइम और साथ में टी टाइम भी है। अभी टी के लिए, चाय के लिए कुछ कुछ लोगों के लिए कोई वक्त नहीं होता है क्योंकि चाय लवर्स तो हर मिनट हर सेकेंड चाय के बारे में ही सोचते रहते हैं, लेकिन आज आपको एक बहाना मिल गया है। आई गेस कि वो बहाना बारिश है। अगर आपके यहाँ भी ये जोरदार बारिश हो रही है, फिर हल्की हल्की बारिश हो रही है, और मे बी इट्स क्लाउडी एट योर प्लेस, डू लेट अस नो कि कौन से एरिया में कहां पर बारिश हो रही है और कहां पर इट्स क्लाउडी, और बारिश होने के साथ साथ इट्स विंडी एज वेल। तो अगर कहीं आ रही है, जा रही है, प्लीज डू टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशन। क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत सारे लोग बहुत आसानी से फ्लू भी पकड़ रहे हैं, तो अपनी तरफ से जितना हो सके ना आप नल का पानी बॉयल करके ही पीना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, दिव्या का साथ है अभी से लेकर शाम के 6 तक इन योर म्यूजिक टकटकाटक, एंड ऑफ कोर्स आपके मैसेजेस का इंतजार व्हाट्सएप पर, एंड नंबर है 5499 1294।
0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: शाम के 4:25 हो चुके हैं. वेलकमिंग यू वंस अगेन. अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है टिल 6 PM. चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे. ऑफ कोर्स आपका प्यार है, आपका साथ है और आप लोग शो में चार चांद हमेशा ऐड करने के लिए आ ही जाते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से कुछ बात करते हुए और कुछ आपके मैसेजेस पढ़ के. तो चलिए बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की ओर. हेलो दिव्या जी, कैन यू प्लीज प्ले अ बर्थडे सॉन्ग फॉर माई सन आरव, जो आज 16 साल का हो गया है, और उनको बहुत सारा प्यार फ्रॉम मामा रीना, सभी बिसेसर फैमिली ऑफ मोसल मोसो हवन का होलिन बिलेश. एंड आप बिजी हैं किचन में प्रिपेयरिंग डिनर फॉर द बर्थडे पार्टी टुनाइट, बट आई होप कि आप इतना ज़्यादा थकेंगे नहीं कि आपको ही टाइम ना मिले अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. कभी कभी हम स्पेशल इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं ना, और इसके पीछे हम किचन में पूरा दिन पूरी रात रहते हैं, और ऐसे में हम ये ओकेजन को सीज नहीं कर पाते हैं. एंड आई जस्ट होप कि आप बस एंजॉय करें. तो चलिए ये अगला गाना खास तौर से आपके बेटे के नाम ज़रूर डेडिकेट करेंगे. एंड यहाँ पर आप कहते हैं कि रेडियो मस्ती नमस्ते, आप हेलावाचुअस से प्रिया और आपके पति हैं, और उनके लिए ज़रूर एक गाना हम चलाएंगे. चाय पी रही है, क्या बात है, गर्मा गर्म चाय के साथ रेडियो मस्ती के गाने, इसको कहते हैं परफेक्ट कॉम्बिनेशन. बबीता जब है पो कुलविल से नेक्स्ट गाना गुज आउट टू योर स्वीट हार्ट अरुण. और साथ में यहाँ पर किसने कहा है, नमस्ते दिव्या, विशाल लिसनिंग फ्रॉम पिची बिलेया, क्लाउडी यस एंड इट इंटरमीडियंटली रेनिंग, लिसनिंग वाइल डूइंग जिम, वो कहा टू रेडियो मस्ती टीम. ओहो, अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि बारिश होती है तो उनको लगता है कि भाई कंबल ओढ़ के सो जाने का टाइम है, और ऐसे में आपको कुछ करने का मन ही नहीं होता है. ऐसा होता है ना कि जब आप बारिश को देखते हैं आपके मन में एक फीलिंग आता है कि नहीं अभी तो मुझे सोना है, और ये क्लाइमेट ऐसा ही कुछ हो जाता है. लेकिन व्हाइल एवरीवन इज थिंकिंग द सेम थिंग, वहाँ पर विशाल हमें सुन रहे हैं वाइल डूइंग जिम. ओ माई गॉड, इसीलिए कहते हैं ना कि ज़िंदगी में या आपको एक्सक्यूज़ मिलते हैं या फिर आपको राह मिलते हैं, या फिर आप एक्सक्यूज़ बनाते हैं या फिर आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं. सो विशाल कीप गोइंग ऑन, एंड आई जस्ट होप कि आप बाकी हमारे लिसनर्स को भी इंस्पायर्ड रखेंगे. एंड वी हैव संगर ऑफ फ्रांस कनेक्टेड विद रेडियो मस्ती. नमस्ते दिव्या जी, प्लीज़ अगला गाना संगीता और उनके परिवार के लिए, मोताई ब्लॉन्च से हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू सो मच. गुड आफ्टरनून दीदी दिव्या, ब्यूटीफुल शो ऑन RM2 रेडियो मस्ती, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर यले शाम ऑफ सुनाम और आपके पूरे फैमिली के लिए. एंड चलिए यहाँ पर कुछ और मैसेजेस तो ज़रूर आ रही हैं और उनकी ओर हम बढ़ेंगे कुछ ही देर में. बट प्लीज़ डू रिमेंबर कि आप जब अपने मैसेजेस भेजें तो व्हाट्सएप के ज़रिए ही हमें याद करें, क्योंकि नॉर्मल मैसेजेस में जब आप हमें मैसेज भेजते हैं तो कभी कभी आपके मैसेजेस इनकम्प्लीट आ जाते हैं.
1: Music, Tuck Tuck Tuck. RM2, Radio Mustique.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: चक्कर काटे।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: बिल्कुल, ये तो हमेशा हम कहते हैं कि प्यार किया है तो आपको निभाना ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की ओर। एंड आप कहते हैं, नमस्ते जी, आई एम श्वेता हुकुम फ्रॉम बुनाकर। प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर हबी दूदू रोशन एंड फॉर हिज बूबू रानी एंड फॉर मॉम सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा एंड डैड लालदेव। और यहाँ पर आप कहती हैं, हाय दिव्या, मिंता तो राचन हियर, सिलेक्शन सो माइंड ब्लोइंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर योर बहन रजनी रघुनोत, हु इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे। आपकी बहन को बहुत बहुत सारा प्यार हमारी टीम की तरफ से। विशिंग हर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस।

0: फ्रॉम होल तुराचन भुगन एंड बुजावन फैमिली। एंड साथ में आप कहते हैं कि आज कियान जीतन लावोचे से हैं और उनका बर्थडे है आज, 2 साल का हो गया है। हे कियांश, आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम रेडियो मस्ती टीम, ऑल्सो फ्रॉम मामा करुणा, पापा है रोशन, विद्यानी कुशल विषम की तरफ से आपको बहुत बहुत सारा प्यार। एंड साथ में यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम, कहती हैं कि प्लीज़ ऐड माई नेम एनी सॉन्ग फॉर यू आशना, दैट्स रियली स्वीट फॉर यू मैसेज एंड योर कॉम्प्लीमेंट। एंड यहाँ पर किसने कहा है कि हेलो, आज कविराज सिंह नवसा का बर्थडे है, बेस्ट विशेज फ्रॉम पापा देवराज, बेटी मिगाना, माधवी, माही, करुणा, रोशन, कुशल, कियांश, विद्यानी की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर। एंड नेक्स्ट गाने के बाद विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द इंग्लिश फ्लैश न्यूज। एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात इन द सेकेंड आवर ऑफ म्यूजिक टक टकाटक।
1: Music, Tak Tak Tak.
2: RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: तुम क्या मिले, दिल की धड़कन बढ़ गई। तुम क्या मिले, प्यार जिंदगी से थोड़ा और हो गया। और मुझे पता है ये तो थोड़ा बहुत गाने का लाइन आ गया है, लेकिन गाने के जरिए ही फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा म्यूजिक के साथ जुड़े रहे, क्योंकि म्यूजिक विल गिव यू विंग्स टू फ्लाई। और आपको थोड़ा बहुत हिम्मत मिलेगी अगर आप किसी से प्यार करते हैं, हिचकिचा रहे हैं। इन गीतों को सुनने के बाद आपको इतना प्यार हो जाएगा, इतना प्यार हो जाएगा कि फाइनली यूल be ending up expressing your love to the one जो आप छुपके छुपके प्यार करते हैं शायद। well, शाम के 5:08 हो चुके हैं, मौसम थोड़ा सा बेईमान है। आप यहाँ मौसम कैसा है, do let us know on 5499-1294 and we'll be carrying on with some good music till 6 PM, जहाँ पर दिव्या का साथ है on the waves of Radio Masti। Once again welcoming your messages on 5499-1294 WhatsApp के जरिए। and साथ में अगर आप drive कर रहे हैं, सो प्लीज बी वेरी कॉशियस ऑन द रोड। स्पेशली अगर कहीं पर जोरदार बारिश हो रही है, तो ऐसे में आप धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाइएगा और हेडलाइट्स को ऑन रखें। मेंटेन योर डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, क्योंकि जब बारिश होती है तो ऐसे में रोड थोड़ा और स्लिपरी हो जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस और खुद के बारे में सोचें और दूसरों के बारे में भी। चलिए दिव्या का साथ है और कुछ और गीतों के साथ एंजॉय करते हैं साथ मिलके।
0: Music, Dr. Gutter.
1: RM2, Radio Mustique.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: अभी ऐसे रोमांटिक मौसम में ये गाना हम ना चलाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप कुछ ना कहें, लेकिन हमने बहुत ही प्यार से सुन ही लिया है कि आपके मन के जज्बात क्या हैं।

कभी कभी दिल में इतने सारे उमंगे तरंगे खिलकर बाहर आते हैं कि इनको समेटने की कोशिश हम करते हैं लेकिन फिर भी नहीं होता है। और कभी कभी कुछ इतना कुछ कह जाने का मन होता है कि हमसे कुछ बोला नहीं जाता है। अब ये मिक्स्ड इमोशन किससे कहें, कौन सुने हमारे मन की बातें, हम हैं ना आपके मन की बातों को सुनने के लिए। जज्बातों को ऐसे ही आपस में शेयर करते रहिए। On 5499-1294, we have this beautiful 90s ka gana dedicated to each and everyone jo is waqt ghar par shayad aaram farma rahe honge. Kaam par hai to ye gana bhi aap logon ke naam, woh ko aaj aapko aise gaane sunte sunate aapke kaam bhi khatam ho jayenge.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments. Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.
2: ऑलराइट फ्रेंड्स, 5:40 हो चुके हैं और चलिए होलकोरी फैशन की तरफ से एक टिप्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. एंड ऑफकोर्स आज हम बात करेंगे वेडिंग सीजन के बारे में. एंड वेडिंग सीजन तो सबको पसंद होता है, लेकिन व्हाट टू वेयर एंड हाउ टू लुक इज द मेन क्वेश्चन. और आप चाहते हैं कि जब भी आप कोई इवेंट में जाए या फिर शादी में जाए, यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ पर लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें, आपके ब्यूटी को कॉम्प्लीमेंट करें. बट नॉट टू फॉरगेट, हमेशा हम कहते हैं ना कि सिंप्लिसिटी इज ब्यूटी. सब कुछ तभी अच्छा लगता है जब आप इसको बहुत ही सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं. सो डोंट फॉरगेट, आप जितना पीसफुल कलर्स डालेंगे, लाइट मेकअप करेंगे, उतना ही क्लासी और खूबसूरत आप दिखेंगे. और आजकल लेट मी टेल यू कि चाहे आप एक नाइट पार्टी में जा रहे होंगे या फिर कोई बर्थडे पार्टी या फिर कोई शादी में, बी इट अ वेस्टर्न यूरोपियन आउटफिट और इंडियन आउटफिट, सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंड कर रहा है दैट इज़ अ मेसी बन. और फिर आप इस बन को आप फिक्स कर सकते हैं राइट में या लेफ्ट में. तो मैसी बन विद कर्ल्स इज़ द न्यू लुक इन द टाउन. और साथ में अगर आप मैसी बन को चूज़ नहीं करना चाहते हैं, सो ऑफकोर्स यू कैन ऑप्ट फॉर अ वेवी हेयर. वेवी हेयर भी आजकल बहुत ही ट्रेंड कर रहा है और आजकल सब लोग बॉलीवुड एक्ट्रेसेस इंस्पायर्ड होकर दे आर हैविंग जो वेवी हेयर हैं. कोई भी आउटफिट में इट सूट्स अ लॉट और ये आपके आउटफिट और आपके लुक को और भी एनहांस करता है. इट लुक्स मोर क्लासी. सो डेफिनेटली कभी भी आप शादियों में जा रहे हैं या फिर कोई भी इवेंट में, ओकेजन में, पार्टी में, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और आई एम वेरी श्योर कि यू विल बी रॉकिंग दिस लुक एज वेल.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
3: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: वेल फ्रेंड्स, 5:55 होने को हैं और चलिए इसी गाने के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू लव यू। संजय नेक्स्ट आ रही हैं लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त शो कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। आप स्पोर्ट्स दुनिया की खबरों को हासिल कर पाएंगे। फिलहाल दिव्या को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।

0: पहले मुख्य समाचार। सऊदी अरब ने हज 2026 के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वीजा रद्द किए। मॉरिशस में 5 किशोर प्रभावित, मंत्री शकील मोहम्मद संपर्क में। पब्लिक प्राइवेट सहयोग और निवेश पर जोर, जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामगी ने पोल्ट्री में निजी क्षेत्र से बजट पर चर्चा की। शिवाजी जयंती पर इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर शिवाजी दिवस, महाराष्ट्र दिवस भी मनाया गया, प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि। विदेश में माली में हालात बिगड़े, जिहादी हमलों के बीच कई शहरों में हिंसा, रक्षा मंत्री की मौत से संकट गहराया। अरब समाचार विस्तार से। सऊदी अधिकारियों ने फैसला लिया है कि हज 2026 के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वीजा रद्द किए जाएंगे। मॉरिशस में हज के जिम्मेदार मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार ये फैसला रात के समय लिया गया। वे सऊदी अरब के हज मंत्रालय, वहां के डिप्टी मिनिस्टर और मॉरिशस में सऊदी अरब के राजदूत के साथ संपर्क में है ताकि आधिकारिक जानकारी मिल सके और सभी संभावित समाधान देखे जा सके। यह अचानक हुआ बदलाव प्रभावित परिवारों और आयोजकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब के लिए रवाना होने की प्रक्रिया आने वाले दिनों में तय थी। ये नियम केवल मॉरिशस पर ही नहीं बल्कि अन्य देशों पर भी लागू होता है। चलिए इस विषय पर अरशाद उजिया और मंत्री शकील मोहम्मद को सुनते हैं।
1: Au fait, toute la participation a commencé depuis l'année dernière. Nos applications sont acceptées au niveau du ICC, que nous, la famille, donc pour le Hajj 2026. Un cours qui nous fait prendre au niveau groupe, psychologiquement, mentalement, bien préparé. Ce matin, nous avons une news qui l'autorité saoudienne nous met en place que mon enfant, plus que 15 ans. Si on fait mon garçon, il a laissé un grand matin, une heure de cela. Donc, mon téléphone, je vais prendre que ça 5. Enfant qui n'est pas supposé aller là, je peux aller finalement, donc je visa peut reissue par l'autorité saoudienne. Donc là, c'est un sentiment de contentement aussi qui m'a gagné. Mais là, on va attendre une confirmation officielle.
2: Pas fini dans l'advance notice. Et c'est le coup de tout le monde, une sentiment attristé. Et là, tu peux même contempler pour cancel ce voyage de Hajj. Alors, moi, fini. Dès le matin, je prends contact avec le ministre du Hajj de l'Arabie Saoudite, le docteur Taufik Al-Rabia, pour faire une cause avec le docteur Machad, qui est le député ministre du Hajj, l'autre député ministre du Hajj, docteur Hassan, pour faire une cause avec son Excellence, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, posté à l'île Maurice. Et ensemble, c'est avec Saman Dimounla, je fais une écoute, mon plaidoirie, je fais une écoute, un point qui m'a fait mettre de l'avant. Et je suis très heureux pour dire que je fais gagner l'appel d'aller là vers les 2h moins 5 de l'après-midi pour le docteur Hassan fin dire moi que tous ces 25 enfants-là, je peux bien réouvrir le système électronique, le portal, pour qu'ils soient capables de faire la demande de Hajj, de visa à nouveau. More cautiously optimistic. More dire cautiously optimistic. Parce que c'est pas quelque chose qui nous peut contrôler. C'est avec le système saoudien. D'après les autorités saoudiennes, les plus rapides, parce qu'ils déjà ont fini gagner votre visa. C'est ce question of reissuing.
0: Public or प्राइवेट सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में काम हो रहा है ताकि कई क्षेत्रों में निवेश को आसान बनाया जा सके। जूनियर मिनिस्टर धनेश्वर दामगी ने आने वाले बजट की तैयारी के तहत आज पोर्टवी में निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान कई सुझाव दिए गए, खासकर रोजगार, व्यवसायों को सहायता और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर। कुछ लोगों का मानना है कि वैश्विक संकट के इस दौर का लाभ उठाकर मॉरिशस की क्षमताओं को और मजबूत किया जाना चाहिए।
3: दो घंटों तक निजी सेक्टर के कोई 12 प्रतिनिधियों ने भावी बजट की तैयारी के सिलसिले में अपने प्रस्ताव रखे। ये सिफारिशें ज्यादा निवेश और पब्लिक तथा निजी सेक्टर के बीच मजबूत साझेदारी से संबंधित रहीं।
4: On a parlé beaucoup du digital public infrastructure, l'investissement sur la connectivité qui est très important, et aussi au niveau de tout ce qui est la formation, le reskilling, tout ce qu'il faut comme facilité pour attirer des talents et aussi pour former et reformer d'autres.

0: Et troisièmement, on a aussi parlé pour tout ce qui est des plateformes pour pousser, exporter nos services. Et en tout ça, en prenant en considération tout ce qui se passe avec l'élément de l'AI, l'Artificial Intelligence.
1: Dans ce contexte, les priorités se trouvent vraiment autour des opportunités portuaires, aéroportuaires, food security, business development au niveau de l'intelligence artificielle. Et tout ça fait que la croissance, si elle doit être aujourd'hui revisitée, elle doit se faire à travers ce partenariat renforcé entre le secteur privé et le secteur public. Et en tout cas, au niveau de Business Mauritius, nous sommes fully supportive de cette philosophie.
2: Nous avons fait, dans notre mémorandum qui a été soumis au ministère, 129 propositions. Et donc 40% dedans sont des propositions axées sur la croissance. Parce que nous voulons dire que pour pouvoir continuer à avancer, il faut absolument continuer à investir, encadrer surtout les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de soutien aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur les augmentations qu'ils ont à subir, et aussi faciliter toute l'exportation parce qu'il y a des opportunités qui se présentent éventuellement dans toute notre période de crise.
3: चर्चा के अन्य मुद्दों में रोजगार, प्रशिक्षण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बाधाओं को दूर करना शामिल रहा।
4: Les gros challenges que fait l'industrie en ce moment, notamment l'augmentation des prix des produits importés, qui affecte directement le coût de la construction. Nous avons évoqué la nécessité de revoir les fixed price contracts parce que ça impacte beaucoup d'entreprises. Particulièrement dans le contexte actuel. Le problème de main-d'œuvre a été évoqué et nous avons fait des propositions aussi par rapport à la facilitation de la main-d'œuvre étrangère pour pallier au manque de compétences.
5: Aujourd'hui, quand un navire arrive et que nous devons recevoir un permis, nous devons courir, l'expression, à gauche, à droite, pour pouvoir avoir ce permis et livrer la marchandise. Donc, cela retarde tout simplement le dédouanement et le process de retrouver la marchandise sur les rayons où il faut. Donc, nous avons mis l'emphase dessus, accentuant encore une fois qu'il y a ce besoin d'urgence de régulariser cela afin que les différents government agencies soient intégrés avec la douane comme il y a une provision déjà.
6: Le secteur privé, il est là pour investir. Mais le secteur privé, il peut demander de l'espace, il peut demander on lève bah, tout ça, une contrainte administrative qui est là. Aujourd'hui, nous avons un problème de travailler. Alors, dans le PMI, pour amener travailler dans Maurice. Voilà ce qu'ils nous demandent. Pas le gouvernement donne l'argent. Le gouvernement peut pas casse pour donner. Mais le gouvernement, ce qu'il est capable de faire, il est capable de enabler, élimine tout ça, l'obstacle qui nous est là.
3: निजी सेक्टर के साथ इस बैठक के बाद जूनियर मंत्री धनेश्वर दामरी ने सकारात्मक उपलब्धियों की बात कही।
7: The way forward qu'il nous trouvait, qu'il nous proposait, c'est-à-dire le gouvernement nous facilite l'investissement à travers un partenariat public-privé dans quatre majeures connectivités. C'est ça un catalyse pour l'économie. Un, c'est l'aéroport. Deuxième, c'est le port. Troisième, c'est digital connectivity, numérique. Et quatrième, c'est financial connectivity.
3: बजट पूर्व सलाह मशवरे अगले हफ्ते जारी रखे जाएंगे।
8: वृहद योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की वर्षगांठ के अवसर पर आज इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर शिवाजी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन, मराठी स्पीकिंग यूनियन और मॉरिशस मराठी कल्चरल सेंटर ट्रस्ट के सहयोग से रंगों से भरे त्यौहार का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर महाराष्ट्र दिवस को भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम खास मेहमान है। मराठी समुदाय के जरिए महाराष्ट्र राज्य से मॉरिशस लाई गई विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को उजागर किया जा रहा है और इन्हें भविष्य की पीढ़ियों में प्रोत्साहित करने पर बल दिया जा रहा है। तमारन समुद्र तट पर इस शनिवार अधिकारियों की वापसी देखी गई, जहां पर्यावरण मंत्री भी मौजूद थे। समुद्र तट का एक हिस्सा इरोजन से प्रभावित हो रहा है। इसकी वजह पास की कई नदियां और नाले हैं जो नदी के मुहाने के पास मिलते हैं। कुछ महीने पहले इन जल प्रवाहों को बिना अनुमति बदल दिया गया था, जिससे पानी का रुख अपने प्राकृतिक रास्ते से हट गया। अब काम जारी है ताकि पानी के तेज प्रवाह को कम किया जा सके, जो समुद्र तट पर टकरा रहा है। अब राजनीति की बात करते हैं। आज दोपहर रोजल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉल बेरांजे ने घोषणा की कि जल्द ही वाकुआ फिनिक्स नगर पालिका में एक संस्थापक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने इस बैठक के उद्देश्य को स्पष्ट किया और साथ ही कई अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी बात रखी।
3: अपने नए राजनीतिक दल के 9 में से 7 सदस्यों के साथ पॉल बेरांजे ने अम्ब्रोज गली रोजिल में प्रेस से मुलाकात की। देश के 20 चुनाव क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बंद कमरों की बैठक के बाद पॉल बेरांजे ने अगले सोमवार को अपने नए दल फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के पहले जुटाव का ऐलान किया।
9: Nous vous donne nous à sa congrès fondateur là nous vous donne nous 3 mois pour qu'il nous a une vraie l'assemblée de délégués. Congrès fondateur donc 2h30 samedi prochain à la salle des fêtes de la municipalité de Vaqua Phoenix. Quant à nous, nous parlons le nom Front militant progressiste. Mais le logo nous donne un petit peu de temps. Parce qu'il nous parlait c'est une archaïque ambiguïté, une possibilité de confusion nous pas intéressé. Donc nous peut finaliser là, nous prenons rencontre avec le commissaire électoral.
3: प्रेस के सवालों के जवाब में उन्होंने समसामयिक विषयों पर भी बात की, खासकर भावी बजट के सलाह मशवरे के संबंध में। उन्होंने अपनी ये राय दोहराई कि देश को एक स्थायी वित्त मंत्री की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही वे शक उस मुद्दे पर बात करेंगे।
8: और जैसे कि हम बता रहे थे, वृहद योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की वर्षगांठ के अवसर पर आज इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर शिवाजी दिवस का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर मुख्य मेहमान है डॉक्टर नवीन राम गुलाम। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
10: Nous vous apprend tout bonne disposition nécessaire. Nous vous apprend une économie plus résiliente encore. À cause de ça, nous avons fait preuve de solidarité. C'est dans ce contexte que nous ne pouvons pas le faire bidier là. Pourquoi vous êtes trop content de faire bidier là, moi? Moi, je ne suis pas passé l'autre jour. Et là, je peux dire. Mais je ne suis pas passé quand l'époque est difficile. Je laisse l'autre jour là, 6 jours là. Moi, je ne suis pas 6 jours là, c'est bien. Parce que c'est bien qu'on est pour régler. Il ne fallait pas tout l'économie là aussi. Nous avons besoin qu'on fait balance. La cause ça qui nous besoin d'être bien, qui met pour faire, pour qu'on va faire nous gouvernement bien résilient. Si on gagne ça pétrole de Congo là, et nous gagnons de laine, il y a un avantage pour nous. Je suis convaincu, moi. Si nous mettons la tête ensemble, nous travaillons dans l'unité, nous comprenons. Nous gagnons une différence. Mais là, nous avons un danger vivant. Danger là, il n'est pas pour moi, il n'est pas pour X, c'est pas pour Y, c'est pour tout Mauricien qui peut vivre là. Nous devons nous adapter et faire des morts, trouver une solution contre les difficiles.
8: और इस समारोह के दौरान मॉरिशस मराठी मंडली फेडरेशन के प्रधान बलराज नारू ने फेडरेशन के विस्तार कार्य के लिए सरकार द्वारा 50 परच जमीन दान करने के लिए उसके प्रति आभार जताया। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। उनको सुनते हैं।
11: Le gouvernement, à la requête de la fédération, nous paye un lopin de terre de 50 pièces à côté le Maharashtra Bowen. For parking facilities, beaucoup d'Anyavar Prime Minister ou gouvernement qui croient dans l'unité de la diversité, nous à côté, du monde un peu oublié parfois, en 2002, quand nous recevons nos lettres Vintent dans sa fameuse Triangle Square là, nous touchons, les bons, vous étiez sa premier ministre, parce que c'est moi ça, nous touchons ce choc culturel qui se démord nos bâtiments.
8: Autism जागरूकता दिवस के अवसर पर जो इस सप्ताह ब्राउन से क्वाड मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में मनाया गया, एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है ताकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की जल्दी पहचान के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने ये भी घोषणा की कि फ्लैक में जल्द ही एक विशेष डे सेंटर स्थापित किया जाएगा।
12: ब्रांसिको की डे केयर सेंटर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से प्रभावित बच्चों के लिए विशेष देखभाल की जा रही है। फिलहाल करीब 170 बच्चों को यहां सहारा दिया जाता है, जहां हर बच्चे के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन है ताकि उसके विकास और रोजमर्रा के जीवन में सुधार हो सके।

0: यहाँ डॉक्टर बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नर्स, एजुकेटर आदि की सेवाएं इस केंद्र में बच्चों के लिए मौजूद है। माता पिताओं को अपने हाल पर नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी मनोवैज्ञानिक सहायता और नियमित मार्गदर्शन दिया जाता है ताकि वे रोजमर्रा की चुनौतियों का बेहतर सामना कर सके। हम परिवारों की भी मदद करते हैं, अभिभावकों के लिए कई सपोर्ट ग्रुप्स हैं ताकि वे अपनी समस्याओं और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने फ्लक में ऑटिज्म के लिए एक नए डे केयर सेंटर खोलने की घोषणा की। सरकार के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी वर्ग के लोगों की जरूरतों को पूरा करें। हम मानते हैं कि अभी ऑटिज्म के बच्चों के लिए इतनी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, अध्यापकों की भी कमी है, इसका समाधान ढूंढा जाएगा। अनुमान के अनुसार मॉरिशस में करीब 13,000 लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से प्रभावित हैं।
1: और चेस्म मॉरिस के स्कूल में 43 बच्चों के लिए खास पहल, उन्हें 3D डोमिनोज का पहला सेट दिया गया जो सीखने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। इस पहल के जरिए इन बच्चों को अपनी क्षमता बेहतर ढंग से विकसित करने का अवसर मिलेगा। संदेश साफ है, हर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए सही साधन मिलना चाहिए। और एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो जवान लड़कियों को ही हो सकती है। ये एक वास्तविक चिंता का विषय है क्योंकि ये बांझपन का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। हमारी टीम GTU अस्पताल गई थी जहां रोज लगभग 50 से ज़्यादा मरीज अपना इलाज करवाते हैं, मुख्य रूप से दवाइयों के माध्यम से, और ज़्यादा गंभीर मामलों में जटिल सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। समान अवसर प्राप्त करना और भेदभाव के खिलाफ लड़ना, यही विषय था उस कार्यशाला की जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन द्वारा रेजवी में आयोजित की गई। इसमें 20 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया और विद्यार्थियों ने कविता, स्लैम और गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियां दी। इसका उद्देश्य युवाओं में समान अवसर और बिना भेदभाव के समाज के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। और MGI के सुब्रमण्यम भारती लेक्चर सेंटर में आज 2 मई को हिंदी स्पीकिंग यूनियन द्वारा मंच संचालक यानी मास्टर ऑफ सेरेमनी कौशल पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये इस श्रृंखला का दूसरा बैच था जिसमें हिंदी के विद्यार्थी, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े अनुभवी संचालक और उभरते हुए उत्साही MC ने भाग लिया। दोनों सत्रों को मिलाकर कुल 250 प्रतिभागियों ने इस पहल से लाभ उठाया। ज्यादा जानकारी आशीष रखो के साथ।
2: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को
3: मंच संचालक या कहें मास्टर ऑफ सेरेमनी, वह एक व्यक्ति जो पूरे कार्यक्रम का चेहरा और आवाज होता है, और भूमिका दर्शकों का स्वागत करने से माहौल बांधे रखने तक पूरी जिम्मेदारी उठाता है तथा अपने शब्दों, हाव भाव और कभी कभी हल्के फुल्के हास्य के जरिए दर्शकों को सक्रिय और रुचि बनाए रखता है। इसी विषय पर आधा दिन चली एक कार्यशाला में प्रतिभागियों को भावभंगिनी, मंच पर नियंत्रण, प्रोटोकॉल की समझ और आत्मविश्वास बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया।
4: पहले से तैयारी करना एक अत्यंत आवश्यक चीज़ होती है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि तैयारी करने का समय नहीं मिलता, तो क्या हम अच्छे MC नहीं हैं? ऐसा नहीं होता, चाहे वह शैक्षिक कार्यक्रम हो या मनोरंजक, कुछ भी। जब आप वहाँ पर जाते हैं, परिस्थिति को देखते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है।
3: देश के सामाजिक संगठनों के अनुभवी एंकरों ने भी नई टेक्निकों पर नियंत्रण लाने की बात की।
5: हाफ दी सेशन चला, वो मास्टर ऑफ सेरेमनी के जो स्किल में वो बहुत लाभदायक हैं। जैसे हमें पता नहीं था कैसे पब्लिक को हम एंगेज रखें, और हमारे जो बॉडी लैंग्वेज होता है और वो जो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है, किस तरह से हमें उसको लेकर चलना चाहिए।
6: मैं समाज सेवा में बहुत रुचि रखता हूँ। कभी कभार मुझे मंदिरों में बुलाया जाता है प्रवचन करने के लिए, और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे टिप्स मिले हैं जो शायद यूट्यूब, गूगल या चैट जीपीटी पर भी उपलब्ध नहीं है। इससे अभ्यास के पश्चात मैं बहुत अच्छी तरह से संचालन कर पाऊंगा, विशेषकर जब मुझे प्रवचन करने के लिए बुलाया जाएगा।
3: कार्यशाला के माध्यम से मंच संचालन का डर व इस वाक कौशल पर पकड़ बनाए रखते हुए प्रभावशाली संप्रेक्षण की आवश्यकता पर भी बल डाला गया।
7: इसका मूल उद्देश्य यह है लोगों को उचित तकनीक सिखाना कि अगर आपको कोई हिंदी का कार्यक्रम, चाहे सांस्कृतिक चाहे धार्मिक चाहे कहीं भी आप खड़े हो जाएं मंच पर और आपको हिंदी में बोलना है, तो उचित भाव भंगिमा के साथ उचित शब्दों का चयन करते हुए आप उस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सकें। हम बता रहे हैं कि किस तरह से बोलना है, किस तरह से खड़े होना है, आपको किस तरह से अपनी भावनाएँ व्यक्त करना है, क्योंकि मेरा मानना है बिना ट्रेनिंग, बिना उचित शिक्षा के आप कहीं ना कहीं मर्यादा का पालन नहीं कर सकेंगे।
3: कुल मिलाकर ये कार्यशाला प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध अनुभव साबित हुई, जिसने उन्हें एक सफल और आत्मविश्वासी मास्टर ऑफ सेरेमनी के लिए नई दिशा दी।
1: विदेश में माली में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अप्रैल के अंत से सुरक्षा स्थिति गंभीर हो गई है। जिहादी समूहों और विद्रोहियों के समन्वित हमलों ने राजधानी बमाको समेत कई अहम शहरों को निशाना बनाया है। रक्षा मंत्री की मौत हो चुकी है और उत्तर के कुछ इलाके सशस्त्र समूहों के कब्जे में चले गए हैं। हालात के चलते लोगों का पलायन बढ़ रहा है और बमाको के आसपास जरूरी सामान की कमी भी देखी जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शांति वार्ता के नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वे ईरान के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से जो प्रस्ताव दिया था उसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बातचीत और अपने परमाणु मुद्दे पर चर्चा के बदले अमरीका के प्रतिबंधों में राहत की मांग शामिल थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाव डूबने से हुए हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। शुक्रवार को बचाव दल ने एक माँ और उसके 4 साल के बेटे के शव बरामद किए, जो एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाए हुए थे। क्रूज बोट के पलटने से कुछ ही पल पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पर्यटक ठंडे मौसम और तेज हवाओं का मजा लेते हुए दिख रहे हैं। बोट पर मौजूद लोगों को आसपास मंडरा रहे खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। दक्षिण पूर्व में पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर भी अभी हमारे मौसम पर पड़ रहे हैं। पूर्वानुमान आज रात देश के पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल पार्टों पर बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी। अन्य जगहों पर भी बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों में कोहरे भी छाए रहेंगे, खासकर ऊंचे इलाकों पर। और कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल पार्टों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 3 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। ऐसे रात्रि के समय लहरें कम ऊंची रहेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में। कल सूर्योदय 6:26 पर होगा।

0: इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फिजान और कोविला का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: सेक्शन 18B द्वारका भारत में, सेक्शन 18B द्वारका भारत में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री बाल्मीकि किशन जो

नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के दौरान कल शाम पाँच बजे भारतीय समय अनुसार कल शाम के 5 बजे सेक्शन 18B द्वारका भारत के वेंकटेश्वर अस्पताल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली भारत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 5 PM। गीतांजलि रोड थ्रॉ बुटीक ट्रियोले में चौहत्तर साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदीश बिगू जो जगदीश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर गीतांजलि रोड थ्रॉ बुटीक ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ट्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। कालीमाई रोड ला रोजा न्यू ग्रोव में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री सिन्हान पैदाशी नाम चितामन और जो सुशील नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल सुबह दस बजे उनके घर कालीमाई रोड ला रोजा न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। देवानी रोड सा मौतन बिजुकाप में 83 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र प्रसाद गुहा जो गौसो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री शेखर गुहा के घर देवानी रोड सा मौतन बिजुकाप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलोम की श्मशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 12:30 PM। बॉशेरी रोड मुकामी 69 ईयर्स ओल्ड के श्री रामदीन बच्चू जो कैसन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी वैसे आज उठ चुकी है आज दिन की 2:15 PM। मोमास्काल रोड पेटी राफ्रेमी 67 ईयर्स ओल्ड के श्री सूर्यदेव बोहोला जो बाबुआ नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उनकी बेटी श्रीमती नेहा लोचन के घर मोमास्काल रोड पर चिराग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दफनाने के लिए काप मालोह की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 10:30 AM। रॉयल रोड ग्रैंड पॉइंट ऑफ इमामी 59 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र कुमार चातौर सिंह जो सूरज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर रोड खान पंतोपी माँ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पंतोपी माँ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM। पावे रोड रिवियर जुरांपा में 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती फुलमत बांटू पैदाशी नाम रोसुन जो सेवंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री विनय बांटू के घर पावे रोड रिवियर जुरांपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए उत्तरी रिवियर जुरांपा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। नंबर नौ शादाक रोड एब्सन सरी इंग्लैंड में 79 ईयर्स ओल्ड के श्री सोमा सुंदरम कॉपन जो राजू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे। वैसे उनकी अर्थी भी इंग्लैंड में उठाई जाएगी। उन ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। नंबर 9 शादाक रोड एब्सन सरी इंग्लैंड में 79 ईयर्स ओल्ड के श्री सोमा सुंदरम कॉपन जो राजू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शुक्रवार 8 मई को उनके घर नंबर 9 शादाक रोड एब्सन सरी इंग्लैंड से उठाकर सुबह साढ़े नौ बजे उनके घर नंबर 9 शादाक रोड एब्सन सरी इंग्लैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रानदास पॉक

0: सरी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन ऑन फ्राइडे 8 मई एट 9:30 AM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
3: Chez Loulou, hola, les UHT en briques de 1 litre, 59,95 €. Treat, ice cream, 1,8 litre à 199,50 €. Max Fly, cola, 250 ml, 29,95 €.
4: Loulou Hypermarché, Loulou.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
0: म्यूजिक टक टकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती

0: बिल्कुल दोस्तों, हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना, और वैसे वक्त के साथ साथ खुद को थोड़ा सा अपडेटेड और अपग्रेडेड रखना बहुत ही अच्छी बात है। 6:36 already welcoming you once again on the waves of radio Masti, जहां पर दिव्या का साथ है till 7 PM। वैसे हमने बाबाई तो कह दिया था, लेकिन देखिए किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात हो ही गई, और चलिए इस साथ को और भी खूबसूरत बनाते हैं कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ।
1: म्यूजिक टक टकाटक, RM2 रेडियो मस्ती।

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: रेडियो मस्ती
1: वेल 6:45 मिनट हो चुके हैं आपके मैसेजेस को हम वेलकम करेंगे ऑफ कोर्स ऑन 5499 1294। यहाँ पर आप कहते हैं गोइंग डिनर विद द फैमिली एंजॉयिंग आवर फैमिली टाइम एंड सैटरडे गैदरिंग्स टू सेलिब्रेट अनीशाज 40th बर्थडे और एक गाना ज़रूर उनके नाम हम डेडिकेट करेंगे एंड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम हस्बैंड पुष्कर मामा आरती भाई है रवीश केशव यनीश बहन है याशना अनीशा और दादी ममता एंड फ्रॉम द वन एंड ओनली दिशा टोल किरोधर गोदी फैमिली फ्रॉम कॉटेज रिविया जॉप सो चलिए उनको बहुत बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से भी एंड आज सैटरडे है और मैं देख रही हूँ कि कहीं कहीं इलाकों पर हल्की हल्की बारिशें हो रही है तो कहीं पर इट्स रियली वेरी चिल्ड स्पेशली आई एम वेरी श्योर जो लोग सेंट्रल प्लाटो पर रहते हैं अभी आप एक नहीं बल्कि दो दो कंबल ओढ़ कर सोने वाले हैं एंड अभी तो एसी का कोई काम नहीं होने वाला है सो जस्ट टेक योर प्रिकॉशन स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं ना तो उनके इम्यूनिटी को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए जितना हो सके हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ विटामिन सी अपने इम्यून सिस्टम को और भी बूस्ट करने के लिए और टाइम टू टाइम जो लोग चाय पसंद करते हैं ना आप अब से अदरक वाली चाय भी एंजॉय कर सकते हैं जिंजर इज़ वेरी गुड फॉर द इम्यून सिस्टम तो उम्मीद करते हैं कि अपनी तरफ से आप ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर को सेफ रखेंगे फ्रॉम दिस विंटर वेदर और चलिए जितने भी सारे लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ आपको बस बहुत सारा प्यार एंड इसी तरीके से हर एक गीत को हम प्यार से बांधेंगे और प्यार से आप तक पहुंचाएंगे
0: म्यूजिक टकटकाता RM2 रेडियो मस्ती

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: वेल फ्रेंड्स, चलिए 6:56 ऑलरेडी एंड हमारी बात ऑल सेट है संजय आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। झनकार बीच से लेकर आ रही है स्पोर्ट्स की खबरें और साथ में लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक। तो चलिए दिव्या को दीजिए इजाजत, हमारी और आपकी बहुत ही जल्द मुलाकात होने वाली है। तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Jhumka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: चलें एक नज़र दौड़ाते हैं आज के फिक्स्चर्स की ओर इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, जहां पर 3 मैचेस शुरू हो चुके हैं एंड सेकंड पीरियड में भी पहुंच चुके हैं। ब्रेंटफोर्ड 2-0 से जीत रहा है अगेंस्ट वेस्ट हैम, न्यूकासल 2 ब्राइटन 0, वुल्व्स 1 संडरलैंड 1। संडरलैंड प्लेइंग विद 10 मैन ओनली, संडरलैंड को एक रेड कार्ड भी मिला ऑन द 24th मिनट टू डैन बैलार्ड। आज का लेट मैच होगा बिटवीन आर्सेनल एंड फुलहम, वो बाद में शुरू होने वाला है। लेट अस हैव अ लुक एट द स्टैंडिंग एज इट इज। सभी लोग जानते हैं कि द लीग टाइटल इज बीइंग प्लेड बिटवीन आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी। आर्सेनल जो आज अपना मैच खेलने वाला है, सिटी विल बी प्लेइंग टुमारो अगेंस्ट एवर्टन। सो आज आर्सेनल 34 मैचेस प्लेड 73 पॉइंट्स। अगर आज आर्सेनल की जीत होती है अगेंस्ट फुलहम तो आर्सेनल विल गो 6 पॉइंट्स लीड ओवर मैन सिटी विद 2 मैच प्लेड इन एक्सेस। उसके पीछे में, इन दोनों के पीछे में, वी गट मैनचेस्टर यूनाइटेड 34 मैचेस प्लेड 61 पॉइंट्स, लिवरपूल 34 मैचेस प्लेड 58 पॉइंट्स। ये दोनों टीमें कल मिल रहे हैं इन अ डर्बी एट ओल्ड ट्रैफर्ड। सो यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, और इन दोनों के पीछे एस्टन विला 34 मैचेस प्लेड इक्वली 58 पॉइंट्स। ब्रेंटफोर्ड जिनकी अभी जीत हो रही है अगेंस्ट वेस्ट हैम 35 मैचेस प्लेड 51 पॉइंट्स। ब्राइटन जिसकी हार हो रही है अगेंस्ट न्यूकासल 35 मैचेस प्लेड 50 पॉइंट्स। सो ये रहे फिक्स्चर्स और साथ ही साथ बार्कलेज प्रीमियरशिप टेबल के किस तरह, कौन कौन से स्तर पर कौन कौन सी टीमें हैं।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: खिलाड़ी सब फुटबॉल खेल से प्यार करते हैं लेकिन एक दूसरे से नहीं। इट्स खासकर इस सीजन के अंत में जहां पर इंग्लिश प्रीमियर लीग के दोनों एंड में संघर्ष बहुत घनघोर रूप से जारी हैं। एक ओर से आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी टक्कर ले रहे हैं तो दूसरी ओर से यूनाइटेड, लिवरपूल, एस्टन विला और ब्रेंटफोर्ड, खासकर ये तीन यूनाइटेड, लिवरपूल और एस्टन विला एक दूसरे से टक्कर ले रहे हैं। तो हु इज़ गोइंग टू अकंपनी टू डिसाइड हु इज़ गोइंग टू अकंपनी आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी इन चैंपियंस लीग। और कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसाइडर होने वाला है एट ओल्ड ट्रैफर्ड। आपको याद होगा कि अक्टूबर महीने में यूनाइटेड ने जाकर लिवरपूल को उसके मैदान पर 2-1 के स्कोर पर हराया था। तो क्या इट्स गोइंग टू बी द रिवेंज और इट्स गोइंग टू बी द कंफर्मेशन? पिछले 5 मैचेस में 2 बार इन टीमों ने ड्रॉ किया है। पिछले 2 सालों में 2 बार ड्रॉ हुआ है, 2-2, 2-2, 2 बार यूनाइटेड की जीत हुई है और 1 बार लिवरपूल की जीत हुई है। सो द स्टैट्स फॉर द लास्ट 2 ईयर्स स्पीक इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब कल क्या होगा इसके बारे में जानने के लिए अवश्य यू स्टे ट्यून ऑन रेडियो मस्ती।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Jhumka Beats.
2: RM2 Radio Musti.
3: सो ब्राइटन ने एक गोल कम किया है, न्यूकासल 2 ब्राइटन 1, वुल्व्स 1 सन्डरलैंड 1। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया, इट इज आर्सेनल प्लेइंग अगेंस्ट फुलहम, द लेट मैच आज के लिए। अगर टेबल के टॉप में संघर्ष बहुत ही जोर से चल रहा है तो एट द एंड ऑफ द टेबल बर्नले एंड वुल्व्स ऑलरेडी रेलीगेटेड। सो जो टीम, दो टीमें जो विच आर गोइंग डाउन नेक्स्ट सीजन, बर्नली एंड वुल्व्स, जबकि टॉटनहम हॉटस्पर स्टिल हैज सम टाइम कि वो इस डलडल से निकले एंड डोंट हैव टू प्ले द प्लेऑफ्स। सो वुल्व्स 1 और सन्डरलैंड 1, जहां पर सन्डरलैंड इज प्लेइंग विद ओनली 10 मैन। कल लीड्स ने बर्नले को 3-1 से पछाड़ा था, बर्नले विच इज ऑलरेडी रेलीगेटेड। सो लीड्स रेलीगेशन जोन से कुछ दूर निकल गया है, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट, वेस्ट हैम और टॉटनहम हॉटस्पर आर स्टिल देयर विद इन द डेंजर जोन। कल के फिक्स्चर्स में बोर्नमुथ खेलेगा अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, एस्टन विला स्वागत करेगा टॉटनहम हॉटस्पर का। दैट्स गोइंग टू बी क्रूशियल बोथ फॉर एस्टन विला एंड फॉर टॉटनहम हॉटस्पर, खासकर एस्टन विला के लिए अगर वो चाहता है नेक्स्ट सीजन टू प्ले इन द चैंपियंस लीग।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunkai Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: सर्वज का प्यार इस मिनट आपको ले चलते हैं जर्मनी के बुंडेसलीगा में, जहां पर मैच समाप्त हो चुके हैं जो शुरू हो चुके थे। बायर्न म्यूनिख और हेल्डरहैम ने मैच ड्रॉ किया 3-3, एंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट 1, हैम्बर्ग 2, ऑफेनहाइम 3, स्टुटगार्ट 3, यूनियन बर्लिन 2, कोलोन 2, वर्डर ब्रेमेन 1, ऑक्सबर्ग 3। और आज का लेट मैच होगा बिटवीन बायर एंड आरबी लिप्सिक। वहां पर बायर्न ऑलरेडी चैंपियन सिंस लॉन्ग, 116 गोल्स स्कोर्ड, 35 कंसीडेड। और इस सीजन 2025-2026 में बायर्न इज द यूरोपियन टीम विच हैज स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स, 170 गोल्स टूट कॉम्पिटिशन कॉन्फोंडू, जैसे कहते हैं, अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ विद अ ट्रियो विच इज जो धुआं फूंक रही हैं, हैरी केन, ओलिजे एंड लुइज। वही लुइज जिसने लिवरपूल ने गत सीजन के अंत में बेचा था 475 मिलियन यूरोस, और वही लुइज जाकर ओलिजे और हैरी केन के साथ बुंडेसलीगा में सबों का तहस नहस कर रहे हैं। यहाँ तक कि पॉक दी प्रेंस में जाकर पारिस सेंट जर्मेन के खिलाफ उन्होंने 4 गोल्स दागे हैं, इवन इफ दे हैव कंसीडेड 5। सो इट प्रॉमिसेस इन द रिटर्न लेग ऑफ द सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: अब की बार आपको ले चलते हैं स्पेन के ला लीगा में, जहां पर एक मैच समाप्त हो चुका है। विलारियल ने लेवांटे को 5-1 के स्कोर पर हराया है। एक दूसरा मैच जो शुरू हुआ है, वैलेंशिया 0 अटलेटिको मैड्रिड 1। आपको याद दिला देते हैं कि स्पेन के ला लीगा में स्थिति कैसी है। बार्सिलोना पहले स्थान पर है, 33 मैचेस प्लेड 85 पॉइंट्स। दूसरे स्थान पर रियल मैड्रिड, 33 मैचेस प्लेड 74 पॉइंट्स। और तीसरे स्थान पर विलारियल, 34 मैचेस प्लेड 68 पॉइंट्स। अटलेटिको मैड्रिड जिसने ड्रॉ किया विद आर्सेनल इस सप्ताह के दौरान इन द सेकंड सेमीज ऑफ द चैंपियंस लीग, वो चौथे स्थान पर है, 34 मैचेस प्लेड 63 पॉइंट्स। याद रहे कि रिटर्न लेग आर्सेनल के मैदान पर खेला जाएगा, एंड आर्सेनल हैज ऑल द चांसेस टू मूव ऑन इनटू द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग, जहां पर उसका सामना या तो पीएसजे से होने वाला है, या तो धुआंधार परफॉर्मेंस देने वाले बायर्न म्यूनिख से।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ झंकार बीच संजय के साथ। तीन मैचेस जो शुरू हुए थे वे समाप्त हो चुके इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। ब्रेंटफोर्ड ने वेस्ट हैम को 3-0 से हराया। सो वेस्ट हैम इस समय 17वें पोजीशन पर हैं विद 36 पॉइंट्स, ओनली 2 अबव टॉटनहम हॉटस्पर। सो किक ऑफ रेलिगेशन के उपरांत किक ऑफ के डर्डल में अभी तक फंसा हुआ है वेस्ट हैम। टॉटनहम हॉटस्पर इज प्लेइंग लेटर टुमारो। सो ब्रेंटफोर्ड ने वेस्ट हैम को 3-0 से हराया और इस तहत ब्रेंटफोर्ड 6th पोजीशन पर आ चुका है। 35 मैचेस प्ले 51 पॉइंट्स एंड कंफर्टिंग इट्स पोजीशन फॉर यूरोपा लीग। ब्रेंटफोर्ड, न्यूकासल 3, ब्राइटन 1। एक जबरदस्त सदमा फॉर ब्राइटन व्हिच इज वाइंग फॉर अ प्लेस इन यूरोप नेक्स्ट सीजन। सो न्यूकासल के खिलाफ हारने से झटका फॉर ब्राइटन, जबकि वोल्व्स और संडरलैंड ने, मल क्लासी संडरलैंड ने 10 खिलाड़ियों के संग ड्रॉ किया विद वोल्व्स। आज का लेट मैच आर्सेनल और फुलहैम के बीच।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
1: RM2 Radio Musti.
2: आठ बजकर 18 मिनट यू लिसनिंग टू झंकार बीट संजय के साथ आपको ले चलते हैं फ्रांस के लीग अ में जहां पर एक मैच समाप्त हो चुका है। नॉर्थ ने मार्सेई को 3-0 के स्कोर पर हराया। सो मार्सेई जो छठे पोजीशन पर है 32 मैचेस प्लेड 53 पॉइंट्स और इसी समय पेरिस सेंट जर्मेन 2-1 से लोरियां को हरा रहे हैं 63 मिनट्स प्लेड इन दिस मैच। पेरिस जो एक बार फिर चैंपियन टीम घोषित हो चुकी है। इज इट नहीं, ये अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। फिर भी सुपेजे 2-1 पारी जो सप्ताह के दौरान 5-4 के स्कोर पर अपने मैदान पर पार्क दे प्रिंस में बायर्न म्यूनिख को हराया और अगले हफ्ते अलियंस अरेना में अपने टाइटल को बचाने के लिए शेर के गुफा में जाकर बायर्न म्यूनिख का सामना करेगा। एंड इट रियली प्रॉमिसेस 9 गोल्स इन 1 मैच ऑफ द सेमीज ऑफ द चैंपियंस लीग। ये काफी बहुत सारे सालों से नहीं हुआ है। द लास्ट वन वाज आई थिंक द स्कोर ऑफ 6-3 और अब जाकर 5-4 का स्कोर हुआ है। सो वी विल बी हियर टू कीप यू अपडेटेड। फिलहाल लीग वन में पेरिस सेंट-जर्मेन पहले स्थान पर है 31 मैचेस प्लेड 70 पॉइंट्स। दूसरे स्थान पर लॉन्स 30 मैचेस प्लेड 63 पॉइंट्स और तीसरे स्थान पर लिल 31 मैचेस प्लेड 57 पॉइंट्स।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: रात के 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं. द मैच बिटवीन आर्सेनल एंड फुलहम शुरू हो चुका है. 17 मिनट्स प्लेड एंड ऑलरेडी आर्सेनल लीडिंग बाय वन गोल टू नील. गोल्स स्कोर्ड बाय विक्टर ग्योकेरेस ऑन द 9th मिनट. सो ऑलरेडी आर्सेनल फ्लाइंग हाई इन दिस मैच क्योंकि देयर इज नो अदर वे ऑफ विनिंग द टाइटल दैन winning all the matches or will be with maximum goal average and again maximum goals for and minimum goals conceded and waiting and expecting ki Manchester City apne matches mein kahin na kahin larkhara jaye. The only way in front of Arsenal to win the title this season.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: and gentlemen, you are listening to Junkard Beats.
1: RM2 Radio Musti.
2: जी हाँ दोस्तों, जानकार बीच यहाँ पर समाप्त होने को चला. टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ. कल शाम 2 बजे फिर से मिलते हैं चंद रोमांटिक गीतों के साथ. डू हैव ए ग्रेट वीकेंड. रेडियो मस्ती के साथ जुड़े हुए. टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय. बाकी स्पोर्ट्स की खबरें कल सुबह 7:40 पर इन रेडियो मस्ती स्पोर्ट्स अपडेट.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Radio Musty. Feels a
1: Musty. अब भी कहूंगा और मरते दम तक कहता रहूंगा, अलाका बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ।

I didn't do that.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: radio musti. Feel the musti.
1: Radio musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: RM2 रेडियो मस्ती
1: आपका ये बजा ही सही।